चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के जयेश माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की यह पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम

0: जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Realize the full potential of our ties.
0: गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। समय हुआ है श्रीराम चरित मानस का। आइए सुनते हैं श्रीराम चरित मानस का भाग 19।

श्री रामचरित मानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं, जिनके पास चरका पाथे नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए,

तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है? लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से रामकथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। विमत और लोकमत इसके दो किनारे हैं।

आप सुन रहे थे वाणी जयराम की आवाज और सतीश भाटिया के संगीत संयोजन में श्री राम चरित मानस। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुविचार।

सूरज हर शाम ढलता है, लेकिन अगली सुबह फिर से एक नई रोशनी लेकर आता है। जीवन में भी कठिन समय स्थायी नहीं होता, उम्मीद की किरण हमेशा एक नया रास्ता दिखा ही देती है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तब धैर्य का साथ मत छोड़िए। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आपका इंतजार करता है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं और जीवन फिर से मुस्कुराने लगता है। इस सुविचार के साथ आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सवेरे के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म दिल्ली 6 से एआर रहमान, बेनी दयाल, तन्वी शाह और ऋषिराज की आवाजों में ये गीत।

0: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ जी, नया मोबाइल।
0: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
0: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: प्रदीप
0: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
0: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए ये अगला गीत फिल्म वो लम्हे से। बोल है सईद कादरी के, दुन है प्रीतम की, और इस गीत को गाया है जावेद अहमद ने।

लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत केके और सुनिधि चौहान की आवाजों में फिल्म अक्सर से, बोल है समीर के और धुन दी है हिमेश रेशमिया ने।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 7 बजे है, आइए सुनते हैं कुछ बातें कुछ गीत।

आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। फर्ज कीजिए कभी घर की सफाई करते हुए अचानक कोई पुरानी डायरी हाथ लग जाए, उसके पन्नों पर वक्त की धूल जरूर जमा हो लेकिन उसमें लिखी यादें अब भी उतनी ही ताजा हो। किसी पन्ने पर बचपन की शरारतें, किसी पर दोस्तों के नाम, कहीं अधूरे सपने तो कहीं दिल की वो बातें जो शायद कभी किसी से कही ही नहीं गई। और फिर जैसे जैसे आप उसके पन्ने पलटते जाए वैसे वैसे बीता हुआ वक्त भी आपके सामने खुलता चला जाए। यादें कभी पुरानी नहीं होती, वह बस एक सही मौके का इंतजार करती है फिर से मुस्कुराने के लिए, फिर से रुलाने के लिए और

फिर से आपको कुछ सिखाने के लिए। तो आइए खोलते हैं एक पुरानी डायरी के कुछ पन्ने, कुछ बातें उन यादों की और कुछ गीत उन लम्हों के नाम जो बीत गए लेकिन दिल से कभी गए ही नहीं। पहला पन्ना, बचपन की लिखावट। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही सबसे पहले याद आता है तो वो है बचपन, टेढ़ी मेढ़ी लिखावट, रंग बिरंगे पेन और छोटे छोटे सपने। कहीं लिखा होता था बड़ा होकर ये बनना है, तो कहीं किसी दोस्त का नाम। उस समय उस वक्त हमें शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटी छोटी बातें एक दिन इतनी कीमती यादें बन जाएगी। वो स्कूल की घंटी, वो गर्मी की छुट्टियां, वो बारिश में भीगना और वो बिना वजह हंस देना। बचपन में खुशियों के लिए किसी बड़े वजह की जरूरत नहीं होती थी। शायद इसीलिए डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है।

कुछ चेहरे कुछ नाम। डायरी के कुछ पन्नों पर कहानियों से ज्यादा नाम लिखे होते हैं। स्कूल के दोस्त, क्लास के साथी, वो लोग जिनके बिना एक दिन भी अधूरा लगता था, और शायद उनसे अब बात नहीं होती, लेकिन वह नाम पढ़ते ही चेहरा जरूर याद आता। वो एक दूसरे के साथ बेंच शेयर करना, वह टिफिन बांटना, वह छोटी छोटी शरारतें। समय आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ रिश्ते वहीं के वहीं रह जाते हैं। कभी कभी लगता है कि दोस्ती का असली घर यादों में ही है।

कुछ अधूरी बातें और कुछ अधूरे पन्ने। हर डायरी में कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जो पूरे नहीं लिखे गए। कहीं कोई कहानी अधूरी रह गई, कहीं कोई बात आधे में छूट गई। शायद उस समय शब्द नहीं मिले होंगे, या शायद कुछ बातें लिखी नहीं जा सकती।

कुछ भावनाएं हमारी ऐसी भी होती है जो सिर्फ महसूस की जाती है। डायरी के उन अधूरे पन्नों में कई बार सबसे गहरी कहानियां छुपी होती है और शायद हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय भी अधूरे ही रह जाते हैं।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज।

कुछ आंसू कुछ मुस्कानें, डायरी सिर्फ खुशियों की नहीं होती, उनमें कुछ ऐसे पन्ने भी होते हैं जो आंसुओं से लिखे गए होते हैं, कुछ शब्द जो आंसुओं से मिटे हुए होते हैं, कुछ हार कुछ बिछड़ने की कहानियाँ, कुछ ऐसे दिन जिन्हें हम भूल जाना चाहते थे। लेकिन जब आज उन पन्नों को पढ़ते हैं तो एहसास होता है कि वो दर्द भी ज़रूरी था, क्योंकि उन्हीं दिनों ने हमें मजबूत बनाया है, हर गिरना कुछ नया सिखा कर गया है और हर मुश्किल दौर ने हमें अपने बारे में कुछ नया ही बताया है। शायद इसीलिए अब उन पन्नों को पढ़कर दुख नहीं, एक सीख महसूस होती है।

डायरी का वह आखिरी पन्ना जो अब भी खाली है, जो अब भी खाली है और उस पर अब भी कुछ लिखा नहीं गया। उस पर कुछ लिखा नहीं गया क्योंकि वह आने वाले पल के लिए खाली रखा गया। यही तो जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात है। कितनी भी यादें पीछे छूट जाए, कुछ पन्ने हमेशा बाकी रहते हैं। कुछ नए लोग मिलेंगे, कुछ नए सपने बनेंगे, कुछ नई कहानियां लिखी जाएगी। शायद इस बार हम कुछ बेहतर लिखेंगे, शायद इस बार हम कुछ खुलकर जिएंगे। क्योंकि हर नया पन्ना एक नया मौका लेकर आता है, और जब तक आखिरी पन्ना खाली है तब तक उम्मीद भी बाकी है।

कुछ पन्ने संभाल कर रखिए। हर इंसान के पास एक ऐसी डायरी ज़रूर होती है, चाहे वो कागज़ पर लिखी हो या सिर्फ यादों में हो। उसमें कुछ मुस्कुराहटें होती है, कुछ अधूरी बातें, कुछ लोग और कुछ सपने। कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं, और कुछ ऐसे जिन्हें पढ़ते ही आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन शायद उन पन्नों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वही पन्ने मिलकर हमारी पूरी कहानी बनाते हैं। तो कभी फुर्सत मिले तो अपनी उस पुरानी डायरी को ज़रूर खोलिए। हो सकता है उसके किसी पन्ने पर आपको अपना ही कोई भूला हुआ हिस्सा मिल जाए। और अगर कोई नया पन्ना खाली भी हो तो उसे भरने से मत डरिए, क्योंकि सबसे खूबसूरत कहानियाँ हमारी ज़िंदगी की अक्सर वहीं से शुरू होती है जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
5: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली

0: मात्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी,
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपये की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रूपये से बढ़कर 942 रूपये हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
5: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के

0: आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्धविराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्धविराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और टाइग्रिस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा

सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के

0: का भास्कर की सुर्खी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीत ने वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSS Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
3: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
4: For Akashvani News, Shuman Bhattacharji, Agartala.
2: The National Testing Agency or NTA has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, NTA said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. A report.
5: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively

0: सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। इस खूबसूरत सी संडे मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है उस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार।
1: जी हाँ, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है इस खूबसूरत अंदाज में, और इस कार्यक्रम को जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो ये सशक्त टीम है जो इस कार्यक्रम को लेकर आती है, उसका भी परिचय आपसे करवाते हैं। HPT पर है कैलाश चंद्र सोलंकी, प्रकाश पंवार।
0: FM ट्रांसमीटर की कमान संभाली है सुनील जयपाल ने।
1: और कंट्रोल रूम से नियंत्रण कमान संभाल रहे हैं प्रवीण कुमार।

0: अनाउंसर ऑन ड्यूटी एचपीटी के ट्रांसमिशन में है शुभम गांग।
1: और अनाउंसर ऑन ड्यूटी एफएम पर है सत्येंद्र चारण।
0: दोस्तों, आज के नमस्कार का संयोजन और प्रस्तुति है राजेश लामरोड की, और साथ ही साथ आज के इस नमस्कार के सफर में आपके साथ है हम सफर, और मेरे सफर में आज मेरे साथ है नेहा राकावत।
1: जी हाँ, और मेरे साथ है स्वाति भंसाली।
0: आज बहुत सारी बातें आज मैं और नेहा आपके साथ शेयर करने वाले। वैसे नेहा, जो बातें हम सारी शेयर करेंगे उनके साथ जो खास गाने इस खूबसूरत सी संडे मॉर्निंग में हमने चुने हैं अपने लिसनर्स के लिए, वो तो बिल्कुल नए नवेले हैं, और हमारी बातें भी होंगी नए नवेली। लेकिन उन नए नवेली बातों को शुरू करने से पहले ये खूबसूरत सा प्यारा सा सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर इस वक्त जो प्रोग्राम आपके रेडियो सेट पर ट्यून्ड है वो है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और वैसे नेहा, नमस्कार में जब हम अपने श्रोताओं को भी नए नवेले गाने सुनवाते हैं तो हमारे कई लिसनर्स कहते हैं कि भाई इन गानों में वो बात नहीं है जो पुराने गानों में होती है। और मुझे लगता है कि पुराना हो या नया हो, ये सिर्फ हमारे नजरिए का फर्क है। हम जिस नजर से उन गानों को देखते हैं, जिस भाव से हम उन गानों को सुनते हैं, हमारा नजरिया भी कुछ वैसा ही हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: हाँ, और नजरिए से ही एक कहानी मुझे सुनानी है आपको स्वाति, और मेरे श्रोताओं को भी मुझे सुनाने की बहुत दिली इच्छा हो रही है कि मैं सुनाऊं क्या होता है नजर और नजरिया।
0: बिल्कुल,
1: जो हमारी नजर है जिस तरीके से अलग अलग, सब लोगों की अलग अलग नजर है, किसी की अच्छी खूबसूरत जैसा भी हम बता सकते हैं वैसे हो सकती है, वैसे नजरिया भी अलग अलग होता है। तो एक छोटी सी और बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी आपसे मैं शेयर करूंगी। एक बार क्या होता है ना कि एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा मेरी जिंदगी की वैल्यू क्या है, क्या कीमत है इसकी? तो पिता कुछ देर सोचते हैं, उसको फिर थोड़ा समझ के फिर अपनी बात शुरू करते हैं। कहते हैं कि देखो, बिना कुछ बोले हुए घर के कबाड़ खाने से एक पुराना सा जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा निकालते हैं। अब वो क्यों निकाला था उन्होंने, उसकी भी बात सुनते हैं। उन्होंने बच्चे को वो टुकड़ा देते हुए कहा, बेटा बाजार जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना मत, बस लोग जो दाम लगाए उसे देख कर आ जाना।
0: और वैसे वो बच्चा मतलब बहुत ओबीडियंट था या नहीं, कि भाई पापा ने कहा और वो चला गया, या ऐसा हुआ कि नहीं नहीं पापा मैं क्यों जाऊं, आपने मुझे क्यों काम दिया? आजकल कई बार हम देखते हैं कि हाँ, बच्चे ऐसा करते हैं। तो वो बच्चा कैसा था?
1: वो बहुत ही, अब जैसे उसने क्वेश्चन ही ऐसा किया तो वो क्यूरियस तो था, अपनी क्यूरियोसिटी से उसको वो जो जानना था वो जानना था। तो पापा ने जो बोला है उससे अगर उसको अपना आंसर मिलेगा तो वो बिल्कुल करेगा। तो वो सबसे पहले पास के एक कबाड़ वाले के पास गया। कबाड़ वाले ने लोहे के टुकड़े को देखा और बोला, ये तो पूरी तरह जंग खा चुका है, इसके मैं तुम्हें मुश्किल से 20 रुपये दूंगा। तो बच्चा आगे बढ़ा और लोहार की दुकान पर पहुंचा। लोहार ने उसे थोड़ा सा ध्यान से देखा और कहा, अगर मैं इसे पिघलाकर इससे कुछ छोटे औजार या कीले बनाऊंगा तो मैं तुम्हें इसके 200 रुपये दे सकता हूँ। इस तरह से अलग अलग वैल्यू वो बता रहे हैं। इसके बाद बच्चा शहर के एक बड़े मूर्तिकार के पास गया, स्कल्प्टर के पास गया। मूर्तिकार ने उस लोहे को हाथ में लिया, उसकी बनावट देखी और आंखें चमकाते हुए बोला, ये लोहा भले ही पुराना है लेकिन ये है बहुत मजबूत और खास, अगर मैं इसके एक शान

0: यार ऐतिहासिक तलवार या फिर कोई ऐसी मूर्ति बना दूंगा तो ये काम जो है बहुत अच्छा होगा, और इसके कम से कम 20,000 रुपये में वो जो मेरी मूर्ति है वो बिक सकती है, तो मैं तुम्हें इसके आराम से 20,000 देने के लिए तैयार हूँ।
1: ये देखो ना, मतलब कितनी सरप्राइजिंग बात लग रही है नेहा, कि कबाड़ वाला जिस लोहे के टुकड़े के 20 रुपए दे रहा था, वही लोहार उसके 200 रुपए, और एक
0: बिल्कुल
1: मूर्तिकार उसी लोहे के टुकड़े के 20,000 तक देने को
0: जी
1: तैयार था।
0: हाँ,
1: कितना सरप्राइजिंग है
0: बहुत
1: ना।
0: सरप्राइजिंग था। तो वो बच्चा भी इतना सरप्राइज हुआ, वो हैरानी से भागा भागा अपने पिता के पास आया और पूरी बात उनको बताई। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, देखो स्वाति, बताती हूँ वो बात। देखो ठीक इसी तरह जो तुम्हारी जिंदगी है उसकी कीमत भी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम अभी क्या हो, इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो और कैसे लोगों के बीच उठते बैठते हो। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये बताऊं? देखो
1: बिल्कुल
0: जैसा कि उसके पिता ने बताया कि खुद को कम मत समझो कभी भी। आपके भीतर, आपके अंदर काफी संभावनाएं हैं, काफी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर कोई आपको बेकार समझता है तो गलती उसकी परख की है, आपकी काबिलियत की नहीं है। और आपको अपनी संगत का चुनाव जो है वो किस तरह से करना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपकी कद्र नहीं जानते तो वो आपको 20 रुपए के कबाड़ की भांति ही समझेंगे, है ना। और लेकिन अगर आप अपनी कद्र रखने वाले, आपको तराशने वाले या फिर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी वैल्यू करोड़ों में होगी।
1: बिल्कुल, और करोड़ों में नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमारा जीवन खुद कितना अनमोल है, इसको हम तभी जान सकेंगे जब हम जिंदगी को खुल के जीना सीखेंगे। और मुझे भी तुम्हारी बात सुन के घड़ी की बात याद आ रही है, बताऊंगी अपने लिसनर्स को, लेकिन इस खूबसूरत से नए नवेले गीत के बाद।

0: स्वाति, ये जो गीत हमने सुना अभी, बीते लम्हे, तो बीते लम्हे से मुझे वो पल याद आ गए, मुझे उन पल से वो चीज़ याद आ गई, वो घड़ी याद आ गई जिसकी बात तुम कर रही थी, और वो जो टिक टिक है वो घड़ी की, जो मुझे परेशान कर रही थी कि क्या बात है, मुझे वो वही जानना है, आप बता दीजिए
1: है
0: बस।
1: ना, मुझे ये लगा कि ये जो गाना अभी हम इतना खूबसूरत सा गाना के की आवाज़ में सुन रहे थे फिल्म द ट्रेन से, बीते लम्हे जब भी याद आते हैं, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। बिल्कुल, दर्द जब जीवन में होता है ना, और ऐसे में अगर कोई आशा की किरण, कोई मुस्कुराहट का सबब अगर मिल जाए तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। और हम पहले बात कर रहे थे नज़रिए की, तो नज़रिया हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और वो पॉजिटिविटी की बात, वो सीख हमें घड़ी से मिलती है। कैसे? अगर सोचो, घड़ी जो है उसका काम है चलना, समय बताना।
0: बिल्कुल।
1: घड़ी चलती रहती है अनवरत, एक ही दिशा में चलती रहती है। कभी किसी घड़ी को उल्टे चलते हुए देखा है?
0: नहीं।
1: नहीं, है ना? जब घड़ी एक ही दिशा में चलती है, और ऐसे में अगर घड़ी बंद हो जाती है तो क्या समय रुक जाता है?
0: बिल्कुल नहीं।
1: समय तो फिर भी चलता रहता है, लेकिन क्या बंद घड़ी ने अपनी उपयोगिता खो दी है? आप सोचिए, पूरे 24 घंटे में वो जो बंद घड़ी है वो भी 2 बार सही समय बता जाती है,
0: क्या बात है।
1: क्योंकि समय नहीं रुकता है। तो बिल्कुल, यानी जिंदगी में हर एक व्यक्ति की, हर एक पल की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, बस उस इम्पोर्टेंस को पहचानना है। आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट, आपके जानने वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, सबके लिए जीने का सबब बन जाता है। और ऐसे में अगर कोई निराशा आ जाती है तो क्या जिंदगी को खत्म करना होता है?
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: नहीं।
1: भी नहीं। उनके चेहरे को याद कीजिए, उनकी मुस्कुराहटों को याद कीजिए, उनकी आशाओं को याद कीजिए, जिंदगी जीने का जो मुद्दा है वो खुद ब खुद मिल जाएगा। और ये जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इसको जी के इसका आनंद लीजिए, और आनंद लीजिए हमारे उन खास नए नवेले गीतों का जो हम चुन के लाए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: दोस्तों, हम ना अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर दुख दुख मतलब फील करते हैं और दुखी हो जाते हैं और बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं। लेकिन सच ये है कि खुशी जो है वो छोटे छोटे लम्हों में, छोटे छोटी मोमेंट्स में होती है। किसी पुराने दोस्तों का अचानक से कॉल आ जाना, या फिर बारिश के मौसम में, या फिर ऐसे ही कोई चलते फिरते हमारा मन हो जाना कि हमें गर्म चाय पीनी है, उसका प्याला हमारे साथ में शेयर करने वाला हमें कोई मिल जाए, एक बस सुकून भरी नींद हमें कभी मिल जाए, जैसे आज छुट्टी का दिन है। तो छोटी छोटी बातें जो हैं स्वाति, मुझे लगता है जिंदगी को खास बना देती हैं। तो
1: और बिल्कुल नेहा, तुम्हारी बात से मुझे याद आ रहा है कि जोधपुर वालों के लिए तो हमारा एक बहुत बड़ा सुकून ये होता है कि अगर गरम गरम उतरते पाए का मिर्ची वड़ा मिल जाए, चाहे कितनी भी गर्मी हो, भले मई जून की तपती हुई दोपहरी भी हो, लेकिन मिर्ची वड़ा तो गर्म ही चाहिए।
0: और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी, जो छोटी सी खुशी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो खुशी? कि आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा उस पाए के
1: हाँ
0: लिए। होता है ना, कई बार हम लोग वो मिर्ची वड़ा खाना जाते हैं कि अभी ये पूरा पाया तो बुक है किसी के लिए, तो हमें लगता है यार बस ये क्यों नहीं नसीब
1: लेकिन
0: में
1: फिर भी थोड़ा सा
0: हमारे।
1: इंतजार हम कर लेंगे अगले पाए का,
0: हाँ
1: लेकिन
0: बिल्कुल,
1: ठंडा नहीं चाहिए।
0: ठंडा नहीं चाहिए, हम कितना ही इंतजार कर
1: हाँ,
0: सकते हैं।
1: सोचो अगर गर्मी में हमारा ये हाल है, तो अब जब मौसम जो है वो बदलने वाला है, मॉनसून जो है वो केरल में तो पहुंच ही चुका है 4 जून को, और 20 जून तक कह रहे हैं कि राजस्थान में भी दस्तक दे देगा मॉनसून, तो फिर जब बारिश की फुहारें पड़ने लगेगी, और अभी से मन का मयूर तो नाचने लग गया है आने वाली बारिश के स्वागत के लिए, तो फिर सोचिए ना कि मौसम का मिजाज जब बदल जाएगा, और ऐसे में हमारा मूड भी अगर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगे, तो शायद इस मौसम का आनंद भी हम ले सकेंगे। बिल्कुल, तो राजस्थान में हम स्वागत करेंगे।

रहेंगे क्योंकि जयपुर में तो तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो चुकी है और कई शहरों में भी कल असर देखा गया। जयपुर, अजमेर, अलवर, बीकानेर तो शनिवार को बारिश हुई थी और तेज धूल भरी आंधी ने भी हमें राहत दी थी और हमारे यहाँ पर भी जोधपुर में भी रात को जो हवाएं थोड़ी ठंडी हो गई थी उसने राहत तो दी थी। तो राहत हमेशा रहेगी और हमारे प्रोग्राम में राहत मिलती है खूबसूरत गानों के साथ जो कि होते हैं नए नवेली।

0: श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजने वाले हैं सुबह के 9। कुछ ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार कार्यक्रम लौटेगा समाचारों के ठीक बाद, यानी कि 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। समय हुआ है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में कई स्थानों पर साइकिल रैली के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया गया। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफार्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा है कि ये विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है। निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी संदेश को नहीं मानने और किसी तरह का भुगतान नहीं करने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि यह परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा कल जोधपुर रेंज कार्यालय में अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर बैठक कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने इन क्षेत्रों में कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देकर अपराधियों, अवैध गतिविधियों और अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। श्री शर्मा नए आपराधिक कानूनों का प्रयोग कर पुलिस के ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय की दिशा में काम करने की बात कही।
3: जो ड्रग माफिया हैं, उनके संपत्तियों को नष्ट करने की जब

0: करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है। आज की भी बैठक में ड्रग्स के खिलाफ और किस तरह से प्रभावी कार्रवाई हमें करनी है इस पे विशेष रूप से चर्चा की। राजस्थान में एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी स्थापना हो रही है, जिसके लिए भी हम लोग कोशिश में हैं कि वो जल्दी ही क्रियाशील हो। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पे हमारे जो निगरानी है साइबर क्राइम में, उसको हमने बढ़ाया है।
1: बैठक में जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह सहित जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बालोतरा, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और जालौर जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। जैसलमेर के सरहदी गांव में वाइब्रेंट विलेज योजना 2 के तहत विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। भारत पाक सीमा से सटे 30 गांवों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, पलायन रोकना और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ये योजना का संचालन होता है। इसमें इस बार टोटल 184 विलेजेस लिए गए हैं। इसमें से जैसलमेर जिले के 30 विलेजेस को आइडेंटिफाई करा है। बेसिकली जो सरकार चाह रही है कि उसमें जो हमारे कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, 4G कनेक्टिविटी हो गया, दूरभाष कनेक्शन हो गया, टीवी कनेक्टिविटी हो गया, तो इन पैरामीटर्स में सभी चयनित गांवों का सैचुरेशन हो।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल जयपुर में राजस्व और उपनिवेशन विभाग की बैठक में भूमि आवंटन से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से आपसी तालमेल के साथ लंबित मामलों का निराकरण करने और हर प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने भूमि उपलब्धता से जुड़ी बाधाओं को दूर कर बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये दिन हर साल 7 जून को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लेने को कहा है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न शहरों, पार्कों, स्टेडियमों और योग संस्थाओं में सामूहिक योगाभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। व्यास बगीची में लोगों ने अनेक आसनों के जरिए नियमित रूप से योग करने का संदेश दिया। योग दिवस की इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस बीच अहमदाबाद में चल रही विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत के रोहन तायडे ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने ये उपलब्धि लड़कों की सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल प्रतियोगिता में हासिल की। चैंपियनशिप में भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। फिट इंडिया मिशन के संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में साइकिल रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में साइकिल सवारों ने भाग लिया। पाली में पुलिसकर्मियों ने रैली निकालकर लोगों को सेहत के प्रति जागरूक रहने और नियमित व्यायाम और फिटनेस का संदेश दिया। अजमेर में राजस्थान पुलिस और 11 राज यूनिट एनसीसी की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान यूनिट के सीओ कर्नल अजय दाधीच ने दैनिक जीवन में साइकिल के प्रयोग को

0: बढ़ावा देने का आह्वान किया।
1: साइकिल चलाने से हम सिर्फ पोल्यूशन का ही नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें हैं, हम अपनी सेहत के ऊपर सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इफ यू वांट टू फिट योरसेल्फ, एक बार संडे को, नहीं तो कभी भी छुट्टी पे, और जैसे बच्चों की तो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उसमें साइकिल का ग्रुप बना के आराम से कहीं ना कहीं इवेंट रखना चाहिए कि आज यहाँ जा रहे हैं, कभी इस फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, आप फिट रहेंगे।
0: राज्य में सक्रिय परिसंचरण तंत्र के असर से कल कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर सहित करीब 13 शहरों में बारिश हुई। इसके साथ ही बीकानेर के लूणकरणसर में ओले गिरने के भी समाचार हैं। आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। इस बीच रात का न्यूनतम तापमान भी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। विभाग ने आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में बरसात की संभावना व्यक्त की है। आंधी बारिश की गतिविधियों में कल से कमी आने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। कल से पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। भारत की पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट जीत लिया है। जापान के काकामिगाहारा में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला हॉकी टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टीमों को बधाई देते हुए कहा कि ये खिलाड़ी भविष्य में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में कई स्थानों पर साइकिल रैली के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और आज के इस नमस्कार के इस सफर में आपके हम सफर हैं, मेरे साथ है नेहा राकावत।
3: जी हाँ, और मेरे साथ हैं स्वाति बंसाली।
2: बिल्कुल, आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां आपसे शेयर करेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: तुम हो तो सब अच्छा है। बिल्कुल, हमारे अंतरिक्ष में भी दो ग्रहों को जब ऐसा लगा कि एक दूसरे का साथ बहुत खूबसूरत हो सकता है, तो बिल्कुल उन्होंने भी नज़दीक आने का निश्चय किया। और वैज्ञानिक भी इस दुर्लभ घटना को कह रहे हैं कॉस्मिक किस। बिल्कुल, 8 और 9 जून की शाम को शुक्र और बृहस्पति, ये दोनों ग्रह बहुत ही करीब दिखाई देंगे। और आसमान में इसे देखने के लिए दूरबीन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे आपको। और एक पश्चिमी क्षितिज में सूर्यास्त के तुरंत बाद ही शुक्र चमकीली वस्तु के रूप में दिखाई देगा और उसके पास ही बृहस्पति भी चमकता नजर आएगा। तो आप भी इस खगोलीय घटना का आनंद जरूर लीजिएगा। और जब तुम हो तो सब अच्छा है, और ये तुम जो है वो अगर हमारा स्वास्थ्य बन जाए तो उस स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए साइकिलिंग सबसे बेहतर विकल्प है। और साइकिलिंग के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है सन ऑन साइकिल, उसका आप भी हिस्सा बन सकते हैं। आज के दिन जो है वो अपने स्वास्थ्य के नाम कर सकते हैं साइकिलिंग के द्वारा। और बिल्कुल एक और खास दिन जो आज हमारे खाने से जुड़ा हुआ है वो है फूड सेफ्टी डे, है ना?
1: बिल्कुल। और जहाँ तक हमारे लिए जरूरत है कि हम एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें और अपनी सेहत को बहुत बेहतर बनाएं, उसी तरीके से जरूरी है हम फूड के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी हम साथ में हैंडल करते हैं हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे ऐसे विषय की जो हम सभी के जीवन से और हमारी रेगुलर डे से जुड़ा हुआ है, वो है खाद्य सुरक्षा। और हर साल 7 जून को हमारे हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं, और इसका जो उद्देश्य है उसकी बात करें स्वाति, तो वो है लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के महत्व के लिए जागरूक करना। क्योंकि भोजन हमारे जीवन का आधार है, लेकिन यदि वही भोजन जो है वो खराब हो जाए, दूषित हो जाए, तो काफ़ी सारी बीमारियों का कारण वो बन सकता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है हर साल करोड़ों लोग जो असुरक्षित भोजन करते हैं उसकी वजह से बीमार पड़ते हैं, और इसीलिए भोजन का सुरक्षित होना, उसका अदूषित जो है दूषित ना होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, उसका उतना ही पौष्टिक होना भी। तो आज इस साल की जो 2026 की थीम है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, वो है बोझ से समाधान की ओर और हर जगह सुरक्षित भोजन। ये विषय हमें बताता है कि खाद्य जनित रोग जो हैं उसकी चुनौती को समझा जाए और ऐसे समाधान जो हैं वो अपनाए जाएं जिनसे

0: हर व्यक्ति, हर लोग जो है वो सुरक्षित भोजन प्राप्त कर सके, उनकी पहुंच उस तक बन सके। विशेषज्ञ बताते हैं कि भोजन को हमेशा साफ हाथों से तैयार करना चाहिए, कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थ को अलग रखना चाहिए और साथ ही साथ पर्याप्त तापमान पर ही भोजन पकाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको कभी हाई टेम्परेचर पर रख रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, और बार बार जो हम खाने को गर्म करते हैं स्वाति, वो भी बहुत ही हानिकारक हो सकता है हमारे खाने के लिए। और सरल उपाय से हम खाद्य जनित जो भी संक्रमण होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, उन खतरों से काफ़ी हद तक हम उनको कम कर सकते हैं। तो श्रोताओं, सुरक्षित भोजन जो है स्वस्थ जीवन की कुंजी है। तो आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन इस सुरक्षा दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि हम खुद भी खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे।
1: बिल्कुल नेहा, और इसके लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज जो आज के समय की मांग है वो ये है कि कई बार हम सोशल मीडिया पे जो कई बार जो फूड इन्फ्लुएंसर्स आजकल हो गए हैं, ब्लॉगर्स हो गए हैं, वो बहुत सारे देखो ना अनहाइजीनिक फूड भी जो है उसकी ब्लॉगिंग करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से, अरे चाहे वो एल्युमिनियम में खाना बन रहा हो या अगर बहुत अनहाइजीनिक तरीके से गंदे हाथों का प्रयोग करके, या मक्खियां बिन बना रही हैं, मच्छर बिन बना रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से उसके बारे में बताते हैं कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और आजकल ये जो स्ट्रीट फूड का चलन बढ़ा है, ऐसे में स्ट्रीट फूड अगर आप कभी कभार, कभी महीने में एक आध बार सेवन कर ले तो शायद उतनी तकलीफ ना हो, लेकिन आसपास उसमें भी हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखें कि जिस स्ट्रीट फूड वेंडर से आप खाना ले रहे हैं उसके आसपास सफाई हो, वरना बीमारियों को दावत देते देर नहीं लगेगी। और ये जो चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम सब के लिए बहुत जरूरी हैं कि खाद्य सुरक्षा के जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो जिस भी वेंडर से आप खाना ले रहे हैं वो फॉलो कर रहा है या नहीं, इस बात की सुनिश्चितता जरूर करें। तो बातें आपसे और भी शेयर करते रहेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। ये खूबसूरत गीत आपके लिए

0: श्रोताओं, मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में हम अभी बात करने वाले हैं इतिहास की। आज की बात इतिहास के साथ में, कैसा आज का दिन हमारा जो है वो इतिहास से जुड़ा है। 7 जून का इतिहास भारत और विश्व दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। और इस दिन की सबसे जो ऐतिहासिक घटना है वो महात्मा गांधी के नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। तो महात्मा गांधी और पीटर मारिट्सबर्ग की घटना, जो कि 1893 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका के इस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, महात्मा गांधी जब वो युवा वकील हुआ करते थे, उनके साथ में रंग भेद के कारण केवल गोरों के लिए आरक्षित प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। और इसका जो महत्व है इस घटना का, उसने उनके जीवन पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी, उनका पूरा जीवन बदल दिया, टर्निंग पॉइंट उसे कहा जा सकता है। उन्होंने वहीं से रंग भेद और अन्याय के खिलाफ लड़ने की कसम खाई थी और जिसने आगे चलकर सत्याग्रह का रूप लिया था।
1: अब बिल्कुल नजर आती है वो खास घटना जब पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा था सन 1975 में, और लॉर्ड्स के मैदान पर पहले एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का जो पहला मैच है वो आज ही के दिन भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। और यही वो मैच था जब सुनील गावस्कर ने 174 गेंदों पर नाबाद 36 रनों के ऐतिहासिक रूप से एक पारी खेली थी। हालांकि ये रिकॉर्ड बहुत स्लो बैटिंग का था, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है और अपने आप में एक ऐसा मुकाम बन जाता है हर क्रिकेटर के करियर में, जैसे इस तरह का कोई एक मुकाम आता है जिससे भविष्य से के लिए सीख लेने की प्रेरणा जरूर मिलती है।
0: बिल्कुल। और आज ही के दिन सन 1979 में भास्कर एक का प्रक्षेपण किया था। भारत ने अपना दूसरा उपग्रह जो है वो भास्कर एक के नाम से सोवियत संघ के भालू झील से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था, और ये पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला उपग्रह था दोस्तों।
1: बिल्कुल। और जब तुमने ये बात की है अंतरिक्ष की, तो मुझे भी याद आ रही है साल 2006 की वो घटना जब भारत ने अपनी पहली परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया था।
0: जी हाँ। और अब बात करें वैश्विक इतिहास की प्रमुख घटनाओं की, तो वो है सन 1929 में वेटिकन सिटी की स्थापना हुई थी। लैटरन संधि के लागू होने के साथ ही वेटिकन सिटी दुनिया का एक स्वतंत्र संप्रभु देश बना, और ये क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है।
1: और बिल्कुल एक और ऑपरेशन ओपेरा की घटना मुझे याद आ रही है जो एक वैश्विक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रही। ये घटना हुई थी आज ही के दिन सन 1981 में। तो इसी तरह की इतिहास की घटनाएं जो है वो हमेशा हमारे भविष्य के निर्माण का आधार बनती है, बशर्ते हम अपनी गलतियों से सीख लें और उन्हें ना दोहराने का संकल्प लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो बातें आपसे शेयर कर रहे हैं इस वक्त मॉर्निंग

इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, और आज मेहमान के रविवार में हमारे साथ कौन जुड़ेंगे, ऐसे एक खास व्यक्तित्व जिनका रविवार होता है बहुत खास। जानने के लिए सुनते रहिए खास प्रोग्राम को, मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार, और अभी आनंद लीजिए इस गीत का।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम. नमस्कार. आज जैसा कि बताया कि रविवार है और छुट्टी का दिन है, फुर्सत का दिन है. हालांकि हम में से कई लोग गर्मी की छुट्टियां भी एंजॉय कर रहे हैं, उसका लुत्फ उठा रहे हैं, फिर भी हर दिन से

0: खास फुर्सत में भी थोड़ी और फुर्सत का एहसास दिलाता है। ये वार रविवार ऐसा ही है और नमस्कार कार्यक्रम के द्वारा इसे और भी खास बना दिया जाता है हमारे स्पेशल सेगमेंट के द्वारा जिसका नाम है मेहमान का रविवार। और हमारे आज के मेहमान बहुत ही खास हैं अपने अंदाज से, अपने काम से और अपने रुतबे से। जिस मुकाम पर वो फिलहाल हैं वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, और उनके संघर्ष की कहानी उनकी मुख जुबानी सुनेंगे, उनके उनसे रूबरू होंगे। फ़ोन आउट के ज़रिए हम से जुड़ गए हैं फिलहाल हमारे आज के गेस्ट स्टार ADCP हेडक्वार्टर जोधपुर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री गुमनाराम जी। श्रीमान, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं आज समस्त आकाशवाणी टीम की तरफ से हमसे जुड़ने वाले अभी। हेलो
1: नमस्कार नेहा जी,
0: जी।
1: आपका और आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार।
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका, नमस्कार आपको भी। सर आप कैसे हैं अभी, फिट एंड फाइन?
1: बिल्कुल बढ़िया
0: बिल्कुल। आप सही सर, ये बात जानना चाहेंगे, आप जिस प्रोफेशन से हैं वहाँ उस माहौल में आप अपनी जो जी जान लगा देते हैं, समर्पण भाव से आप अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, ऐसे में ये साफ है कि आपका संडे भी उसी कर्तव्य को निभाने में लगा रहता होगा। फिर भी आप किस तरह अपनी व्यस्तता में ये अपने लिए समय निकालते हैं, अपनी फैमिली के लिए समय निकालते हैं, उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे सर।
1: वैसे ये बात सही है कि पुलिस में कई बार मतलब ड्यूटी में समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अलग अलग ड्यूटी रहती है। ज्यादातर फील्ड ड्यूटी के जो अधिकारी होते हैं
0: जी
1: उन्हें थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर और अन्य कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहना पड़ता है, जबकि कुछ ऐसे पद हैं जिसमें पदीय कर्तव्यों में ऑफिस ड्यूटी रहती है, तो उनको शनिवार और रविवार में कुछ समय मिल जाता है। तो
0: जी
1: वर्तमान में जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहां पर यद्यपि फील्ड ड्यूटी नहीं होने के कारण मुझे शनिवार या रविवार को कोई ड्यूटी नहीं होती है तो समय मिल जाता है और उसके अनुरूप हम संडे को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं।
0: अच्छा जी, तो किस तरह से आप अपने संडे को या वीकेंड को जो है वो खास बनाते हैं? क्या आप खुद भी कुछ अलग अपनी हॉबीज रखते हैं या बताएं सर आप?
1: मैं तो अभी वैसे यहाँ पर जोधपुर कमिश्नरेट में अभी 20 मई को आया हूँ,
0: जी
1: तो यहाँ आने के बाद में तो वैसे 2-3 संडे निकले हैं तो उनमें ज्यादा ड्यूटी रही है, क्योंकि अभी एक फिट इंडिया प्रोग्राम चल रहा है तो संडे ऑन साइकिल अभियान है उसके
0: जी
1: तहत, इसलिए 2 रविवार में और एक एग्जाम ड्यूटी थी, और इस बार भी आज संडे में संडे ऑन साइकिल अभियान था जिसके तहत अब जवानों के साथ साइकिल चलाई 5 किलोमीटर और उसके बाद में योगा
0: अरे वाह
1: किया, व्यायाम किया, और एक हमारे पुलिस आयुक्त तो महोदय श्रीमान शरद कविराज सर द्वारा एक विशेष नवाचार किया गया है, जो पुलिस आयुक्तालय में लगभग 4,000 जवान हैं तो
0: जी।
1: उन जवानों का हेल्थ का परीक्षण करवाया गया, और परीक्षण करवाने के बाद में ऐसे जवान जिनकी BMI 25 या उससे ज्यादा है
0: अच्छा
1: उन जवानों के स्वास्थ्य के लिए और उनको स्वस्थ और फिट बनाने के लिए विशेष प्रकार के प्रोग्राम जैसे प्रतिदिन लाइन में योगा, एक्सरसाइज, शनिवार को 5 किलोमीटर वॉक एंड रन, रविवार को साइकिल चलाना और खास डाइट, दिनचर्या, इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो हेल्थ के एक्सपर्ट हैं उनको
0: जी
1: लाकर उनसे मार्गदर्शन करवाकर इस तरह का एक नवाचार किया जा रहा है और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, तो अभी तो इस नवाचार में हम भी उसमें भागीदारी निभा रहे हैं।
0: जी सर, ये तो हो गई इस संडे की, इस सैटरडे की बात। आप अपनी जो यूजुअल संडेज जो हैं वो स्पेंड करते होंगे अपनी फैमिली के लिए, कभी टाइम निकालने का सोचते होंगे, तो वो किस तरह से आप उसका मैनेज कर पाते हैं अपने टाइम के साथ में? क्या आप खुद भी कुछ ऐसी हॉबीज़ के साथ में, या कहें कि घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं तो वहाँ जाना चाहते हैं कभी?
1: बिल्कुल, जब फैमिली साथ होती है तो संडे को कहीं कोई बाहर भी घूमने निकल जाते हैं।
0: जी
1: पहले उधर मैं करौली था तो उधर थोड़ा प्राकृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध जिला था, तो उसमें वहाँ जो और भी ऐसे दर्शनीय स्थान है, धार्मिक स्थान है, वहाँ घूमना। इसके अलावा जब घर पे होते हैं तो थोड़ा सा राजस्थानी लोकगीत, भजन सुनना, और
0: जी
1: इनमें थोड़ी सी रुचि है,
0: जी
1: या फिर कभी कभी प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ना,
0: अच्छा
1: प्रकार से संडे को व्यतीत करते हैं।
0: सर आप किताबें पढ़ने के शौक रखते हैं, आपने किताबें लिखने का भी आपने जो है एक बार

0: सोचा है कि हम लिखना भी पसंद करते हैं, ऐसा भी है सर?
1: बिल्कुल इतना समय तो नहीं मिल पाता, लेकिन एक प्रयास किया था मैंने, जैसे युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन के लिए एक पुस्तक कोशिश से कामयाबी तक मैंने लिखी
0: जी
1: है,
0: जी
1: जिसमें युवाओं को अच्छी शिक्षा के कौन कौन से अवसर हैं और इसके बाद में अच्छी शिक्षा अर्जित करने के बाद अच्छे रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में यूपीएससी और आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा बोर्ड की परीक्षाओं की कैसे तैयारी की जाए,
0: जी
1: इस संबंध में उसमें विस्तार से समझाया गया, तो एक प्रयास किया था मैंने।
0: जी जी जाहिर सी बात है सर, आपने अगर ऐसी कोई किताब लिखी है मार्गदर्शन के संदर्भ में, तो ज़रूर आपका भी इस तरह का बैकग्राउंड रहा होगा, आपने ये सारे मुकाम जो हैं ये हासिल किए होंगे, आपकी जो जर्नी रही होगी वो भी इसी तरीके से कई सारी वेरिएशन के साथ में रही होगी, तो आप उसको उससे भी हमें रूबरू कराएं कि किस तरह से आपने अपनी ये वाला जो मुकाम है उसे हासिल किया और कहाँ से शुरुआत की थी सर आपने?
1: मियाँ जी, वैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो भी अधिकारी चयनित हुए हैं, जो अभी कई भले सेवानिवृत्त हो गए हैं या सेवारत हैं,
0: हाँ
1: कमोबेश सबकी कहानी एक जैसी है,
0: हाँ अच्छा
1: क्योंकि ज्यादातर अधिकारी है वो ग्रामीण परिवेश के हैं, वो साधारण किसान परिवार परिवार से हैं, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले यही सोचा कि हमें कोई ऐसी एक नौकरी मिल जाए जिससे हम अपने परिवार को और स्वयं का आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन जाएं। उसके
0: जी
1: बाद में इन परीक्षाओं यानी यूपीएससी और आरपीएससी परीक्षाओं की तरफ रुख करने का
0: जी
1: एक
0: उसके लिए भी सर,
1: प्रवृत्ति या ट्रेडिशन
0: हाँ
1: रहा है। मैं भी वैसे ही एक साधारण किसान परिवार से हूँ, मैंने प्राइमरी शिक्षा है वो मेरे गाँव आत्मा से की, और उसके बाद में मैंने 6ठी 7वीं मेरे ननियाल शिवकर से, और फिर 8वीं मैंने सियाणी से जो हमारे पास में गाँव है वहां से, 9वीं 10वीं मैंने खड़ीन सीनियर सेकेंडरी से, और फिर 11वीं और 12वीं मैंने बाड़मेर सीनियर सेकेंडरी से की।
0: जी
1: 12वीं करने के बाद में मैंने बीएसटीसी कर ली, बीएसटीसी करके मैं थर्ड ग्रेड टीचर बन गया। थर्ड
0: अच्छा
1: ग्रेड टीचर बनने के बाद में मेरा ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन सभी प्राइवेट है, क्योंकि
0: जी
1: मैं नियमित सरकारी सेवा में चला गया था, तो नियमित अध्ययन को कॉलेज का नहीं कर पाया, मैंने प्राइवेट बीए किया। इस दरमियान 2000 की बात है, आरएएस की भर्ती आई हुई थी, तो वहाँ हमारे जो स्टाफ के गुरुजन थे उन्होंने इस बार चर्चा की कि भाई इस भर्ती से, उन्होंने एक बात कही थी कि इस भर्ती से अधिकारी बनते हैं, तो मेरे भी मन में ये जुनून हुआ कि क्यों ना अपन भी प्रयास कर लें, थर्ड ग्रेड टीचर तो है ही, अपने पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रयास तो करते हैं।
0: जी
1: तो मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने पहली बार आरएएस का एग्जाम दिया, मैं प्री
0: जी
1: पास हो गया, मेन भी मैंने लिखा, लेकिन मैं थोड़े 10-12 नंबरों से रह गया, परंतु फिर उस मुझे लगा कि मैं इस मुकाम को हासिल कर सकता हूँ। फिर
0: जी
1: मैंने
0: सर
1: 2003 में
0: हाँ
1: प्रयास किया और मेरे 120वीं रैंक से चयन हो गया और मैं एक राज्य स्तरीय सेवा में चयनित हो गया,
0: जी
1: लेकिन मुझे लगा कि मुझे और प्रयास करना चाहिए, तो मैंने फिर प्रयास किया और अंत में 2011 में राजस्थान पुलिस सेवा में चयनित हो गया।
0: जी
1: और जिस तरह से फिर राजस्थान पुलिस सेवा में चयनित होने के बाद में जनरली हमारी 2 साल की ट्रेनिंग होती है राजस्थान पुलिस एकेडमी में,
0: जी
1: वो फील्ड और जो वहाँ की एकेडमिक ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग पूर्ण होने के बाद में मैं वृत्ताधिकारी वृत्त भुसावर जिला भरतपुर, वृत्ताधिकारी अकलेरा जिला झालावाड़, वृत्ताधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा, उसके बाद में एटीएस एसओजी में, फिर
0: जी
1: अजमेर, उसके बाद में जयपुर,
0: जी
1: फिर
0: सर
1: आरएसी प्रतापगढ़,
0: जी
1: और फिर एडिशनल एसपी दीग और एडिशनल एसपी करौली, और अब मैं यहाँ पर अजतल जोधपुर में पोस्टेड हूँ।
0: सर, आपने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, हमें बताना
1: जी
0: पड़ेगा
1: जी
0: श्रोताओं को, अभी जानकारी थोड़ी हैरानी हुई होगी कि कितना लंबा सफ़र है, और आपने कोई फिक्स प्लानिंग नहीं की थी जब आपने शुरुआत की, तब आपने ये सोचा था कि आपको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, आर्थिक रूप से हमें अपने आप को सक्षम बनाना है, परिवार का भरण पोषण करना है, वहाँ से शुरुआत होते हुए जो आपने ये मुकाम हासिल किया है अब तक, ये बहुत ही शानदार रहा है सर। और ज़रूर ये जो हमारे युवा अभी सुन रहे होंगे उनको आपसे काफ़ी प्रेरणा भी मिल रही होगी, और जैसा कि आपने बताया सर, आपका स्टार्टिंग जो पॉइंट रहा जब आपने एक शिक्षक के तौर पर अपनी ये जो है वो जर्नी शुरू की थी, तो ये मुझे लगता है ऐसा लगा कि जैसे आपने छोटे छोटे मुकाम हासिल किए और चलते गए और कारवां बनता गया, ऐसा ही हुआ?

0: ये सच्चाई है, मतलब मेरी तरह बहुत से अधिकारियों की सच्चाई है कि हमारा कोई टारगेट, जब हम ने मान लो 12वीं की है, उस समय हमारा कोई ये टारगेट नहीं था कि हम आरपीएससी की या यूपीएससी की हम परीक्षा देंगे, इस तरह
1: बिल्कुल
0: से हम इन इन सेवाओं के लिए प्रयास करेंगे। हमारा तो मात्र ये टारगेट था कि हमें एक ऐसी नौकरी मिले जिसमें हमें आर्थिक रूप से हम स्वावलंबी बन जाए, परिवार का हम सहारा बने और उसके बाद में दूसरी बातों के बारे में सोचे।
1: जी
0: तो बिल्कुल हमने शिक्षक के रूप में जब चयनित हो गए तब हमें ये लगा कि हम अब और कुछ करना चाहिए। फिर हमने ये प्रयास किए
1: जी
0: और सपना तो ये था कि मैं बीएससी कर चुका था तो उसके बाद में बीएड करके फर्स्ट ग्रेड शिक्षा राजस्थान शिक्षा सेवा में जाना था,
1: जी
0: लेकिन उस तैयारी के साथ साथ ये तैयारी रखी और इधर मेरा चयन हो गया। तो हमारे थोड़े सा आत्मविश्वास बढ़ा, हौसला बुलंद हुआ, हमें लगा कि हम कर सकते हैं, भले ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, कुछ भी है,
1: जी
0: लेकिन ये इतना हार्ड नहीं है जितना इसको बताया जाता है। तो
1: जी
0: फिर हमने मेहनत की और केवल उस मेहनत की बदौलत एक साधारण किसान परिवार का
1: जी
0: व्यक्ति होने के नाते इस मुकाम तक पहुंचा हूं।
1: जी बिल्कुल ऐसे हम देखते हैं ना कि बस पानी के किनारे बैठकर हम ये नहीं सोच सकते कि वो पानी कितना गहरा है, उसमें हमें डुबकी लगानी ही पड़ती है। तो वही आपने भी किया
0: बिल्कुल
1: और बहुत ही अच्छा रहा कि आपने ये अलग अलग मुकाम हासिल किए और आपको फिर पता चला कि हाँ ये हम में जो ये हौसला है उससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर
0: बिल्कुल नया जी, जब किनारे पर बैठते हैं तो पहला ये विश्वास होना चाहिए कि पानी डूबे इतना है नहीं, भले गले
1: हाँ,
0: तक हो सकता है, तो फिर कूद ही जाना चाहिए। यही
1: पर बाद में गहराई का एहसास हो
0: सोचा
1: जाता है। हाँ सर
0: यही सोचा कि भाई अब तो इसमें कूद जाना चाहिए, ये इतना गहरा नहीं है जितना हम डूब जाएंगे। तो
1: जी तो सर
0: फिर इस हिसाब से मेहनत की और यहाँ तक पहुंचे।
1: पर आप कभी भी संतुष्ट नहीं हुए सर, ये बात माननी पड़ेगी कि आपने जो भी जॉब हासिल की है, आप जिस भी मुकाम पर रहे, आपको लगा कि मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ, ये बहुत ही शानदार बात है सर। बिल्कुल
0: बिल्कुल, मैं वैसे देखा जाए तो मेरा आरएएस मैंने 5 बार दिया, 4 बार मैन दिया और मेरा 4 बार ही सिलेक्शन हुआ है,
1: क्या बात
0: लेकिन रैंक ऊपर नीचे होने के कारण फिर कुछ बीच में 2 बार सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो रैंक पहले से मैं चयनित था उससे नीचे थी तो उसमें नहीं गया। कहने
1: जी
0: का मतलब है जब मेहनत जितनी, यदि कोई परीक्षार्थी है, कोई मेहनत कर रहा है,
1: जी
0: तो ईश्वर भी देखता है कि ये इतनी मेहनत कर रहा है, तो उस अपनी मेहनत के अनुरूप उसको प्रतिफल ईश्वर जरूर देता है।
1: बिल्कुल
0: अपन यदि मेहनत ही नहीं करेंगे, अपना प्रयास ही नहीं करेंगे, बिना प्रयास के तो देखो उपलब्धि हासिल हो नहीं सकती। फिर तो
1: जी
0: बिना प्रयास के उतनी ही अपने को मिलेगी जितने लोगों ने प्रयास करने वालों ने छोड़ दिए।
1: हाँ बिल्कुल सर, तो ये जो प्रयास हैं वही हमारी सफलता को दर्शाते हैं कि हमने कितने प्रयास कर लिए हैं, और छोटे छोटे प्रयास तो आपके जीवन को बहुत ही खुशनुमा बना देते हैं। तो सर आपका क्या प्रयास रहता है कि आप अपने संडे को बहुत ही ऐसा चीयरफुल बना सकें, उसे एक इस अंदाज में बिता सकें कि वो काफ़ी अलग हो, खास हो बाकी दिनों से?
0: ये तो अपना अपना व्यक्तिगत हिसाब से, हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता है,
1: जी
0: लेकिन
1: हाँ
0: मेरा तो
1: बिल्कुल
0: यही कहना है कि आज के समय में ज्यादातर लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है। इसके अलावा लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय जाया करते हैं, तो
1: जी
0: इसके बजाय मेरा तो यही संदेश है युवाओं को कि सोशल मीडिया पर ज्यादा समय जाया नहीं करें
1: जी
0: और अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सजग रहें और मेहनत करें। विशेष रूप से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हो, उन युवाओं को यही कहना है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं,
1: जी
0: उनका मेरा तो यही संदेश है कि आप मेहनत करें, अपनी मेहनत में अपने प्रयासों में कमी नहीं रखें,
1: जी
0: बाद में जो भी है वो ईश्वर आपके कर्मों के अनुरूप आपको जरूर फल देगा, इसमें कोई शक नहीं है,
1: जी
0: जैसा कि गीता में लिखा है।
1: जी बिल्कुल सर, जहाँ आपको पहुँचना लिखा है वहाँ तो आप पहुँचेंगे ही, बस हमें प्रयास तो करना पड़ेगा ही, वरना कैसे पहुँचा जा सकता है? उस साइड में बैठ के, किनारे में बैठ के हम नहीं सोच सकते कि हम उस किनारे पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल, तो आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, और ये भी सच है कि आपने जो ये बताया, जो मार्गदर्शन हमारे श्रोताओं को, युवाओं को सुनने को मिला है, जानने को मिला है, वो बहुत ही शानदार रहा है सर।
0: धन्यवाद नेहा जी, आपने और ऑल इंडिया रेडियो ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया
1: जी
0: और आपके श्रोताओं से मेरे विचार साझा करने के लिए मुझे अवसर दिया। इसके लिए आपका और ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बहुत आभार।
1: जी बहुत बहुत आभार आपका भी, आप हमसे जुड़े, आपने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला और हमारे श्रोताओं को भी अपनी इस जर्नी से रूबरू कराया, उसके लिए बहुत शुक्रिया।

0: थैंक यू।
1: जी श्रोताओं, हमारे साथ थे आज के हमारे मेहमान के रविवार के गेस्ट स्टार एडीसीपी हेडक्वार्टर जोधपुर से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री गुमना राम जी। उनसे हमने बातचीत की और उनके संडे को कैसे उन्होंने खास बनाया, किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी जर्नी जो थी, अपना जो जीवन संघर्ष है वो पहुंचा है और मुकाम हासिल किया है, उस पर हमने बातचीत की थी। अभी फ़िलहाल हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

और बिल्कुल ये गीत हमारे आज के गेस्ट स्टार श्री गुमनाराम जी की अपनी पसंद का ये गीत हम सभी सुनेंगे, हमारे श्रोताओं को भी सुनाएंगे।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज के दिन की हम आपसे साझा कर रहे हैं। आज भारतीय सिनेमा और साहित्य के ऐसे रचनाकार जिन्होंने अपनी लेखनी और फिल्मों के माध्यम से सामाजिक समानता, मानवता और राष्ट्र

जो एकता का संदेश दिया। ख्वाजा अहमद अब्बास की जयंती हम मना रहे हैं और ख्वाजा अहमद अब्बास इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की थी। लंबे समय तक साप्ताहिक स्तंभ उन्होंने लिखा था और अपनी निर्भीक और जन पक्षधर दृष्टि के लिए वे प्रसिद्ध रहे थे। फिल्म जगत में उनका योगदान भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। उन्होंने कई चर्चित फिल्मों की कहानी लिखी है, पटकथा लिखी है और निर्देशन भी किया है, जैसे कि आवारा, श्री 420, जागते रहो, मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया और उनका नाम उससे जुड़ा रहा। वे भारतीय समानांतर सिनेमा के अग्रदूतों में भी गिने जाते हैं और उनकी रचनाओं में जो है आम आदमी के संघर्ष को, सामाजिक न्याय को, मानवीय संवेदनाओं को स्थान मिला था। उनके उपन्यास, लघु कथाएं और लेख भी उन्होंने काफ़ी लिखे हैं जिनमें समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनकी आवाज़ को प्रमुखता मिली और साथ ही साथ उन्हें भारतीय सिनेमा और साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सहित अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए थे। 7 जून 1914 को जन्मे ख्वाजा अहमद अब्बास भारतीय सिनेमा, साहित्य और पत्रकारिता के ऐसे सशक्त हस्ताक्षर थे जिन्होंने अपनी लेखनी को समाज की आवाज़ बनाया था।

साथ ही साथ आज जन्मदिन मना रहे हैं हम महेश भूपति सर का। भारतीय टेनिस के इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन 7 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। और वे भारत के पहले ऐसे टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था और भारतीय खेल जगत को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई थी। दोस्तों, महेश भूपति ने युगल और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में अनेक ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। उनकी और लियंडर पेस की जो जोड़ी है भारतीय टेनिस इतिहास की सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाती है, और दोनों ने मिलकर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का गौरव बढ़ाया है। महेश भूपति ने अपने खेल कौशल, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर भारतीय युवाओं को जो खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, दोस्तों उन्हें खेल जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सहित कई सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। उन्हें महेश भूपति सर को, भारतीय टेनिस के गौरव महान खिलाड़ी जो ये रहे हैं, उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हम आकाशवाणी टीम की तरफ से प्रेषित करते हैं।

दोस्तों आज पुण्यतिथि है बसप्पा दानप्पा जत्ती की, जिनका आज ही के दिन साल 2002 में निधन हुआ था। भारत के पांचवें उपराष्ट्रपति ये रहे थे। साथ ही साथ 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यरत रहे। अपनी साथ की ईमानदारी और जनसेवा के लिए हमेशा ये जाने जाते रहे। साथ ही साथ इन्होंने मैसूर, जो कि वर्तमान कर्नाटक है, उसके मुख्यमंत्री, पुदुचेरी के उपराज्यपाल और उड़ीसा के राज्यपाल भी ये रहे थे, और ये कार्यभार इन्होंने बखूबी संभाला था। साथ ही साथ दोस्तों आज का दिन याद करने का दिन है नटराज रामकृष्ण को। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के महान आचार्य भी थे, शोधकर्ता भी थे, और खास तौर पर इन्होंने नृत्य के पुनर्जागरण का जो महत्वपूर्ण कार्य संभाला था उसके लिए ये जाने जाते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय नृत्य परंपराओं के लिए समर्पित कर दिया था। और खास तौर पर चूंकि यह आंध्र प्रदेश के थे तो वहां की जो विलुप्त प्राय नृत्य शैलियां थी उसके संरक्षण के लिए इन्होंने कार्य किया था, जैसे कि आंध्र नाट्यम और पेरिनी शिव तांडवम, और इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी जो आज भी नृत्य पे शोध करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बने हुए हैं। आज ही के दिन साल 2011 में इनका निधन हुआ था, लेकिन आज हम इन्हें खास तौर पर किसी भी विरासत को पुनः जीवंत बनाने का अगर प्रयास करने के लिए याद करते हैं तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बिल्कुल नृत्य की हर धड़कन में जिसकी साधना बोलती है, वहीं संस्कृति की हर धड़कन में उन्हीं की स्मृति जीवित रहती है। तो बिल्कुल ऐसे कर्मयोगी को हम शत-शत प्रणाम करते हैं और आपको ये खूबसूरत सा गीत नमस्कार कार्यक्रम में सुनवाते हैं।

0: दोस्तों, इसी के साथ घड़ी की सुइयों ने इशारा करना शुरू कर दिया है कि आज के नमस्कार से लेनी होगी हमें इजाजत। तो आज के इस प्रोग्राम से आपकी दोस्त स्वाति
1: और नेहा रांकावत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सवेरे के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम चुनमुन।

0: गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी कामिनी दीदी फिर से हाजिर हूँ आपके फेवरेट प्रोग्राम चुनमुन में। तो बच्चों, कैसे हैं आप? आज संडे की मस्ती के साथ हम करेंगे ढेर सारी बातें और लेंगे बहुत सी जानकारियाँ और साथ ही सुनेंगे एक मज़ेदार कहानी और प्यारे प्यारे गीत। तो आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ।
1: कच्चा गोली गिल्ली डंडा टापू और पकड़म पकड़ाई। कच्चा गोली गिल्ली डंडा टापू और पकड़म पकड़ाई। बचपन के दो सारे खेल अभी से हमने छोड़े भाई।
2: टीन का डब्बा पीट पीट कर, हाँ टीन का डब्बा पीट पीट कर एक नई सी दुनिया बनाई।
3: गीत लिखेगा कौन बताओ, हमको तो ना लिखाई।
4: अरे ये लिखेगा ना यार, माधव माधव लिखेगा। अरे लिख तो।
5: अरे सोचने तो दे।

0: पूछे हमारी बीवी
1: तो कह दूंगी उसको दिला दे वो देश।
2: टिश, टिश, टिश, टिश।
3: अरे बुद्धू ये देश नहीं वो देश।
4: अकड़ बकड़ बमे को
5: सीनों में पूरे सौ
6: निकला था
5: जो निकल के भागा।

0: बच्चों, आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो हर साल 7 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सभी को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के महत्व के बारे में जागरूक करना। बच्चों, क्या आप जानते हैं, गंदा या दूषित भोजन हमें बीमार कर सकता है, इसलिए हमें हमेशा ताज़ा और साफ भोजन करना चाहिए। और हाँ, खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना भी बहुत ज़रूरी है, इससे कीटाणु हमारे शरीर में नहीं पहुंचते। और भी कई आसान खाद्य सुरक्षा नियम हैं, जैसे फल और सब्जियां हमेशा अच्छी तरह धो के खानी चाहिए, बासी भोजन से बचना चाहिए और खुले में रखी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। तो बच्चों, अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, पेट दर्द, उल्टी जैसी कई परेशानियां हो सकती है। हम भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं करते, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा का रखे ध्यान, यही है सेहत की पहचान।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

बच्चों, खाने पीने की बातों से ही मुझे एक मजेदार कहानी याद आ गई। कहानी का शीर्षक है बोलने वाला तरबूज। इस कहानी को सुनने के लिए हमें चलना होगा चंपक वन के अनोखे खेत में, जहाँ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। हाँ, पूरी कहानी बिल्कुल ही काल्पनिक है। चलेंगे हम चंपक वन के खेत में, लेकिन पहले सुनते हैं ये गाना।

चंपक वन में चीकू नाम का एक बहुत ही आलसी बंदर रहता था। उसका मन कभी भी किसी काम में नहीं लगता था। एक दोपहर उसे जोर की भूख लगी। वह खाने की तलाश में भोलू भालू की तरबूज के खेत में छिपकर घुस गया। खेत में बड़े बड़े गोल मटोल और रसीले तरबूज लगे थे। चीकू ने एक बड़ा सा तरबूज चुना, उसमें एक छोटा सा छेद किया और सारा रस पी गया और तरबूज खाली हो गया। पर उसका पेट एकदम ढोल जैसा भारी हो गया। उसे इतनी सुस्ती आई कि वह उसी खाली तरबूज के अंदर घुस गया और सो गया। तभी खेत का मालिक भोलू भालू वहां आया और भोलू ने उसी तरबूज को उठाया और बोला, वाह कितना भारी तरबूज है, इसे तो राजा शेर सिंह को देना चाहिए और मन चाहा इनाम लेना चाहिए। पर तभी चीकू बंदर की नींद खुल गई। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा, अगर भालू ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। तभी चीकू के दिमाग में एक शरारत सूझी। क्या है वो शरारत, जानते हैं इस गीत के बाद।

बच्चों चीकू भी शरारती था इन्हीं बच्चों की तरह। जैसे ही भोलू भालू तरबूज लेकर चलने लगा, तरबूज के अंदर से एक भारी आवाज आई, अरे भोलू मुझे आराम से उठाओ, मेरा दम घुट रहा है। भोलू भालू झटके से रुक गया। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने तरबूज को कान के पास लगाया। तरबूज फिर से बोला, इधर उधर क्या देख रहे हो भोलू जी, मैं तरबूज बोल रहा हूँ, मुझे धूप में मत ले जाओ, मुझे छांव पसंद है। भोलू के तो होश उड़ गए, वह डर के मारे कांपने लगा। बाप रे बाप, बोलने वाला तरबूज। वह डर के मारे भागा और सीधा राजा शेर सिंह के दरबार में पहुंच गया। महाराजा शेर सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। भोलू ने हाँफते हुए कहा, महाराज गजब हो गया, यह तरबूज तो बोलता है। शेर सिंह हंसा, मूर्ख भालू, तरबूज भी कहीं बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। राजा ने तरबूज मंगवाया और उस पर हाथ रखकर कहा, बताओ तरबूज तुम सच बोल सकते हो। पर तरबूज में तो कौन था, हमें तो पता है ना, चीकू। उसने आवाज निकाली, हाँ महाराज मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, और मुझे यह भी पता है कि आपने सुबह सुबह ब्रश किए बिना ही 2 किलो जामुन खाए हैं। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया, क्योंकि राजा ने वास्तव में ब्रश नहीं किया था। राजा को गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर कहा, इस बदतमीज तरबूज को अभी के अभी महल के बाहर

बच्चों, सैनिकों ने तरबूज उठाया और महल के बाहर एक झाड़ी में जोर से फेंक दिया। तरबूज झाड़ी में जाते ही टूट गया और चीकू बाहर निकलकर हंसी के मारे लोटपोट हो रहा था। इस तरह उसने अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, कैसी लगी बोलने वाले तरबूज की कहानी? इससे हमें क्या सीख मिलती है कि आलस करना बहुत ही बुरी बात है, लेकिन सूझबूझ से हर मुसीबत से निकला जा सकता है।

तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले संडे ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ और ढेर सारी बातें और गानों के साथ। तब तक दीजिए अपनी कामिनी दीदी को विदाई। नमस्कार एंड टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चुनमुन। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सवेरे के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुना रहे हरिहरन की आवाज में ये गीत।

लीजिए सुनिए ये अगला गीत अदनान सामी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत के बोल है रियाज उर रहमान सागर के और धुन दी है अदनान सामी ने।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला नगमा। तुलसी कुमार और तनिष्क बागची की आवाज़ों में गीतकार है अराफत महमूद और संगीत है तनिष्क बागची का।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। लीजिए सुनिए अभिजीत सावंत की आवाज में ये प्यारा सा गीत। संगीतकार है प्रेम और हर्षदीप सिद्धू।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, लोक संवेदनाओं और जनजीवन की धड़कनों को अपने साथ लिए हम एक बार फिर उपस्थित हैं आपके बीच। आप सुन रहे हैं हमारा प्रसारण मीडियम वेव 564.97 मीटर आई 531 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर की सभा में संगीत समाचार और उपयोगी जानकारियों से सुसज्जित कार्यक्रमों की श्रृंखला आपके लिए प्रस्तुत है। सभा का प्रारंभ करते हैं फिल्म संगीत से। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में आप सुन रहे हैं अभी फिल्म सिंग इज किंग का ये गाना, मयूरपुरी के बोल प्रीतम का संगीत।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

साल 2007 में आई फिल्म तारारम्पम का ये गाना, शान और सुनिधि चौहान की आवाजें, बोल जावेद अख्तर और संगीत विशाल और शेखर।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ जी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: प्रदीप
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

उदित नारायण, सोनू निगम, शंकर महादेवन और साधना सरगम की आवाजों में आप सुन रहे हैं फिल्म कल हो ना हो का ये गाना। शंकर एहसान लोहे का संगीत और जावेद अख्तर के बोल।

सुखविंदर सिंह, शेखर राव जानी और हिमानी कपूर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बचना ए हसीनों का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश फिल्म मैं हूं ना से, अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल और अनु मलिक का संगीत।

फिल्म संगीत की इस प्रस्तुति के बाद अब समय है हमारी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं की सुरीली अभिव्यक्तियों का। आइए सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं जेफू खान लंगा पार्टी की ये लोक रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कालूराम प्रजापत की ये लोक रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के आखिर में आइए सुनते हैं गौरी देवी की ये लोक रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। लोक धुनों की इस रंगारंग यात्रा के बाद अब प्रस्तुत है सुगम संगीत, जिसमें आप सुनेंगे मन भावन और लोकप्रिय रचनाएं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं कलाकार गुलाम अली को।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। अब समय है प्रदेश की प्रमुख घटनाओं और समसामयिक गतिविधियों से अवगत होने का। प्रस्तुत है आकाशवाणी जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से

0: स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया संदेश में सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लेने को कहा है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान समुद्री यातायात में गंभीर व्यवधान के बावजूद भारत होर्मुज जलडमरू मध्य से ऊर्जा माल की आवाजाही जारी रखने में सफल रहा। मंत्रालय के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और एलपीजी की बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। इस बीच घरेलू रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख है। बोर्ड के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इस बीच सरकार की ओर से नीट यूजी परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही प्रश्न पत्र लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी तरह के संदेश पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों का उल्लेख करते हुए श्री मांडविया ने नागरिकों से इस पहल में शामिल होने और फिट इंडिया के सपने को साकार करने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कोटपुतली में पुलिसकर्मियों ने साइकिल रैली निकाली। इसके बाद पुलिस लाइन मैदान में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास कर फिट रहने का संदेश दिया। सवाईमाधोपुर में दशहरा मैदान से सर्किट हाउस तक साइकिल रैली में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मौसम विभाग ने आज राज्य के 12 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राजधानी जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में तेज हवा के साथ बरसात हो सकती है। इस बीच पश्चिमी जिले एक बार फिर तेज गर्मी की चपेट में हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर सहित कई अन्य स्थानों पर दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में अगले दो दिनों तक तापमान बढ़ने और गर्मी का असर बने रहने की संभावना जताई है। बीकानेर में होने वाले खेलो बीकानेर यूथ गेम्स 3.0 के लिए खिलाड़ियों के पंजीयन शुरू हो गए हैं। इसके लिए 25 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। गेम्स में 15 से अधिक खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें टीम और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की स्पर्धाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: समाचारों के उपरांत एक बार फिर आपका स्वागत है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब प्रस्तुत है हमारा नियमित कृषक हितेशी कार्यक्रम कृषि जगत। आज के अंक में चर्चा है टिंडा की खेती में कीट प्रबंधन। कृषि विशेषज्ञों के उपयोगी सुझावों और जानकारी के साथ प्रस्तुत है कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाई ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम। किसान भैया आपा खेती बाड़ी रा काम काज जिका है वो अलग आप रे करा हा। किसान भाई वही चाहे के भाई खेती बाड़ी रो काम काज वे जो धान री पैदावार लेनी चाहे वा लेवे। हमें किसान भाई री कोशिश आ रहा है कि भाई आने वालो भगत जी को है वो आप रे बरसात रो रही खेत री तैयारी करे है। जो कई किसान भाई बाजरी बाई मूंग बाई मोड बाई गवार बाई भात भातरी जी की फसला है। कई किसान भाई आप रे जो हमें तरकाकड़ी है खीरा है भिंडिया है लौकी है तोरई है टिंडा है अने भी खेती आप रे ले रखी है और कोशिश आ रहे है कि भाई पैदावार वे कटी करेला बायोड़ा है तो विनी भी आप रे देखभाल करे है कटी मालू टिंडा बायोड़ा है तो विनी भी आप रे देखभाल करे है। आज आपने जानकारी दे वहाँ के भाई टिंडा री खेती करी है तो उठे कीट नियंत्रण है को काम काज है वो किसान भाई के कर करे। एक तो टेमो टेम किसान भाई री कोशिश रहे के भाई जटे ही आपने टिंडा बायोड़ा है उठे भात भातरी जी की खरपतवार है उग जाया करे क्योंकि मिट्टी में इन्हें नमी रहे हाथ हाथे आपने पोषक तत्व भी रहे धूप भी खिले तो हाथ कई ऐडा पौधा है जिका भी प्रतियोगिता कर परार आगे बढ़े है और टिंडा री बिलड़ियों भी धके जमनी कोशिश करे तो हमें विन हाथ हाथे कई ऐडा कीट है पतंगा है वे भी आ जा मान लो तो इनसु कई वे के खरपतवार किसान भाई ने आपने टेमो टेम जी लेनी चाहिए जिनसु कई वे के मिट्टी रे जी का पोषक तत्व है वे खरपतवार ने नहीं मिल परान टिंडरी जी की बेलड़िया है मिले तो बढ़िया फूल भी आवे फल भी आवे और ज्यादा उत्पादन भी आवे। किसान भाइयों टिंडारी पैदावार महीने आपा कीट नियंत्रण की बात करा तो लालड़ी भी उजाया करे पौधा माते दो पत्तियां निकले उन वक्त ओज को कीट रो प्रकोप है ओ शुरू हो जाया करे ओ कीट कहीं क्रिया करे पत्तियां और फूला ने ओ खाया करे कीट जी की सुंडी है आज जमीन महीने पौधारी जी की जड़ है उन्हें काटिया करे। हमें बात आवे कि भाई आ लालड़ी लागी है तो हमें इंडी रोकथाम किसान भाई आप रखी कर करे तो रोकथाम रे वास्ते कहीं करे कि नीम रोक काटो या पच्चे गोमूत्र ने माइक्रो जाइम रे साथे साथे मिला परार अचित्रों मिश्रण तैयार करे और 250 मिलीलीटर ने प्रति पंप द्वारा फसल महीने तर बतर कर परार आपने बढ़िया पंप छिड़काव करे। टिंडारी पैदावार महीने किसान भाई फल मक्की भी प्रवेश कर जा और उठा आपने इंडा भी दे दे तो इंडा दिया रे बाद में कहीं वे के उठे सुंडी निकलनी हरू हुए और वे अपने जिका भी टिंडारा जी का फल है उन्होंने बेकार कर दे आ मक्की खास तौर जी की खरीफ री फसला ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया करे।

0: तो हमें बात आव्या कि भाई इन्हें फल मकीरो भी खात्मा अपन करनो पड़ेगा जदी जापाने बढ़िया टिंडा लागेला। रोकथाम रे वास्ते किसान भाई कहीं करे बड़े वही जापाने जो नीम रो काडो है या गोमूत्र है उन्हें माइक्रो जैम रे साथ आपने मिला परार बढ़िया मिश्रण बना और 250 मिलीलीटर आप बढ़िया गोल बना पंप फसल लेते आप छिड़काव करे जिनसु फल मकी जिकी है आ नष्ट हो जाया करे। एक सफेद ग्रब भी होया करे और कीट कद्दू वर्गीय पौधा ने बहुत ज्यादा भारी मात्रा में इन्हें हानि पहुंचाया करे और रेवे कट है और रेवे जमीन में रहे और जमीन में रहे तो कहीं करे के पौधा री जी की जड़ा है वो खाव तो जावे और जिनसु कहीं भी एक पौधा भूकना हरू जा और पचे पौधा नष्ट हो जा। रोकथाम रे वास्ते किसान भाई कहीं करे के खेत में बुआई पहला नीमरी खाद रो प्रयोग करे तो जिनसु वो सफेद गर्भ है नीवे। टिंडारी फसल में कई रोग भी लाग जाया करे, पहला हमारा अपा कीटारी बात करी चूर्णी फंपुदी भी लाग जाया करे और रोग जी को है फंपुदी होया करे उनके कारण होया करे और पत्तियां है तना है सफेद हो जावे दरदरा हो जावे गोलाकार जी का जाल जी अपने दिखने लाग जावे बाद में बहुत मोटे आकार में हो जावे पूरी पत्तियां जी की है पीली पड़ जाया करे और बाद में सूख जाया करे और जो को पौधो है अपने टिंडरो उन जी की बढ़वार है अभी आप रुक जाया करे। रोकथाम वास्ते आप नीम रो काडो है या गोमूत्र ने माइक्रोजाइम रे साथ मिलाना आप अच्छी तरह देवे और छिड़काव करे तो चूर्णी फंपुदी जी की आग खत्म हो जाया करे रोग जी को। हमें एक मोजेक रोग भी हो जाया करे और विषाणु हुआ करे पत्तियारी बढ़वार जी की है वे इन रोग से रुक जाया करे और पत्तिया मुड़ जा फल लागे पर वे फल जी का है हाव छोटा छोटा लागे और किसान बहन जी की उपज है वह हाव कम मिलिया करे तो रोग जी को है चैंपो फैली जा करे। मोजेगरी रोकथाम वास्ते किसान भाई कहीं करे के वो ये वास्ते रोग रहित बीज रो जी को है उपयोग करे आपने बढ़िया पहला सु और रोग रोधी जी की किस्मा है वह टिंडरी आपने उगावनी चाहिए। एक बात वे एग्जट है भाई ए रोगी पौधा वे पालन अपने जला देना चाहिए। किसान भाइया आ ही जानकारी के भाई टिंडारी खेती ने महीने आपा कीट और रोग रोजी को नियंत्रण है वो आपा किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूर्व वेरियो है दिनेश राणे जाने सीख दिलाओ राम राम।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत।

सजा है सेहत का दस्तरखान, स्वच्छता की आई है दावत। नारी वाटिका में आज फिर से महकेगी जिंदगी की हर आदत। सखियों, आप सभी का दिली तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के अपने पसंदीदा प्रोग्राम नारी वाटिका में।

0: सजा है सेहत का दस्तरखान, स्वच्छता की आई है दावत। नारी वाटिका में आज फिर से महकेगी जिंदगी की हर आदत। सखियों, आप सभी का दिली तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के अपने पसंदीदा प्रोग्राम नारी वाटिका में, जहां सजेगा सेहत और स्वच्छता का अंदाज। नमस्कार, खुशामदीद, मैं हूं आपकी अपनी रेडियो सखी समीना और मेरे साथ हैं
1: बसंत कंवर।
0: तो एक बार पुनः स्वीकार कीजिए हमारा
1: का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज नारी वाटिका के इस खूबसूरत आंगन में हम सिर्फ एक शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नई सोच का आगाज कर रहे हैं। आज के हमारे नारी वाटिका के इस अंक का केंद्र बिंदु है सेहत का दस्तरखान और स्वच्छता की दावत, जहां सेहत स्वाद बनेगी और स्वच्छता हमारी सबसे खूबसूरत आदत। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और सेहतमंद कल की नींव रखते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।

0: बसंत दावते इश्क तो हमने दे दी सखियों को, और साथ में हमने बात की है कि हम मोहब्बत के साथ में सेहत की भी परवाह करते हैं,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि कहा जाता है कि मोहब्बत हो या सेहत, हर एक रास्ता रसोई से ही होकर के गुजरता है, और जहाँ सलीका हो साफ सफाई का, वहाँ खुदा भी दुआ कबूल करता है।
1: बिल्कुल समीना, कहते हैं निवाला सिर्फ पेट नहीं भरता, ये वो धागा है जिससे पूरा परिवार आपस में जुड़ता है।
0: बिल्कुल। और जब परिवार के जुड़ने की बात आती है, तो हम इस खूबसूरत आंगन की अगर हम बात करें, हमारी नारी वाटिका के आंगन की बात करें, तो एक बहुत ही ज़रूरी बात जो है, हम अपनी सखियों से यही कहेंगे कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ हमारे दिल से जुड़ी नहीं है, वो हमारे पेट के रास्ते से होकर के गुजरेगी और हमारे
1: बिल्कुल
0: सखियों के दिल तक पहुँचेगी। तो वैसे भी कहा जाता है कि परिवार के दिल का रास्ता पेट से होकर के गुजरता है, लेकिन वो रास्ता तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें सेहत और सुरक्षा का तड़का नहीं लगाया जाता।
1: बिल्कुल
0: अब बसंत, तुम ये बोलोगी कि आज इतनी सारी बातें सेहत और सुरक्षा की क्यों? क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस।
1: सखियों, प्रति वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी, और पहली बार इसे 7 जून 2019 को मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो, उसमें किसी भी प्रकार के हानिकारक जीवाणु, रसायन या अशुद्धियाँ ना हो। असुरक्षित भोजन से अनेक प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो बसंत। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि दुनिया भर में लाखों लोग प्रतिवर्ष दूषित भोजन के कारण बीमार पड़ जाते हैं, और इस समस्या से निपटने के लिए और खाद्य उत्पादन से लेकर के उपभोग तक करने के लिए प्रत्येक स्तर पर सुरक्षा को सुनिश्चित करना और इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य ही यही था कि किस तरह से ये सारी
1: बिल्कुल
0: बातें सुनिश्चित की जाए।
1: सखियो, इस दिवस के माध्यम से खाद्य उत्पादकों, व्यापारियों, सरकारों और उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाता है कि सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य की आधारशिला है। अतः विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें ये प्रेरणा प्रदान करता है कि हम स्वच्छ, पौष्टिक और सुरक्षित भोजन को अपनाएं तथा खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करके स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दें।
0: बिल्कुल, योगदान तो देंगे और साथ में हमारा योगदान भी ये है कि हम अपनी सखियों को प्यारे प्यारे नगमे भी सुनवाएं, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: हम उनसे कितना प्यार करते हैं ये तो हमारा अगला गीत उनको खुद ही बता देगा।
1: बिल्कुल, हमें तुमसे प्यार कितना ये तो हम नहीं जानते।

0: हाँ तो सखियों, हमें आपसे बहुत सारा प्यार है, और इसीलिए क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी, आप परिवार की धुरी हैं, तो आप पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकेंगी।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी जिसमें सेहत भी हो और साथ में हमारी जो दिनचर्या है उससे जुड़ी हुई बातें भी होंगी। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारी किचन की तरफ, जहाँ कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपके साथ साथ आपके अपनों के लिए भी लंबी उम्र की सेहत को पक्का कर देंगे। तो बहुत सारी टिप्स हैं जो हम लेकर के आए हैं, तो उनमें से सबसे पहला जो है वो बसंत कुछ बताने वाली है।
1: बिल्कुल। सब्जियों और फलों को सिर्फ पानी से छूना नहीं, उन्हें अच्छे से धोना है। जब आप हर कीटाणु को दूर भगाती हैं तो थाली में सिर्फ खाना नहीं, माँ और बहन का दुलार भी परोसा जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि दुलार और प्यार ही तो है जो खाने के स्वाद को और भी बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल
0: और जब बात होती है कि कच्ची सब्जियों और पके हुए खाने के लिए, जो हम चॉपिंग बोर्ड्स का या चाकू वगैरह का, कटलरी का जो इस्तेमाल करते हैं ना, उनको अगर अलग अलग

0: दिया जाए ना, तो एक छोटी सी जो हमारी आदत है ये हमारे परिवार को अनजानी बीमारियों से कोसों दूर तक ले जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही खाना न तो ज़्यादा देर खुला छूटना चाहिए और ना ही बार बार गर्म होना चाहिए। सही तापमान पर पका और सही तरीके से स्टोर किया गया खाना ही असली पोषण देता है।
0: बिल्कुल। और एक बात जो हमारे जो है सरकार में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं, और उसके साथ में हम जो सखियाँ ना, हमारी जो सखियाँ स्मार्ट हैं वो भी इस बात का पूरे तरीके से ख्याल भी रखती हैं कि कम तेल में छिपा है गहरा प्यार, यानी मसालों का स्वाद उभर कर आना चाहिए। जो सब्जी हम बना रहे हैं वो बहुत स्वादिष्ट भी बननी चाहिए, लेकिन इसके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कढ़ाई में तेल जो है वो तैरता हुआ नजर आए। तो कम तेल और सही मसालों का संतुलन हमारे दिल को हमेशा जवां रखेगा और धड़कते रहने की ताकत भी देगा।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सजा रखी है जो थाली आपने, उसमें स्वाद के साथ फिक्र भी है। जायका ऐसा कमाल का आपकी रसोई का कि हर महफिल में आपका ही जिक्र भी होता है। तो हमारी जो प्यारी सखियां हैं वो, उनको हम इस खाद्य सुरक्षा दिवस में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं बसंत, लेकिन ये वादा करते हैं कि अपनी रसोई जो है उसको सिर्फ स्वाद का केंद्र नहीं बल्कि सुरक्षित सेहत का मंदिर भी हमें बनाना है।
1: बिल्कुल।
0: और बातें हमारी अब कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रही है, बातें बहुत सी है जो हम करने वाले हैं, लेकिन सखियों को सुनवाते हैं पहले एक और प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: सखिया सुन रही है अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका। अभी अभी हमने बात की कि कैसे रसोई की स्वच्छता और सुरक्षा से हम घर और परिवार के दिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर इस रास्ते में थोड़े से रंग, थोड़ी खुशबू और थोड़ी शुद्धता की बहार और जुड़ जाए तो कैसा रहेगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा बसंत, क्योंकि हम अब बात करने वाले हैं हमारे रसोई के उस छोटे से जादुई कोने की जिसे हम कहते हैं किचन गार्डन। तो वहाँ की बात कुछ अलग होती है। गमले में उगी वो हरी मिर्च जब तीखे तेवर दिखाती है और गमले की ताजी जो धनिया है जब दाल का जायका बढ़ाती है तो उसकी रौनक कुछ और होती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बाजार के पैकेटों में वो बात कहाँ मेरी सखियों, जो माँ के हाथों से सींची हुई मिट्टी की सौंधी सी महक में होती है।
1: बिल्कुल, तो सच कहें तो सखियों, किचन गार्डन सिर्फ पौधे लगाने की जगह ही नहीं बल्कि हमारी रसोई का अपना एक छोटा सा लाइव सुपरमार्केट होता है जहां ना कोई मिलावट है, ना कोई केमिकल और ना ही कोई पेस्टिसाइड्स। यह वो जगह है जहां हम सेहत को खुद अपने हाथों से उगाते हैं।
0: बिल्कुल सखियों, आज के समय में हर कोई अच्छी सेहत चाहता है, लेकिन सेहतमंद रहने के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी होता है। बाजार में मिलने वाली सब्जियों और फलों में कई रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है
1: बिल्कुल
0: जो हमारी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे हम घर पर ही बिना केमिकल के जैविक सब्जियां और फल उगा सकते हैं, परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए सबसे पहले ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर कि दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे तक धूप आती हो। जगह बड़ी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है बल्कि सही धूप और देखभाल ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि पौधों के भोजन की यानी कि खाद, तो उसे भी हम आसानी से बना सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: घर पे बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारी किचन में जो बहुत सी चीज़ें हैं जो जो सब्जियों और फलों का जो कचरा होता है या छिलके होते हैं उनसे हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: और कंपोस्ट खाद बनाने के लिए आप घर की रसोई के कचरे का इस्तेमाल कर सकती हो और जैसे चाय की पत्ती वगैरह होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस करना ये है कि एक या तो आपके जो कच्ची जगह है किचन के बाहर, जब गार्डन में अगर जो जगह है वहां पे आप एक बड़ा सा गड्ढा खोद दीजिए और उसमें वो डालते रहिए लगातार, और या फिर कोई इतनी जगह नहीं है तो
0: बड़ा
1: आप
0: कंटेनर ले सकते
1: कंटेनर ले
0: हैं।
1: सकते हैं, कोई डब्बा ले सकते हैं और उसमें उस कचरे को इकट्ठा करती रहें और समय समय पर उसको उलट पुलट करती रहें। देखिए 40 से 60 दिन के अंदर आपकी कंपोस्ट खाद बनकर के तैयार हो जाएगी।
0: बिल्कुल सखियो, इससे कचरा भी कम होगा और आपके पौधों को प्राकृतिक पोषण भी मिलेगा। अब अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को, जैसे कि टमाटर, मिर्ची, धनिया, पालक, मेथी, भिंडी, टिंडी, पता नहीं क्या क्या सब्जियां जो है, वो आप अपने गमलों में और घर पर

0: बेकार रखे, कई बार जो हमारी बाल्टियां टूट जाती हैं, टब टूट जाते हैं, तो हम उनका भी उपयोग करके और इसमें अपनी उसको उगा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ में प्राकृतिक कीट जो नियंत्रक, जैसे कि नीम के तेल का घोल या फिर जैविक घोल का छिड़काव करके हम पौधों को स्वच्छ बना सकते हैं। और समय पर सिंचाई करने की तो ज़रूरत है ही। और जब आप सिंचाई करती हैं ना बसंत, यानी कि आप सुबह उठी और आप एक कप चाय की प्याली लेकर के जब बालकनी में जाती हैं और
0: बिल्कुल।
1: वहाँ आपका जो छोटा सा गमले में अगर पौधा लगा हुआ है उसको निहारते हुए चाय पीती है ना, तो आपके दिल का सुकून और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है।
0: बिल्कुल, थोड़ी सी देखभाल से ही आपके घर की बगिया ऑर्गेनिक सब्जियों से लहरा उठेगी और ये बगिया आपको हरियाली के साथ मानसिक शांति भी प्रदान करेगी।
1: बिल्कुल, मानसिक शांति भी प्रदान करेगी और सुकून भी देगी। साथ ही हमें एक सुकून तब भी मिलता है जब हमारी बगीचे में जब लहलाते फूल जो होते हैं वो हमसे बातें करते हैं और ये कहते हैं कि जो जीवन की बगिया है वो किस तरीके से महक रही है।

0: हाँ तो बसंत, जीवन की बगिया को महकाते महकाते हम फिर से चले चलते हैं हमारी किचन की तरफ, जहाँ हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि पौधे लगाएंगे, बगीचे को सजाएंगे, तो हम अपनी किचन को भी सजा सकते हैं उन्हीं
1: बिल्कुल।
0: पौधों के साथ में, जैसे कि जो हर्ब्स हैं उनको हम लगा सकते हैं, और इसके साथ में हम एक फर्स्ट एड बॉक्स वाला गमला भी लगा सकते हैं।
1: वो कैसे?
0: फर्स्ट एड बॉक्स वाला गमला ये है कि जिसमें हम एलोवेरा है, तुलसी है, अजवाइन का पौधा है, या फिर लेमन ग्रास को हम लगा सकते हैं। और जैसे कि अभी मैंने बात की थी ना कि सुबह बालकनी में जब हम चाय की चुस्की लेते हैं, तो उस चाय में अगर लेमन ग्रास डली हुई है तो हमारे तनाव को काफूर कर देती है। और इसके साथ ही जब हम जो कबाड़ से जुगाड़ वाली बात करते हैं ना, तो हमारे घर में बहुत सी टूटी फूटी या ऐसी चीजें हैं जिनको हम फेंक, वो हमारे लिए यूज में नहीं आ रही है, पुरानी जो ट्रे है या पुरानी जो हमारे बकेट्स हैं उनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उनको बहुत सुंदर डेकोरेट करके भी हम अपने किचन में वॉल हैंगिंग की तरह या हमारी जो किचन की खिड़की है वहां पे लगा सकते हैं, और इस तरह से हमारा किचन भी हरा भरा और महकता हुआ नजर
1: बिल्कुल
0: आएगा।
1: सवीना, नन्हे से पौधे में जब हम पानी डालते हैं और उसमें से जब एक नई पत्ती फूटती है तो वो सिर्फ एक पौधा नहीं बढ़ता, उसके साथ हमारा सुकून बढ़ता
0: बिल्कुल
1: है ना। और जब बच्चे देखते हैं कि टमाटर कैसे बड़ा हो रहा है तो वो प्रकृति की इज्जत करना सीखते हैं, यानी स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत, और बच्चों को एक खूबसूरत सीख भी मिलती है
0: बिल्कुल
1: इससे।
0: बिल्कुल
1: हाथों में मिट्टी की खुशबू और होठों पर हो मुस्कान, हर नारी का अपना एक छोटा सा हो हरा भरा आसमान। तो
0: बिल्कुल
1: सखियों, क्यों ना आज से ही आप भी अपने घर में एक छोटी सी जैविक बगिया उगाने की शुरुआत कीजिए। और अभी हम सुनते हैं प्यारा सा गीत।
2: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
3: डन
2: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों के निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: प्यार तो हमें है अपनी सखियों से, इसीलिए हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और चलो आज हमने जब किचन गार्डन तक की बात कर ली, और आज ये सारी बातें इसलिए कि हम अपनी सेहत और सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहती हैं, और ये हमारा दायित्व भी है कि हम इस तरह से अगर चिंता करते हैं तो हमारे परिवार की सेहत बनी रहे, और उसके लिए हम बहुत से प्रयास भी करते हैं, और उसके लिए हम निरंतर प्रयास के साथ में कुछ ऐसी बातें भी होती है जिनको हम जोड़ करके और अपने किचन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं और साथ ही अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। तो किचन गार्डन से हमने ताजगी भी बटोर ली, लेकिन सोचिए इतनी शिद्दत से और प्यार से लाई गई अगर चीजें रसोई में रखे रखे खराब हो जाए या उसमें कीड़े लग जाएं या फंगस आ जाए तो मेरा तो बहुत दिल दुखता है।
2: मेरा भी दुखता है यार।
1: कहते हैं कि एक समझदार जो गृहिणी होती है वो सिर्फ अच्छा खाना बनाना नहीं जानती बल्कि वह रसोई के सामान की उम्र बढ़ाना भी जानती है, और चीजें सहज कर रखना भी एक कला है, सिर्फ लाना ही नहीं उन्हें बचाना भी एक हुनर है।
2: बिल्कुल, जहाँ चीजें सलीके और सलीके से और महफूज रखी जाती समझो उस घर में बरकत नजर आती है।
1: बिल्कुल,
2: तो सिर्फ खाना बनाना ही काफी नहीं होता है बल्कि उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता का आधार भी है। यदि भोजन को सही ढंग से न रखा जाए तो उसमें बैक्टीरिया, फफूंद और कीटाणु पनप सकते हैं जो अनेक बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि खाना दिखने में ठीक है तो खाने योग्य भी होगा, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता है। कई बार होता है कि हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो बिना गंध और स्वाद बदले भी भोजन में मौजूद रह सकते हैं, तो इसलिए भोजन व अनाज को सही तरीके से स्टोर करना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कह रही है, और देखो ना अभी जो मौसम है वो मौसम बदल रहा है और तेज गर्मी है, इसमें इस तरह से हम जो खाना रखते हैं उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। तो जहां हम बात करते हैं अनाज और दालों की, तो अनाज को जो है नीम की जो सूखी पत्तियां होती है ना उसके साथ में रखने से, नीम की सूखी पत्तियों की एक लेयर रखकर फिर अनाज को अगर स्टोर किया जाता है तो उसमें कीड़े नहीं लगते। इसके साथ ही साथ अनाज को पूरी तरह से सूखा करके और फिर उसको स्टोर करना चाहिए, और समय समय पर ये चेक करते रहना चाहिए कि अनाज खराब तो नहीं हो रहा। और इसके साथ ही गर्मी और उमस में जो है दालें या चावल या सूजी, इनमें घुन या कीड़े लगने का भी आम बात हो जाती है, तो इनसे बचने के लिए अनाज के डिब्बों में जो है सूखी पत्तियां तो डाल ही रहे हैं, उसके साथ ही बहुत सी जो है ऐसी दवाइयां या ऐसी चीजें भी हमारे पास में मौजूद हैं जिनको हमें उसमें रख देना चाहिए। लेकिन दवाइयां जब आप रख रहे हो तो उसमें आप ये याद रखिए कि उसको कॉटन के कपड़े में लपेट करके बांध करके रखें ताकि जब हम उस अनाज को ले रहे हैं तो उसके साथ में वो ना आ जाए, और उसको अच्छे से चेक करके बाहर निकाल दें, उसके बाद में ही खाने पीने की वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए।
2: बिल्कुल समीना, इसके साथ ही अगर जैसे सूजी है या दलिया है ये चीजें होती है ना, इनमें कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, तो इनको अगर ड्राई रोस्ट करके और अगर हम ठंडा करके कंटेनर में रखेंगे तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और जो मसाले हैं उनकी खुशबू जो है वो या रंग जो है वो बदल जाता है हवा में लगते ही, तो हमेशा उनको कांच के एयरटाइट जार में रखें और कभी भी गीले चम्मच से मसाला ना निकालें क्योंकि नमी से ही जो है वो फंगस बहुत ज्यादा फैलती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और अगर बात करें हम सब्जी और फलों की तो उनको खरीदने के बाद साफ धोकर सुखाना फिर फ्रिज में रखना चाहिए, और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उन्हें सूती कपड़े में लपेटकर या पेपर में लपेटकर फ्रिज में रखना चाहिए, और साथ ही जो पका हुआ भोजन है उसको 2 घंटे से अधिक कमरे के तापमान पर नहीं रखना चाहिए, उसे ठंडा करके ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख देना चाहिए, और दोबारा खाने से पहले उसे अच्छी तरह से गर्म करके रखना चाहिए ताकि बैक्टीरिया उसके नष्ट हो जाएं।
1: और एक बात और है, जब हम ईंधन के बचाने की बात करते हैं तो खाने को बार बार गर्म भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे अच्छे जो पौष्टिक तत्व हैं, खाना अगर बार बार गर्म होता है तो अच्छे जो पौष्टिक तत्व हैं वो भी निकल जाते हैं, तो सुरक्षित भोजन को रखना ये हमारी पहली जिम्मेदारी है, उसके साथ

0: हमारी दूसरी, या ये कह दूं कि पहली ही जिम्मेदारी एक और भी है, वो ये है कि हम जो भंडारण कर रहे हैं उसके साथ में हम जो खाना बना रहे हैं ना, वो इतना ही बनाएं कि वो हमारा परिवार उस समय में खा ले,
1: बिल्कुल,
0: बचे नहीं, बर्बाद ना हो।
1: बर्बादी नहीं हो ना, खाने की बर्बादी नहीं हो, बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी इससे रक्षा हो। और कहते हैं ना, ये बचत करना या लिमिट खाना बनाना, जितनी ज़रूरत है उतना बनाना, तो ये एक अच्छी आदत है जो हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ में हमारी दादी नानी के नुस्खों की अगर बात करें ना, तो
1: हाँ
0: हम तेल और नमक के फॉर्मूले को तो भूल ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल
0: तो ये लंबे समय तक चीज़ों को प्रिजर्व करने का, जैसे कि हम लोग अचार जो डालते हैं ना बसंत, अचार में तेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये सभी जानती हैं।
1: बिल्कुल
0: जब तक
1: बिल्कुल
0: अचार तेल में डूबा हुआ रहेगा, तब
1: खराब
0: तक
1: नहीं
0: वो खराब नहीं
1: होता।
0: होगा। इसी तरह से सिरका है, नमक है, ये हमारे किचन के बिल्कुल मजबूत सिपाही बन करके खड़े होते हैं। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट आप बना रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए। देखिए, आपका जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, वो कभी भी खराब नहीं होगा। इसी तरह से जो भी चीजें आप ला रहे हो, मिर्च, जैसे आपने कहा कि हरी सब्जियां हैं, उनको भी फ्रिज में रखने से पहले उनको अच्छी तरह से धो
1: धो
0: करके
1: के
0: सुखाना
1: सुखा
0: है,
1: के और
0: तो
1: फिर,
0: उसके डंठल भी तोड़ देना, तब भी वो
1: हाँ
0: खराब
1: सही
0: नहीं
1: है,
0: होंगे।
1: मिर्ची के लिए तो ये बहुत जरूरी है ना। तो जहाँ स्वच्छता और सावधानी का हो सम्मान, वहीं बसता है खुशहाल और निरोगी जहान। तो अभी
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ,
1: समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: सखियों, रसोई में जब मसालों की महक बिखर जाती है तो सादा सी रोटी भी दावत नजर आती है। जिंदगी में जैसे रिश्तों की मिठास जरूरी है, वैसे ही हमारे भोजन में शुद्ध मसालों की जो है महक बहुत जरूरी है। सखियों, मसाले हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं, लेकिन यदि इनमें मिलावट हो तो सही मसाले भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम स्वाद के साथ साथ इनकी शुद्धता पर भी ध्यान दें।
6: बिल्कुल बसंत, भोजन तभी पौष्टिक बनता है जब उसमें इस्तेमाल होने वाली जो सामग्री है ना वो गुणवत्तापूर्ण हो और सुरक्षित हो। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि भाई मसाले जो हम खरीद रहे हैं वो सही हैं या नहीं, उनमें कोई मिलावट है या नहीं? तो इसकी पहचान हम घरेलू स्तर पे भी कर सकते हैं। वैसे तो हमें देखने से पता नहीं चलता, लेकिन हम घर पर ला करके या उसका सैंपल टेस्ट करके हम वहीं पे पता लगा सकते हैं। जैसे आप हल्दी को ही ले लीजिए, हमें हल्दी की शुद्धता की पहचान करनी है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो एक कांच के ट्रांसपेरेंट ग्लास को लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए और उसमें हल्दी पाउडर को डालिए और मिलाइए। अगर उसका रंग तुरंत से पीला हो जाएगा, यानी उसमें जो है केमिकल या रंग मिलाया गया है, और धीरे धीरे अगर उस वो हल्दी अपनी पिलास अगर छोड़ रही है तो वो शुद्ध हल्दी है।
5: ऐसे ही बात करें लाल मिर्च पाउडर की, तो पानी में डालने पर यदि रंग उसका तुरंत फैलने लग जाए तो समझो उसमें कृत्रिम रंग मिला हुआ है। ऐसे ही धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर जो ओरिजिनल होता है उस वो हल्का भूरा होता है, हल्का हरा और भूरा होता है, और अगर पानी में डालेंगे तो वो धनिया धीरे धीरे करके तली में बैठ जाएगा नीचे, है ना। यदि अगर वो पानी पर तैरता रहे और मतलब उसका कलर गहरा हरा हो तो समझो कि उसमें मिलावट है।
6: बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम बात करें जीरे की, तो जीरा जो है आयरन का अच्छा स्रोत है, पाचन शक्ति को

0: भी बढ़ाता है। और जीरे में मिलावट की अगर पहचान करनी है तो उसे अपनी हथेली पर लीजिए और उसको रगड़िए, उसमें से एकदम से जो है विशिष्ट खुशबू आने लगेगी, तो वो शुद्ध जीरा है, उसकी पहचान हो जाएगी। इसी तरह से हम अजवाइन की भी पहचान कर सकते हैं। और राई की पहचान करने के लिए भी हम ये देखें कि उसको ग्लास में पानी में डालेंगे और वो अगर तुरंत तली में नीचे की तरफ बैठ जाती है तो वो जो है वो राई जो है वो शुद्ध जो होगी वो बिल्कुल नीचे तली में बैठ जाएगी, और
1: बिल्कुल
0: जिसमें मिलावट होगी वो नहीं बैठेगी।
1: सही सही है। अब काली मिर्च में अक्सर क्या करते हैं लोग, पपीते के बीजों को मिला लेते हैं, तो काली मिर्च की पहचान करने के लिए भी यही है कि आप उसको पानी में डालिए, अगर वो तली में बैठ जाती है तो शुद्ध है, और अगर ऊपर तैरती है तो समझो उसमें
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: मिलावट है
0: तो
1: उसमें।
0: इस तरह से मसाले और जड़ी बूटियां जो है वो हमारी भोजन को स्वादिष्ट तो बनाते ही हैं, साथ साथ स्वास्थ्य का लाभ भी ये हमें प्रदान करते हैं। तो हमें हमेशा शुद्ध मसालों और जो जो भी चीज़ें हम किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये देख करके लेना है कि वो शुद्ध हैं या नहीं, और उसकी पहचान हम अपने स्तर पर भी कर सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: यानी अपनी स्तर से उनको देख परख कर फिर ही हमें उन मसालों को अपने
0: खरीदना चाहिए,
1: खरीदना चाहिए और उपयोग में लाना चाहिए।
0: बिल्कुल।

0: सखियो, आज हमने रसोई की सफाई से लेकर किचन गार्डन, मसालों की जांच और सस्टेनेबल कुकिंग का सारा सफर तय किया है, लेकिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हमारी ये चर्चा तब तक अधूरी है जब तक कि हम एक नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों और कर्तव्यों को न पहचान लें।
1: बिल्कुल, हम अक्सर मिलावट का रोना रोते हैं, दुकानदारों को कोसते हैं, लेकिन खुद चुप हो जाते हैं। याद रखिए, अगर हमारी चुप्पी ही हमारी मिलावट करने वाली हमारे जो सामानों में जो मिलावट करने वालों का सबसे बड़ा हौसला होती है।
0: बिल्कुल, चुप रहने से कोई बदलाव नहीं आता दोस्तों। हक के लिए अपने अब आवाज़ उठानी होगी। जो खेल रहे हैं चंद रुपयों के लिए हमारे अपनों की जान से, उनकी हर एक साजिश अब हमें नाकाम बनानी होगी।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पे हम अपने इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हम लोग विशेष रूप से ख्याल रखें तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, मिलावटी चीज़ों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा बिल मांगना हमारा सबसे पहला हक है।
0: बिल्कुल,
1: यानी जब भी आप राशन, दूध या मसाले खरीदें, दुकानदार से पक्का बिल ज़रूर लें। और यह बिल जो है वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल ये मिलावट पर पाए जाने, अगर किसी चीज़ में, आपके द्वारा खरीदी गई चीज़ में अगर कोई मिलावट है, तो आपके पास ये पक्का सबूत रहेगा कि आपने उस दुकानदार से ये चीज खरीदी थी।
0: बिल्कुल। इसके साथ ही पैकेट बंद सामान खरीदते समय उस पर FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का लोगो और लाइसेंस नंबर भी जरूर चेक करना चाहिए। अगर सामान पर ये नहीं है तो समझ लीजिए कि वह आपकी सेहत के लिए सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है।
1: बिल्कुल, इसी तरह से फूड सेफ्टी कनेक्ट पर आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं। किसी दुकान या प्रोडक्ट में, दुकान से मिले सामान में या प्रोडक्ट में मिलावट का शक है तो डरिए मत। सरकार ने मिलावट के खिलाफ फूड सेफ्टी कनेक्ट पोर्टल और टोल फ्री नंबर जारी किए हैं जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और आपकी जो शिकायत है वो गुप्त रहेगी और पूरे शहर को जहर खाने से बचा सकती है।
0: बिल्कुल। तो मेरी प्यारी सखियों, आज इस खाद्य सुरक्षा दिवस पर चलिए हम सब मिलकर एक फौजी की तरह अपनी रसोई और अपने समाज की सुरक्षा की शपथ लेते हैं। हम खुद भी जागरूक बनेंगे और दूसरों को भी जगाएंगे।
1: बिल्कुल, दुकानदार की चालाकी को अब हमें पहचानना होगा, और सेहत की असली दौलत है इसके बारे में हम सारे नागरिकों को मानना पड़ेगा। तो आज की हमारी मुलाकात अब यहीं पे ख़त्म होती है, और इसके साथ ही हम चलते चलते आपको नारी वाटिका की टीम से रूबरू कराते हैं। HPT ट्रांसमिशन से हमारे सहयोगी रहे विक्रम सिंह भाटी और प्रेम किशोर सेन,
0: कंट्रोल रूम से हमारा सहयोग किया दिलीप सिंह परमार ने,
1: और कंसोल से आपको खूबसूरत नगमे सुनवाए नवनीत अहलावत ने। अब दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी समीना
0: और बसंत कंवर को।
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारीवाटी का। अब समय है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की जानकारी प्राप्त करने का। प्रस्तुत है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित।

0: aquí. और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक चार साल के अंतराल के बाद हो रही है और यह मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत

0: महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसायटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रूपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और

0: सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले दो तीन दिनों में देशभर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले दो से तीन दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में छठे ओवर में एक विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों में देशभर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों के उपरांत एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की शुरुआत में आप सुन रहे हैं फिल्म कोयला, फिल्म से ये गाना, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजें, इंदीवर के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म आजा नचले का ये गीत, पीयूष मिश्रा के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म साथिया का ये गीत, साधना सरगम, मुर्तजा और कादिर की आवाज़ें, गुलजार के बोल, ए आर रहमान का संगीत। अभी आप सुन रहे हैं फिल्म कल हो ना हो से ये गाना, सोनू निगम की आवाज़, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान।

फिल्म संगीत के आखिर में आप सुन रहे हैं फिल्म वीर ज़ारा से ये गाना, उदित नारायण की आवाज़, जावेद अख्तर के बोल और मदन मोहन का संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इसी के साथ आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर दोपहर की यह सभा यहीं संपन्न होती है। आपने यह प्रसारण मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर सुना। हम पुनः साय 5 बजे अपने आगामी प्रसारण के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मेरे वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। श्रोता, इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। आइए दूसरी सभा का आगाज करें युवा दोस्तों के अपने कार्यक्रम युवा वाणी के साथ।

0: ठीक शाम 5 बज चुकी है और लेकर आ चुके हैं हम आप ही का कार्यक्रम व्यू वाणी। जी हाँ, और ये जो प्यारी सी शाम है और ये मौसम की जो अटखेलियाँ चल रही है कुछ दिन से, ऐसा लग रहा है कभी ठंडी हवा आ रही है, कभी एकदम गर्मी हो रही है। भाई साहब, इसका ना मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज है संडे, हम में से हर इंसान का सबसे ज़्यादा फेवरेट दिन, क्योंकि इस दिन लगता है कि यार चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा। पर जैसे जैसे शाम पास आती है, लगता रहता है अभी तो आया था और ये संडे फिर से चला गया। कोई नहीं, अभी तो शाम आई है, इसको और रंगीन बनाएंगे, अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। और आज का टॉपिक भी ऐसा है जो तो हम बोल सकते हैं कि आज चाय पे चर्चा होने वाली है, इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। हाल फिलहाल आपके साथ जुड़ी है दो प्यारी आवाजें, मेरा नाम है रिद्धि।
1: जी हाँ, मैं हूँ लोगों आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त नितेश। और बिल्कुल रिद्धि, इतवार का दिन है और इस दिन लोग है ना वो ढेर सारी बातें करते हैं कि भाई यार वीकेंड पे जो भी जो अधूरे काम थे उस सबको पूरा करना है, पूरा करना है। जो लिस्ट है वो लंबी होती जाती है होती जाती है, और इतवार आते आते ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो रह गया है। और वो रह गया किस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कस होता है, वो होती है भाई शाम की चाय पे ज़्यादा यही चीज़ें डिस्कस होती है। चलो इस बार जो काम नहीं हुआ वो नेक्स्ट वीकेंड पे लेके चलते हैं।
0: और संडे होता भी ऐसा दोस्तों, बस हमें खुश करने के लिए आता है। मुझे ऐसा लगता है जिसने भी संडे बनाया उसे एक और संडे बनाना चाहिए था, संडे 1 और संडे 2, ताकि लोग एक संडे पे अपना काम करें और दूसरे संडे को थोड़ा तो एंजॉय करें। भाई अब तो देखते, सैटरडे को भी ऑफिस में छुट्टी नहीं होती, पर कोई नहीं, यही वैल्यू सिखाता है कि जो कुछ मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, उसकी वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से ट्रैक के साथ, और किस बात पर आज हम बातें करने वाले हैं आपसे वो आपको बताएंगे और नंबर भी बताएंगे। हाल फिलहाल एंजॉय कीजिए ये वाला ट्रैक।
1: तो

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कमर्शियल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी जो संडे स्पेशल आप इंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन FM 102.1 मीडियम वेव 531 रिद्धि और नितेश के साथ। और रिद्धि, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ रिश्ते दिल के करीब इतने होते हैं और कुछ तो कप के करीब होते। किसी की सुबह है ना जो चाय के बिना अधूरी है, तो किसी की रात कॉफी के बिना अधूरी है।
4: ये तो होता है नितेश। और जहाँ तक हम जानते हैं कि अभी जैसे शाम का वक्त हो रहा है, तो बहुत से लोग जो हमें सुन रहे होंगे उनके हाथ में पक्का चाय के एक कप ज़रूर होगा या कॉफ़ी होगी, या फिर अभी ऐसा मूड बन रहा होगा कि हाँ रसोई में कोई तो जाए और चाय बना के लाए। तो हम ये देखते हैं कि हमारे भारत में चाय की भूमिका है वो बहुत बड़ी है। मतलब ये सोच के भी लगता है कि पहली बार जहाँ पर चाय बनी होगी, पहली बार चाय की खुशबू कहीं उठी होगी, तो वो कैसा लगा होगा। तो आज भी हम देखते हैं कि घरों में जब चाय बनती है उसमें अगर थोड़ा सा भी अदरक कम रह जाए, इलायची ना डले, तो जो रोज चाय पीते ना उनको लगता रहे यार कि आज तो कुछ तो चाय में रह गया है। तो ये तो भाई कंफर्म है कि चाय की जो वैल्यू है हमारे भारत में वो बहुत ज्यादा है। और हमारे शहर जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे तो हर बात पर चाय आ जाती है। कुछ अच्छा हुआ तो चाय ले आओ, कुछ खराब हो रहा है तो चाय ले आओ, कोई टेंशन है तो चाय ले आओ, या फिर कोई डिसीजन लेना है तब भी चाय ले आओ। और अगर हम देखें तो आज की जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो कॉफी का भी कॉम्पिटिशन है वो बहुत भारी हो गया है। यंगस्टर्स जो है वो कॉफी की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं, पर जो चाय लवर्स है उनका कोई कंपटीशन नहीं है। तो जी हाँ श्रोताओं, आज जो हमारे बात करने का टॉपिक है वो चाय है, और हम आज चाय पे चर्चा करने वाले हैं कि चाय की भूमिका आपके जीवन में क्या है, कितनी वैल्यू रखती है, और अगर चाय नहीं होती तो आपका लाइफ कैसा होता। और ये जो कंपटीशन है चाय कॉफी में, आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ बेटर है, ये आप हमें ज़रूर से बता सकते हैं। हमारा नंबर है 0291255300, दूसरा नंबर है 2554300, और हिंदी में बताएं तो हमारा नंबर है 2553300 और दूसरा नंबर है 2554300। तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, हमें कॉल लगाइए और अपनी चाय को इन्जॉय करते करते हमसे भी बातें कीजिए। तब तक आप इन्जॉय कीजिए ये प्यारे से गाने।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारे आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी सर, नमस्ते।
1: मैडम, नमस्कार। मैं किरामुद्दीन बोल रहा था।
0: जी, आपने आज का विषय सुना होगा सर।
1: जी, चाय के लिए सुना है
0: बताइए
1: मैडम।

0: रात की जब चाय सुबह सुबह बिस्तरों में मिलती थी ना, वो वक्त मुझे अभी भी याद आता है। अभी मिसेज के हाथ की पीनी पड़ती है, पहले मम्मी के हाथ पीते थे, ये याद आ गया। तो मैंने कहा कि आपने जो पॉइंट पकड़ा है ना, वो बहुत अच्छा पकड़ा है कि ये वक्त जो है वो चाय का ही है। अभी काम पे भी जाते हैं ना तो चीर कर तक जाके चाय पीने पड़ती है मैडम।
1: हाँ, वो तो
0: चाय के बिना
1: इम्पोर्टेंट
0: खुद ही चाय जी
1: इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है हमारे जीवन का चाय।
0: जी जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट हिस्सा ही है मैडम। नींद में से उठेंगे चाय नहीं मिली तो समझ लो सुबह नहीं हुई अभी तक,
1: हाँ,
0: ऐसा
1: जोधपुर में
0: रहता
1: तो
0: है।
1: जोधपुर में दो चीज़ें चलती है, किला दिखना चाहिए और एक चाय मिलनी चाहिए।
0: जी जी
1: जी सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका
0: थैंक
1: बहुत
0: यू
1: बहुत शुक्रिया सर।

0: तो दोस्तों, आज जो ये विषय है चाय का, तो ऐसा लगता है कि ये आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि सभी लोग इस पे अपनी अपनी राय देना चाहते हैं. और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी लाइन पर आ चुके हैं. हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्ते सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं अब्दुल हकीम बोल रहा हूँ, चैनपुरा फलोदी से।
0: अब्दुल जी, तो आपने जैसा आज का विषय सुना होगा, चाय का जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में.
1: हाँ जी, चाय का मामला ऐसा है कि हर चीज मिल जाए, जो
0: जी
1: कुछ भी है उसके उसके बगैर रह सकते हैं, लेकिन चाय के बगैर नहीं रह सकते।
0: ये तो
1: जैसे कि
0: है.
1: हमारे यहाँ मेहमान आते हैं ना, तो फिर उसको पहले चाय की मेहमानी की जाती है,
0: जी
1: और अगर जो चाय की मेहमानी ना करें और खाना खिला दें, घी में रोटियां चूर करके खिला दें, हलवा खिला दें, कुछ भी खिला दें, और चाय की मनोहार नहीं करेंगे ना, तो फिर बाद में वहां बाहर निकलने के बाद क्या कहेंगे कि चाय पानी कुछ नहीं है।
0: खाना खाना खा लिया फिर भी चाय पानी नहीं हुई.
1: हाँ, चाय पानी नहीं पिलाया और चाय नहीं पिलाया और खाना खिला दिया खूब तरह से, लेकिन फिर भी कहते हैं कि चाय पानी कुछ नहीं है।
0: ये
1: और
0: तो
1: खाली
0: है
1: पानी
0: सर.
1: पिला दो और चाय पिला दो और कुछ भी मत खिलाओ, कि वहां पे ठाट है, चाय पानी खूब है, ऐसा मामला है चाय का हमारे यहाँ भारत में।
0: यहाँ पर भी सर ऐसा ही है. जो चाय का वैल्यू है सोसाइटी में बहुत ज्यादा है,
1: हाँ जी,
0: उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. तो सर, आपने हमें कॉल किया और हमसे कनेक्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो श्रोताओं, मेरे को लग रहा है ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जो लाइंस हैं हमारे कॉल की वो बढ़ती जा रही है. हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ आ चुके हैं. हेलो
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? पुखराज
1: मेरा नाम पुखराज है मैडम।
0: जी. तो आज चाय पे बात हो रही है,
1: हाँ मैडम,
0: बताइए सर, आपको कैसी लगती है चाय?
1: हाँ, चाय बहुत बढ़िया लगती है मैडम। सुबह उठते ही चाय नहीं हो तो फिर पूरा दिन ही चाय के बगैर, तो
0: ऐसा लगता है कि
1: चाय
0: जैसे सांस इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, तो बहुत से
1: हाँ
0: लोगों के
1: चाय
0: जीवन
1: जीवन
0: में
1: का एक
0: चाय भी
1: अच्छा
0: वैसी है.
1: पार्ट्स बन गया।
0: और अब तो चाय के भी इतने सारे अलग अलग वेराइटीज आ गई. बहुत लोग ग्रीन टी पीते हैं,
1: हाँ,
0: बहुत
1: वो
0: लोग
1: ग्रीन
0: ब्लैक
1: टी
0: टी
1: है,
0: पीते
1: लेमन
0: हैं.
1: टी है, नींबू टी है, वो इस तरह से चाय की अलग अलग वैरायटी आ गई है,
0: पर ओरिजिनल चाय की
1: जैसे
0: बात अलग है.
1: कि
0: ऐसा
1: क्या मैडम।
0: एकदम जो शुद्ध चाय होती है, दूध वाली चाय, उसका अलग मजा है.
1: हाँ, वो गांव वाली, पहले वाली
0: गांव वाली
1: जो
0: चाय.
1: थे,
0: जी सर,
1: जो
0: हमसे
1: कि
0: जुड़ने के लिए
1: आपको
0: आपका
1: आज
0: बहुत बहुत
1: 20 साल।
0: शुक्रिया. तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात कर रहे हैं चाय कॉफ़ी पे. और जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी का भी जो एक खुमार है वो बहुत अलग होता है. कॉफ़ी पीते पीते कब उसकी आदत लग जाती है, कब वो भी चाय की जितनी प्यारी हो जाती है, हमें इसका पता नहीं पड़ता. तो जो लोग कॉफ़ी का भी फेवर रखते हैं, वो भी ज़रूर हमें कॉल करके बता सकते हैं, क्योंकि आज जो कॉम्पिटिशन है वो चाय और कॉफ़ी दोनों का है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है. तो आप भी अपने फ़ोन उठाइए और अपना व्यू बताइए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है. और की वेराइटीज के बारे में भी बात कर सकते हैं कि जो ग्रीन टी है, अगर हम उसको देखें तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है. अगर हम रोज कंज्यूम करें तो उसकी आपको आदत भी हो जाए, तो आपके शरीर को बहुत फायदा करती है. हम भी इस विषय पे और बात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं हमारे गाने.

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो दोस्तों आज जहाँ पर चाय की बात हो रही है, तो अभी मैं और नितेश बात कर रहे थे, तो ये बात रियलाइज़ हुई कि आज के ज़माने में हम देखते हैं कि इतने तरह के ब्रेकफास्ट आ गए हैं, जो दिन के शुरुआत करने के तरीके हैं वो बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई है, बहुत हेल्दी ऑप्शंस आ गए, बहुत फैंसी ऑप्शंस भी आ गए। पर जब हम छोटे थे तब ऐसा लगता था कि स्कूल कॉलेज जाना है, तब ये होता था कि जो सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है वो होता है चाय टोस्ट, उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता था। और आज भी अगर कोई चाय टोस्ट ला के देते, चाय बिस्किट ला के देते, तो ऐसा लगता है कि यार इससे ज़्यादा कंफर्टिंग फूड क्या हो सकता है। मतलब उसको कंज्यूम करती है ऐसा लगता है कि बस अब शांति मिली है। और दूसरी चीज़ ये है कि चाय के जो बेनिफिट्स है, अगर हम देखें अदरक तुलसी की चाय हो गई, उसमें काली मिर्च डली हुई है, तो वो अपनी हेल्थ को भी फ़ायदा करती है। कभी जुकाम है, बुखार है, तो उसमें आप चाय कंज्यूम कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होता है। फिर मेरे को ये चीज़ भी पता पड़ी कि अगर आपके पेट में कोई गड़बड़ है और अगर आप चाय और घी का कॉम्बिनेशन पीते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। सुनने में बड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन है चाय और घी, पर अगर आपने कंज्यूम किया है और अगर आपने इसके बारे में सुना है, तो आप जानते होंगे कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। ये रेगुलरली नहीं पी सकते, पर हाँ एज अ मेडिसिन आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपके पेट में कोई भी दिक्कत है तो वो ठीक हो जाती है। तो भाई चाय तो एक मैजिकल ड्रिंक कहना इसको गलत नहीं होगा, कि ये बहुत सी चीज़ें सॉल्व कर देती है, चाहे वो आपके बॉडी में हो, चाहे आपके रिश्तों में हो, चाहे आपके दिमाग में हो, एक चाय और परफेक्टली सब कुछ ठीक हो जाता है।
4: बिल्कुल सही कर रिद्धि। और बचपन में हम अक्सर सुनते थे बड़ों से कि भाई अगर बुखार आ रहा है, जुकाम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो भाई गर्म गर्म चाय पी ले भाई, अब तेरा जो भी हेडेक वगैरह है वो सारी चीज़ें कम हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि रिद्धि, कि जो चाय है ना, वो घर में सिर्फ एक जने के हाथ की अच्छी लगती है। वो चाय सुबह बनानी हो, शाम को बनानी हो, या रात को बनानी हो, पीनी तो भाई मेरे को तो उसी के हाथ की है।
3: ये तो होता ही है। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी लाइन पर आ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो हेलो हेलो
4: हेलो
5: हेलो
4: हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवाणी में।
5: हेलो
4: हेलो
5: हाँ नमस्कार
4: नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है संडे स्पेशल युवाणी। फोन इन पे बात चल रही है हमारी, और जो आज का जो टॉपिक है वो है चाय।
5: हाँ वो, हाँ जी सर, वो चाय के बारे में है
4: जी।
5: चाय तो क्या है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि चाय माता सरस्वती और पिए जो लखपति
4: जी।
5: हाँ चाय तो बचपन में खूब पी है सर।
4: और कभी आपने अपने हाथों से बना के किसी को पिलाई है?
5: हाँ सर पिलाई है सर।
4: क्या बात है।
3: चाय का कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें?
5: हाँ मैडम,
3: चाय के ऐसी कोई कभी कोई किस्सा रहा है आपके जीवन में, कोई कहानी जुड़ी रही है चाय से?
5: हाँ मैडम, ऐसा है कि मैं जब छोटे थे उस समय माता जी हमारे लिए चाय बना के उसमें रोटी चूर के खिलाती थी पहले।
3: ये वाला कॉम्बिनेशन तो हमने भी ट्राई किया और इसकी तो कोई बात ही नहीं है, इसका कोई टक्कर ही नहीं है।
4: और ये सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है,
3: माँ के हाथ की चाय और रोटी।
5: ठीक है, माँ की तो चाय याद आती है मैडम।
3: ये तो बात है।
5: ठीक है मैडम,
3: ओके सर, थैंक यू।
5: थैंक यू, ओके।
4: मतलब रिद्धि हम सबसे बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है चाय के साथ है ना एक इमोशन है ना जो सबका जुड़ा हुआ है।
3: ये तो है, और ये कहना गलत भी नहीं है कि इमोशन जब खाने से जुड़ जाता है ना, तो वो शायद आपकी रूह तक उतरता है, वो सिर्फ आपके शरीर तक नहीं, वो आपकी आत्मा तक जाता है। तो इसी के साथ शायद हमारे अगले कॉलर भी लाइन पर आ चुके हैं। हेलो

0: हेलो, हो सकता है वो भी अपनी चाय छानने गए हो। और ये होता है, बहुत बार होता है कि जब हम कोई चीज़ परफेक्शन से करना, अरे नितेश ऐसा भी होता है ना कि कई बार हम चाय बनाते हैं और ये बहुत बार होता है कि जब आप उस चाय को देखते रहोगे तो वो गिरेगी नहीं, और आप जैसे ही किचन से बाहर जाओगे, जैसे ही आपका ध्यान हटेगा तो आपका पूरा किचन का प्लेटफॉर्म चाय पी लेता है।
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही
0: जो
1: कहा।
0: एक्सपीरियंस होता है जब आपकी बहुत अच्छी बेहतरीन चाय बनी हो और जब वो उतरती है उस प्याले से और जब वो गिर जाती है, तो भाई ये तो बहुत कॉमन चीज़ है जो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होती है। और आपका कोई चाय से ऐसा जुड़ा एक्सपीरियंस?
1: चाय बस ये है कि जब भी मैं है ना, हमेशा गाना सुनते हुए किचन में सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। और अक्सर क्या होता है कि जब भी मैं गानों में खो जाता हूँ तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हो ही जाती है। और चलो, इस बीच हमारे जो आज के जो अगले कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं प्रोग्राम युववाणी में। हेलो
2: हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार
2: नमस्कार सर। जोधपुर से विनय बोल रहा हूँ सर। सर
1: जी। विनय, क्या करते विनय आप?
2: मेरी शॉप है सर।
1: अच्छा, तो शॉप है, तो शॉप पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ आती है ना वो चाय है। तो चलिए,
2: अरे
1: चाय पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसी टॉपिक पे बात आगे बढ़ाते हैं। कोई ऐसा किस्सा जो चाय से जुड़ा हो वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं।
2: सर, एक किस्सा है सर। मेरा एक दोस्त है सर, मेरे को सर 4 बजे सर रोज चाय पीने आता था सर।
0: अच्छा
2: पिछले सर साल बस सर वो आ नहीं रहा है, तो मैं सर उसके एफएम के जरिए उसको कहना चाहता हूँ कि तेरा यार तेरी चाय पे बाढ़ धो रहा है।
0: अरे क्या बात है, ये तो सबसे अच्छी जगह है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त भी ये चीज़ सुन रहे हो, और पक्का से ये मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए कि भाई ये वाली चर्चाएं नहीं रुकनी चाहिए, चाय कभी नहीं रुकनी चाहिए। और अगर कुछ बात भी हो गई जो उनको लाने से रोक रही है, तो वो एक बार फिर से
2: हाँ
0: आके चाय पे सुलझ जाए।
1: और विनय, मैं जानना चाहूँगा आपके दोस्त का नाम क्या है।
2: सर जयराम नाम है सर।
1: जी, तो चलिए जयराम जी, अगर आप भी हमारी और विनय की बात सुन रहे हैं तो ज़रूर उनकी शॉप पे जाइए या फिर उस जगह जाइए जहाँ अक्सर आप बैठ के चाय पीते थे, एंजॉय करते थे, और जो दोस्ती के किस्से हैं वो एक दूसरे को सुनाते थे। तो रेडियो यही माध्यम है कि भाई जो दो लोग बिछड़े हुए होते हैं उनको मिलाते हैं और ऐसे गाने प्ले करते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनकी कहानी है वो उससे लिंक कर पाए और एक दूसरे को समझ पाए।
0: और मुझे ऐसा लगता है विनय जी कि जो चाय है उस पे अगर कोई दिक्कत भी होती है ना, तो एक प्याला चाय अगर शेयर भी हो जाए तो
2: वही
0: सब
2: सर,
0: कुछ ठीक हो जाता
2: मिल
0: है।
2: जाती है शक्कर की तरह।
0: जी, तो हमारी यही आशा है कि जयराम जी अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने मित्र की दुकान पर जाइए और एक चाय तो बनती है इस शो के बाद।
2: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू सो मच। तो नितेश, आज जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपने जैसा कहा कि चाय एक इमोशन है, तो ये काफ़ी सच है। अगर आपकी आदत पड़ जाए कि आप किसी इंसान के साथ रोज़ चाय पीते हो, तो भाई वो तो एक सांस लेने वाली प्रोसेस के जैसा होता है कि इसके बिना तो बड़ा अजीब सा लग रहा है।
1: बिल्कुल, और आज का टॉपिक भी ऐसा है कि भाई एक के बाद एक जो हमारे लिसनर है वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस पे हमारे साथ चर्चा पे चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि चाय चीज़ ही ऐसी है, मतलब जब भी एक कप चाय हाथ में आ जाता है तो लोग अक्सर बैठ के बातें करते हैं।
0: तो इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी आ चुके हैं। हेलो,
3: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग सर, क्या नाम है आपका?
3: दिनेश सोडा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिनेश जी, बताइए चाय का महत्व बताइए आपके जीवन में।
3: मैडम चाय के बिना तो जिंदगी अधूरी लगती है। ऐसा लगता है एक सुबह उठो तो चाय, एक सुबह वाली और एक 4 बजे वाली चाय तो होनी चाहिए, कंपलसरी है ना।
0: और मैंने ये
3: लोग
0: भी
3: आजकल
0: चीज़
3: हॉट कॉफी कोल्ड कॉफी पीते हैं, लेकिन चाय में जो मजा है वो कॉफी में नहीं आता मैम,
0: ये तो है,
3: ना जाने क्यों, है
0: जो लोग चाय
3: ना।
0: के प्रति है वो कॉफी से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं ले पाते।
3: जी, वो सर्टिफाइड होते ही नहीं कि कॉफी चाहे हॉट कॉफी हो चाहे कोल्ड कॉफी हो, लेकिन जो चाय में मजा ना वो उसमें नहीं। चाय के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, जैसे मैं दिल्ली गया था वो अलग ही ग्रीन टी, लेमन टी है
0: हाँ
3: ना।
0: हाँ
3: हाँ अलग अलग, मतलब चाय, एक चाय पे मेरा एक जुड़ा किस्सा है मैम। मैं जब पढ़ाई करता था स्कूल में ना, पढ़ाई करता था तब एक एक्चुअली एक लड़की थी मैम, वो हमेशा ना वो कहती थी आप मतलब सर सर के लिए और हमारे क्लास के लिए सबके लिए वो चाय बना के लाती थी। तो
0: अरे वाह,
3: जी उसको सर हमेशा उसको ही कहते सर मैम, उसके बोलते कि तू आ जाए चाय बना। तो वो बहुत ही शानदार टेस्टी चाय बनाती थी, उसकी चाय का टेस्ट आज भी मुझे याद है मैम।
0: क्या बात है, मतलब
3: जी
0: चाय
3: पूरी
0: से
3: क्लास
0: इतनी
3: में
0: यादें
3: चाय
0: जुड़ी
3: बनाती
0: होती
3: थी।
0: है, इतने किस्से जुड़े होते हैं। ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि हमारे भारत में
3: जी
0: कितनी
3: मैम,
0: छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में बस बस जाती है। तो
3: जी मैम,
0: दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
3: थैंक यू थैंक यू।
0: तो श्रोताओं, अगर आप भी अपने मन की बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 02915253300, और दूसरा नंबर है 2।

5 4 3 00, और हिंदी में बताएं तो ये है 25 53 300, और दूसरा नंबर है 25 54 300। तो आप भी हमें कॉल करके अपने इस चाय के जो इमोशन को शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी के साथ अगले कॉलर भी आ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, कोई बात नहीं, अगर आप भी बात करना चाहते हैं तो नंबर आपको बता ही दिए हैं। और शाम बड़ी प्यारी सी है, तो यही लग रहा है कि सब लोग अभी चाय पीने में व्यस्त होंगे, और संडे का दिन और चाय ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं ये वाला ट्रैक।

0: जी
1: चाय के बारे में हुआ तो मैं मतलब कई बार फोन लगाता हूँ, लेकिन आज जो चाय का टॉपिक आया तो मैं कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जी
0: और ये टॉपिक भी ऐसा है, इस पे कॉल आना ही चाहिए।
1: यस सर। और चाय आपका दिन तय करती है कि आज आपका दिन कैसा जाएगा। अगर सुबह आपने चाय बहुत अच्छे से आपको मिली है तो, और फिर हमारा जो टाइमिंग रहता है, कई बार ये लोगों का फिक्स टाइमिंग रहता है सर कि भाई मतलब मॉर्निंग के बाद में ब्रेकफास्ट, बाद में ना लंच से पहले और लंच के बाद में, तो
2: जी
1: चाय मतलब पूरे रूटीन का हिस्सा रहती है आपका।
2: मतलब एक सुबह की अच्छी चाय आपका दिन डिसाइड कर देती है।
1: यस, वो दिन डिसाइड करेगी। प्लस जो आपने अभी बताया था कि आपका दिमाग, आपके रिश्ते, आपका मन, आपकी सोच और आपका वर्किंग स्टाइल, एवरीथिंग उस चाय पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और चाय अगर सही से हो गई तो आप समझो कि पूरा दिन बहुत ही पॉजिटिव और एकदम बढ़िया एनर्जी के साथ निकलेगा।
2: ये तो है सर, ये चाय की इस बात को हम नकार नहीं सकते कि एक चाय जो खूबसूरत सी मिल जाए सुबह सुबह तो पूरा दिन बन जाता है।
1: जी मैम, और चाय भी मतलब चाय से सारी चीजें सॉल्व होती है मैम, कि आप अपना वर्किंग कर रहे हो वो भी आपका कंप्लीट। और खास तौर से जब मैं पढ़ता था, स्टूडेंट जब मैं था, तो तब तो मेरे लिए चाय एक तरह से रामबाण थी कि आप, और एक मैन ये था कि रात को मेरे मतलब रात को पढ़ने की मतलब है ना हैबिट थी मेरी, तो रात को पढ़ने के लिए आपको चाय चाहिए और चाय के बिना आपको नींद आ जाएगी। तो मैं 11 बजे अगर मेरे को एक चाय मिल जाती तो सुबह के 4 बज जाते थे। ये मतलब सबसे बड़ी चीज थी,
2: ये तो
1: और
2: ह्यूमन
1: क्योंकि
2: पेट्रोल का
1: चाय ने
2: काम
1: मेरे
2: करती है
1: कैरियर
2: चाय।
1: को बनाने में, मेरी जिंदगी बनाने में सही होती है। चाय जिंदाबाद मैडम।
2: जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आपका चाय से जो प्रेम है इसे बना रहे। तो नितेश, ये बात तो है कि हम चाय को अगर बोले कि ये ह्यूमन पेट्रोल है तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। एक अच्छी चाय मिल जाए और उसके बाद जो दिन की स्पीड भागती है, उसके बाद जो खुशी मिलती है, इसकी तो है ही कोई अलग, वो कहते हैं ना कॉम्पिटिशन ही नहीं है। पर हाँ, जो अभी यंगस्टर्स हैं उनको मैं ये बोल के भी खुश करना चाहूँगी कि खुश तो क्या, हमें खुद को कॉफ़ी बहुत पसंद है। एक स्ट्रांग कॉफ़ी मिल जाए, एक स्ट्रांग ब्लैक कॉफ़ी मिल जाए या फिर एक स्ट्रांग कोल्ड कॉफ़ी मिल जाए तो भाई ऐसा लगता है कि यार अगर शरीर में थोड़ी सी भी वीकनेस है, थोड़ी सी भी थकान लग रही है तो वो कॉफ़ी दूर कर देती है।
0: तो रिद्धि, मैं यही साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि आपको चाय पसंद है या फिर कॉफी।
2: देखो ये सवाल ऐसा है जिसका अगर मैं जवाब दूं तो मैं खुद के साथ नाइंसाफी करूंगी, क्योंकि मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों अपने अपने लेवल पे बड़ी पसंद है। जब बारिश आ रही हो, बहुत तेज़ बारिश आ रही हो और पकोड़े बने हो, तो उसके साथ कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बेकार लगता है। उस वक्त लगता है कि बहुत स्ट्रांग चाय मिलनी चाहिए, एकदम अदरक वाली, तुलसी वाली, और जो उसकी खुशबू होती है, जो अरोमा होता है चाय का, उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। और अगर आप बात कर रहे हो ऐसा दिन जो आपको पूरा थका के ख़त्म कर दिया है, मतलब आपके अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं है, उस वक्त जो कोल्ड कॉफ़ी का इफेक्ट होता है, जो आपकी शरीर को हिट करती है, फिर लगता है कि नहीं सबसे ज्यादा ताकत तो मुझ में ही है। तो यहाँ पर जो चाय कॉफी का कंपटीशन है मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही इक्वल लेवल पे विनर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये है ही मेरी लाइफ में चाय की और कॉफी की इंपॉर्टेंस। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी आ चुके हैं। हेलो,
3: हेलो।
2: नमस्ते मैम।
3: हाँ मैम, मेरा नाम प्रीति है
2: जी मैम, बताइए।
3: और चाय को लेके मुझे मेरी मम्मी की बड़ी याद आती है कि सुबह पहली चाय से लेकर के रात को 11 बजे तक बहुत सारी रहती है उनके पास।
2: चाय तो, और उसमें जो आप चाय पीते हैं सबसे ज्यादा अपने प्यारे इंसान के साथ, वो चाय और खास हो जाती है। मतलब उसमें कुछ चीज कमी भी होती है ना, तो जिसने बनाई है या जिसके साथ पी रहे हैं वो कमी वो चाय पूरी कर देती है।
3: बिल्कुल मैम, मतलब चाय है तो मम्मी है, तो
2: बड़ी
3: चाय
2: खूबसूरत
3: के नाम आते ही मम्मी की याद आने लगती है। चाहे
2: जी।
3: रात को देर रात तक पढ़ रहे तो मम्मी चाय का कप लेकर के आ जाते हैं, सुबह मम्मी चाय, दोपहर को चाय, तो बस जिससे चाय का नाम आता है मम्मी की याद आती है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा स्पेशल है लाइफ में।
2: ये तो है, और ये एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आप किसी चीज़ से अपने प्यारे इंसान को लिंक कर दिए तो फिर आप उसे कभी भूल ही नहीं सकते, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं,
3: यस मैम,
2: चाहे वो कहीं पे भी हो पर वो हमेशा आपके साथ है। वो चाहे चाय के ज़रिए हो, चाहे उस चाय की खुशबू के ज़रिए हो, आप उनको हमेशा अपने साथ रखते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं हमारे प्यारे प्यारे गाने, और चाय पे चर्चा तो कंटिन्यू रहेगी।

0: इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ साथ जो हमारे आज के जो अगले लिसनर है वो जुड़ चुके हैं, तो चलिए प्रोग्राम युवाणी में उनका सबसे पहले करते हैं स्वागत। हेलो
1: सर नमस्कार। सर
0: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम कन्हैयालाल भाटी है। सर
0: कन्हैयालाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं जोधपुर सिटी से ही बात कर रहा हूँ। सर
0: जी
1: मैं प्रोविडेंट फंड ना ऑफिस में जॉब करता हूँ,
0: जी
1: सेक्शन सुपर।

0: इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के बाद एक बार हम फिर से हमारे श्रोताओं का स्वागत करते हैं हमारे फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, जिसे आप इंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन FM 102.1 मीडियम वेव 531 पे नितेश और रिद्धि के साथ। और रिद्धि, चाय और कॉफी पे चर्चा कर रहे हैं, और एक चीज जो बार बार कॉल आ रहे हैं उससे हमें ये पता चल रही है कि जो टीम चाय है ना उनके कॉल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और जो कॉफी लवर है ना उनका अभी तक एक भी कॉल नहीं आया। और मैंने इस गाने से पहले भी रिद्धि से पूछा था आपको चाय पसंद है या फिर कॉफी, इन्होंने दोनों को वोट दिया। और मैं हूँ कॉफी लवर, तो मैं चाहता हूँ जितने भी युवा साथी सुन रहे हैं और जो कॉफी लवर है तो वो भी थोड़ी कॉफी के बारे में जो भी चर्चाएं हैं, जो भी किस्सा उनके साथ जुड़ा हुआ है एक चाय से लेके या फिर एक कॉफी से लेके या फिर एक वो मोमेंट जो वो कभी भूलना ही नहीं चाहता, तो वो ऐसे मोमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आपका फेवरेट प्रोग्राम युवाणी चल रहा है, संडे स्पेशल फोन इन प्रोग्राम, और बहुत कम मौका मिलता है आपको हम लोगों से बात करने का, तो बिल्कुल इस वक्त को आप ज़ाया ना करें और जल्दी से जल्दी अपने खूबसूरत मोबाइल फ़ोन में एक नंबर डायल करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे नंबर है 02912553300, और जो हमारे दूसरे नंबर वो है
1: वो है 2554300। और जैसा कि नितेश ने कहा कि टीम चाय का पलड़ा भारी है, इसको कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि हाँ भाई, जो चाय पे बात करते हैं उनमें वो चीज़ होती है, वो कहते हैं ना, एक्सप्रेस करने का जो क्या कह सकते हैं, जुनून होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि चाय चीज़ ही ऐसी है। और ये जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है अभी तक लाइफ में, वो ये है कि जो कॉफ़ी लवर्स होते हैं ना नितेश, वो थोड़े से सोफिस्टिकेशन और इंट्रोवर्ट से होते हैं। उन्हें लगता है कि यार मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ, कोई भी डिसीजन होता है तो वो बस अलग से बैठ जाएंगे, अपनी कॉफ़ी को अपने साथ एंजॉय करेंगे और अपने दिमाग में बस ऐसे थॉट्स और जो जितने भी स्टेटमेंट है वो अंदर ही अंदर रिपीट करते रहेंगे। तो जिन लोगों के दिमाग में कॉफ़ी का फेवरिज्म चल रहा है, और भाई कॉफ़ी भी बहुत प्यारी चीज़ है, तो आप हमें ज़रूर से बता सकते हैं,
0: और
1: नंबर बता
0: बिल्कुल
1: दिए।
0: और बिल्कुल रिद्धि सही कहा कि मतलब अगर कोई कॉफ़ी पीता हुआ कि अब हमें अगर कैफ़े में दिखेगा कोल्ड कॉफ़ी पीता हुआ तो वो एक होगा या फिर दो होगा, बट हम अगर चाय की टफरी की तरफ नज़र मारें ना तो भाई एक साथ कितने सारे लोग बैठ के चाय पीते, तो वो तो हम सबने को क्लियर भी हो गया कि भाई चाय सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद होती है। और इसी बीच इसी चर्चा पे जो हमारे अगले कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं उनसे। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका,
2: मेरा नाम अरविंद है,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं जोधपुर से बात कर रहा हूँ।
0: तो चलिए फिर चाय पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसी चर्चा को कंटिन्यू रखते हैं, और आप बताएं इस किस्से के बारे में कुछ।
2: चाय हमारी जीवन के दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है।
0: क्या बात है।
2: चाय के बिना किसी भी मारवाड़ी आदमी की सुबह नहीं होती है।
1: अरविंद, आप स्टूडेंट हैं?
2: चाय भी जो रोजाना नहीं पीते हैं उनके अलग बात है, पर जो रोजाना चाय पीते हैं, अगर 1 घंटा भी आगे पीछे हो जाए तो उन्हें उबस आने लगती है।
1: ये
2: अंत
1: चीज
2: में
1: तो
2: मैं
1: है,
2: ये कहना चाहता हूँ कि कॉफी हो या कुछ भी, चाय का मजा चाय में ही है।
1: चाय का मजा।
0: क्या
1: हाँ,
0: बात है। अरविंद आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में है?
2: मैं 9th में आया हूँ अभी।
0: क्या
1: नाइन्थ
0: बात है,
1: में
0: तभी तभी आपने है ना चाय पे निबंध लिख दिया है, चाय
1: है।
0: ऐसा होता है चाय वैसा होता है, बिल्कुल जो चाय है वो ऐसी ही होती है, सबकी अलग अलग कहानी होती है, सबका अलग अलग इमोशन होता है।
1: आपको बड़ी पसंद है चाय, ऐसा लगता पसंद है आपको चाय बहुत ज्यादा?
2: बहुत ज्यादा नहीं, पर कभी कभी थकावट होती है, पढ़ाई करते हैं, परीक्षा के समय कभी कभी पी लेते हैं।
0: तो आज की जो शाम की चाय है वो आपने किसके साथ बैठ के पी है?
2: मैं नहीं आया हूँ छुट्टियों में, तो मैंने मामा के साथ पी है।
0: क्या
1: अरे
0: बात है,
1: वाह,
0: क्या बात है,
1: ये चाय तो और स्पेशल हो गई,
0: बिल्कुल
1: ननिहाल
0: बिल्कुल।
1: की चाय।
0: छुट्टिया प्लस ननियाल प्लस चाय।
1: और शाम बस, अब थोड़ी देर से आप कुछ ना कुछ बाहर खेलिए, एंजॉय कीजिए इस
0: और
1: टाइम को।
0: हाँ, मामा को भी नहीं भूल सकते भाई, अरविंद ने कहा है मामा के साथ बैठ के चाय पी है तो उनको भी याद करना पड़ेगा। और अरविंद बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वैकेशन के टाइम में से टाइम निकाल के हमें कॉल किया, और इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।
1: तो रितेश, ये आज बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक लगा जो हमने आज चूज़ किया है। ऐसा लग रहा है कि हर तरह के इमोशन आ रहे हैं, मतलब बड़े से लेके बच्चे तक, और सब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और ये फैक्ट एक्सेप्टेड है कि भाई चाय और कॉफ़ी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और ये हमारे देश

0: की हम कह सकते हैं, अगर इसे हम सोशल ड्रिंक करें, डिक्लेयर नेशनल सोशल ड्रिंक, तो ये कहना गलत भी नहीं होगा। और जैसा आपने कहा था अभी कि हम किसी भी चाय के टपरी में जाएं, तो हम देखते हैं कि जो क्राउड है वो बहुत सारा होगा, आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो अकेले बैठ कर चाय पीते हो। वहाँ पर अनजान भी दोस्त बन जाते हैं, वहाँ पर जो चाय का दुकान ओन करते हैं वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं, उन्हें पता पड़ जाता है कि कौन बिना शक्कर की चाय पीता है, कौन शक्कर की चाय पीता है। तो ये जो चीज़ है भाई, ये दोस्ती और प्यार बढ़ाती है। और ये जो चीज़ हम देखते हैं जो कपल्स होते हैं, जो लवर्स होते हैं, तो इनमें भी एक अलग सा एडिक्शन ये होता है कि भाई चाय तो उसी के हाथ की पीनी है, और जब तक उसके हाथ की चाय नहीं मिलेगी, दिन की शुरुआत, पूरा दिन बड़ा अधूरा सा लगता है। तो हाँ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है दिमाग में हमारे भी चाय को लेके, और आप भी हमें बता सकते हैं। और नंबर हम आपको फिर से बता देते हैं, वो है 02912553300, और दूसरा नंबर है 2554300। हाल फिलहाल हमारे अगले कॉलर आए हैं, उनसे भी कर लेते हैं बातचीत। हेलो
1: हेलो,
0: जी
1: नमस्कार
0: सर।
1: मैडम। मैं अब आप सबको चाय की दावत देता हूँ, आप आए और चाय चाय पी सकते हो, पीन कर आना पड़ेगा मैडम। जब तो आपने सबको चाय की इतनी लत लगा रखी है कि सब बड़े बूढ़े बच्चे सब जने आपके पास में फोन लगाने में लगे रहे हैं मैडम।
0: अच्छा टॉपिक है ना सर, किसी चीज पे तो चर्चा होनी चाहिए।
1: जी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए मैडम। सुबह नाश्ता का भी होना चाहिए, चाय का भी होना चाहिए, और कहीं संडे को तो स्पेशल भी होना ही चाहिए मैडम।
0: बिल्कुल होना चाहिए। और जब संडे की शाम हो और
1: पूरा
0: अगर आप
1: हफ्ता
0: अपने
1: लगा
0: दोस्तों
1: रहता
0: के
1: है
0: साथ
1: ना,
0: चाय नहीं पी रहे तो क्या मतलब?
1: पूरे हफ्ते काम में लगे रहे और संडे को ही चाय पे, नाश्ता पे, होटलों में, सब जगह मजे करते रहे। बिल्कुल
0: बस ये लाइफ इम्पोर्टेंट है, ये जो एंजॉयमेंट होता है
1: बिल्कुल,
0: ना,
1: आपने
0: छोटी
1: सब
0: छोटी
1: चाय की
0: खुशियाँ।
1: दावत है मैडम
0: बिल्कुल बिल्कुल सर
1: जी, कबूल फरमाइए मैडम।
0: जी। और जैसा आपने कहा है, चाय पीने हम जरूर आएंगे, और इस बात के लिए, इस निमंत्रण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम, थैंक
0: थैंक यू
1: यू।
0: सर, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, चाय पे चर्चा नहीं रुक रही है, अभी तो हम आगे चलते हैं और गाने भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि चाय के साथ गाने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।

0: सुषमा, अभी एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें ये पता पड़ा कि हमारे भारत में रोजाना यानी हर दिन 800 मिलियन से 1 बिलियन तक की 1 बिलियन कप तक चाय हर रोज लोग पीते हैं। मतलब हमारे भारत में 1 बिलियन कप ऑफ टी रोज कंज्यूम किया जाता है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ये जो संख्या है, ये जो मात्रा है, ये सिर्फ एक दिन की है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चाय का क्रेज है हमारी कंट्री में वो कितना ज्यादा है। और सोच के ये भी लगता है कि हर जगह की चाय अलग होती है। बहुत जगह पर चाय सिर्फ दूध की बनाई जाती है, बहुत जगह पर थोड़ा पानी ज्यादा दूध कम वाली चाय होती है, बहुत जगह पर बिना शक्कर की चाय बनती है, और बहुत जगह पर चाय को कावा भी कहा जाता है, और फिर कहीं देखें तो मिंट टी भी बनती है, फिर लेमन टी भी आती है, और एकदम सोफिस्टिकेशन के अपर लेवल पर जाएं तो वहां पर ग्रीन टी भी बनती है। और जो ग्रीन टी के शौकीन लोग होते हैं, भाई उनको कैसे वो चाय भाती है वो तो वही जानते हैं, पर हाँ उसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। तो सिर्फ इमेजिन करके देखिए कि हमारे भारत में इतने स्टेट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, तो हर जगह पर चाय का एक अलग जायका होता है, अलग तरीका होता है। तंदूर में भी चाय बनती है, और उस तंदूरी चाय का जो मजा होता है, अगर आप एक बार तंदूरी चाय पी लें, अगर आप एक देसी टी लवर हैं और आपने तंदूरी चाय पी ली, तो भाई साहब फिर उसका कंपटीशन आपको नहीं मिलने वाला।
1: बिल्कुल सही कहा। और तंदूरी चाय में जो तंदूरी का जो कप होता है, वो मिट्टी की खुशबू के साथ जो चाय है ना, वो बिल्कुल ही लाजवाब लगने लगती है। और ऐसा लगता है कि भाई उस समय बारिश हो या ना हो, बट ऐसा लगता है कि भाई बारिश में उस चाय को हम इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल रिद्धि, और हमने चाय की बात कर ली है, और कॉफ़ी की भी बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर कॉफ़ी की बात करें तो एस्प्रेसो, अमेरिकानो, कैपेचिनो, लाते, मोचा, माकियाटो, और फ्लैक वाइट, कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ब्रू और फिल्टर कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के भी ढेर सारे प्रकार है, हर किसी के अलग अलग फ़ायदे हैं पीने के। तो बस आप चाय पियो या फिर कॉफ़ी पियो, दोनों ड्रिंक्स को बहुत इन्जॉय करो और हमारे साथ जुड़ते रहिए। और क्योंकि जो अब वक्त है, वो वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास, तो जितने भी युवा साथी हैं हमारे साथ इस टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि हमारे नंबर है 02912553300, और जो दूसरे नंबर है वो है 02912554300।

0: तो दोस्तों, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। और ये जो आज की शाम थी, बड़ी ही खूबसूरत थी। जो चाय कॉफ़ी पे डिस्कशन हुआ है, कॉफ़ी का तो नाम नहीं लूँगी, पर हाँ, जो चाय का आज प्यार हमारे रेडियो पे आया है, वो प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, आपके जीवन में अच्छी अच्छी चाय आती रहे, अच्छी अच्छी चर्चाएँ होती रहे, और आपका जो क्वालिटी टाइम है उसको किसी की नज़र ना लगे। और हमारी यही आशा है कि आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और अभी आपके साथ जुड़ी थी दो प्यारी आवाज़ें। मेरा नाम है रिद्धि।
1: यश तो मैं था आप लोगों के साथ, आपका रेडियो दोस्त नितेश। और हर घूंट में यादों का एक अफसाना होता है, कभी चाय से दिल तो कभी कॉफी से मुस्कुराना होता है। जिंदगी की दौड़ में बस इतना सा हुनर रखना, अपने लोगों के लिए हमेशा थोड़ा सा वक्त रखना।

0: मीडियम वेव 564.907 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोताओ, शाम के 6 बजे हैं। आइए पहले सुने हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉ. जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रूपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रूपये है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम

आइए पहले नज़र डालें हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शीर्ष कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय पर। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे रविवार स्तरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। साक्षात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8 बजे। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर रेजिमेंट केंद्र से रिले किया जाएगा। सुगम संगीत सुनेंगे आज रात 9:15 पर।

चौपाल कार्यक्रम होगा आज शाम 7 बजे और शाम 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सिमाडेरी गूंज। फिल्म संगीत सुनेंगे हमारे स्थानीय केंद्र से आज रात 8:30 पर और रात 9:30 पर। श्रोता, ये थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में जानकारी। आइए अब नजर डालें हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय पर। श्रोतो, कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस। कल आप सुनेंगे 20वां भाग। खेल जगत कार्यक्रम सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से कल रात 10 बजे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा कल दिन में 2:30 पर। कल आप सुनेंगे इस कार्यक्रम की 1301वीं कड़ी।

सुगम संगीत सुनेगा हमारे स्थानीय केंद्र से कल सुबह 10:30 पर, दिन में 12:30 पर और रात 9:15 पर। लोक संगीत सुनेगा कल सुबह 10 बजे और दिन में 12 बजे। चौपाल कार्यक्रम सुनेगा कल शाम 7 बजे और कार्यक्रम सिमाड़े री गूंज सुनेगा कल शाम 7:30 पर। युवा साथियों को अपना कार्यक्रम युववाणी होगा कल शाम 5 बजे।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनेंगे कल सुबह 7 बजे। विभिन्न विषयों की रोचक जानकारियों से भरा मनोरंजक कार्यक्रम सुनेगा नमस्कार कल सुबह 8:30 पर।

किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम कृषि जगत होगा कल दिन में 1:05 पर। कल किसान भाई सुनेंगे उन्नत तकनीक से खरीफ की फसलों की पैदावार बढ़ाएं। महिलाओं का अपना कार्यक्रम गणगौर होगा कल दिन में 1:15 पर।

संगीत सुनेंगे कल सुबह 6:45 पर, सुबह 11 बजे, रात 8 बजे, रात 9:30 पर और कल रात 10:30 पर।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताएं सुने देशगान।

जयपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोता, इस समय शाम के 6:20 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 6:30 पर सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:42 पर जिले की चिट्ठी और शाम 6:47 पर होगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: इन इत्यत्र अठ अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामस्य प्रकाशनानन्तरं संबंधित विषयाणां परीक्षणाय उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनाय च अन्तर्जालीय माध्यमेन आवेदन पत्राणां प्रेषणस्य अद्य अन्तिमा तिथिः अस्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् वेब फलकं मध्यरात्रिपर्यन्तं उद्घाटितः भविष्यति। परिषदा छात्रेभ्यः अनुरोधः कृतः यत् ते अन्तिमतिथेः पूर्वमेव स्व आवेदनपत्राणि पूरयित्वा प्रेषयेयुः। राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता मलयालम चलचित्राभिनेता सलीम कुमारः ह्यः कोच्चीनगरे दिवंगतः। तस्य एकस्मिन् निजी चिकित्सालये उपचारः प्रचलति स्म। सः 57 वर्षीयः आसीत्। श्रीकुमारः गतरात्रौ प्रायः पादोन एकादशवादने दिवंगतः। प्रारम्भे दूरदर्शन हास्य कार्यक्रमेण अवधानं प्राप्तः श्री सलीम कुमारः 96.1 शततमे वर्षे सिद्दीकी शमीर इत्यनेन निर्दिष्टं ईष्टमानु नूरुवट्टम् इति चलचित्रस्य माध्यमेन चलचित्र जगति प्रविष्टवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अभिनेतुः सलीम कुमारस्य निधने दुःखं प्रकटितम्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन दक्षिण पश्चिम प्रावृट कालस्य आगमनेन अग्रिमे द्वित्रिषु दिनेषु सम्पूर्णे देशे तीव्रवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। उत्तर मध्य भारतस्य केषुचित् भागेषु उष्णतरंगस्य स्थितिः अपि अनुवर्तते। एतदतिरिच्य आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पश्चिम राजस्थान तटीय आंध्र प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिः भविष्यति इति ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितम्। उत्तर पश्चिम भारते मध्य भारते च आगामिषु त्रिषु दिनेषु अधिकतमं तापमानं 2-6 डिग्री सेल्सियस पर्यन्तं भवितुं शक्नोति। तेलुगुदेशम पार्टीति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षेण एन चन्द्रबाबू नायडूवर्येण आगामी जून मासस्य 18 दिनांके राज्यसभा निर्वाचनाय स्वकीयस्य दलस्य 3 प्रत्याशिनः घोषिताः। तेषु उद्योगपतिः सना सतीशः, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्णः तथा टीडीपी सामाजिक माध्यम प्रकोष्ठस्य प्रमुखः चिंतकयाला विजयः च सन्ति। अमेरिका ईरान देशयो मध्ये संघर्षस्य शतदिनानि जातानि। फरवरी मासस्य अन्ते ईरान देशे अमेरिका इजराइल देशाभ्यां कृतैः आक्रमणैः आरब्धः अयं संघर्षः अधुना विस्तृत क्षेत्रीय संकटे परिणतः जातः। अस्मात् संघर्षात् होर्मुज्जल सन्धि मध्ये सुरक्षित समुद्रयान परिवहनाय संकटम् उत्पन्नम्। अधुना लेबनान देशे पुनः संघर्षयुता स्थिति उत्पन्ना जाता। केन्द्रीय युव कार्याणां क्रीडा मन्त्री डॉ मनसुख मांडविया अद्य प्रातःकाले नवदिल्ली नगरे आयोजितस्य फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति अभियानस्य 77वें संस्करणे सहभागित्वं कृतवान्। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् असौ अवदत् यत् साइकिल इति द्विचक्रिकायानस्य संचालनात् पृथ्वी स्वच्छा भवति तथा च यातायात सम्बद्धस्य अवरोधस्य गंभीर समस्यायाः समाधानम् अपि प्राप्यते।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूं कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: अभिनेता विक्रांत मैसी अपि फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति कार्यक्रमे सम्मिलितवान्। एतदभियानम् अद्वितीयम् इति वर्णितवान्। सः अवदत् यत् एषः उपक्रमः अधुना जनान्दोलन रूपं धारयति। अद्य विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसः आचर्यते। अस्य वर्षस्य विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसस्य विषयः अस्ति समाह्वानात् समाधान पर्यन्तं सर्वत्र सुरक्षितं भोजनम्। अयं दिवसः खाद्य सुरक्षायाः अधिकार रूपेण तथा सामूहिक दायित्व रूपेण जागरूकतां वर्धयितुं सशक्तं अवसरं प्रददाति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्याय सुरक्षित स्वच्छ भोजनाय च भारत प्रशासनिक प्रतिबद्धतां पुनरुच्चारितवान्। अस्मिन् अवसरे असौ सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे उत्तमम् आहारं स्वीकर्तुं तथा च आत्मनिर्भर भारत

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख। पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इससे पहले अपने उद्घाटन भाषण में डॉ जयशंकर ने कहा कि 4 साल के अंतराल के बाद दोनों देशों के संयुक्त आयोग की ये बैठक हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान समुद्री यातायात में गंभीर व्यवधान के बावजूद भारत होर्मुज जल डमरू मध्य से ऊर्जा माल की आवाजाही जारी रखने में सफल रहा। मंत्रालय के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और एलपीजी की बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूप से जारी है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लेने की अपील की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों का उल्लेख किया। श्री मांडविया ने नागरिकों से इस पहल में शामिल होने

0: और फिट इंडिया के सपने को साकार करने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है, वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: इधर प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम हुए। राजधानी जयपुर में फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइक्लोथॉन आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में साइक्लिस्ट, फिटनेस प्रेमी, विद्यार्थी, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स और नागरिकों ने भाग लिया। इस आयोजन ने स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया। इसके साथ ही सप्ताह भर चले जागरूकता अभियान का भी समापन हुआ। वहीं विद्याधर नगर स्टेडियम में साइकिल रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, पाली, अजमेर, सवाईमाधोपुर, कोटपुतली सहित कई स्थानों पर आम नागरिकों सहित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने साइकिल चलाकर और योगाभ्यास कर फिट रहने का संदेश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख है। बोर्ड की सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इस बीच सरकार की ओर से नीट UG परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। NTA ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही प्रश्न पत्र लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी तरह के संदेश पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी गई है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि अच्छी शिक्षा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान का पूरे समाज में प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा से होता है, इसीलिए इसे उत्कृष्ट बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री बागड़े आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के 23वें स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गंग नहर निर्माण शताब्दी वर्ष पर जल संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। वहीं केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति से जुड़े मूल्यों पर कार्य करने की आवश्यकता जताई। प्रदेश में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जरूरी काम करवाए जा रहे हैं। लगभग 2500 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना से 300 से ज्यादा गांवों की लगभग 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से जल उपलब्ध होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि आगामी वर्षों में यह परियोजना बांसवाड़ा जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली मुख्य सिंचाई परियोजनाओं में शामिल होगी। इसके पूरा होने के बाद क्षेत्र के किसानों को साल भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इससे भूजल स्तर सुधार, जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही ये परियोजना वागड़ क्षेत्र के जनजाति बहुल इलाकों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही है। शहरी क्षेत्र के सूली डूंगर सनसेट प्वाइंट को नगर परिषद ने मॉल रोड की तर्ज पर विकसित करने की खास योजना शुरू की है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से नगर परिषद को हर साल करीब 38.5 लाख रुपए का राजस्व भी मिलेगा।
2: सूली डूंगर पर अभी जो विकास कार्य जारी है वो उसका पूरा सनसेट पॉइंट का रिनोवेशन का है। चूंकि तैयार हो जाएगा उसके बाद इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवाना होगा। उसके लिए हमने एक नया PPP मॉडल तैयार किया जिसमें हम 7 साल के लाइसेंस पे एक बिडर को एक जगह देंगे ताकि वो इसमें जो 10 शॉप बनी हुई है वो और पूरा पार्क है जो सनसेट पॉइंट है उसको मेंटेन करेगा और नगर परिषद को इसमें आय भी होगी क्योंकि हमने इसकी बिड प्राइस 20 लाख रखी थी। जो इन्वेस्टर आया है उसने

0: ऑपरेटर ने रेट डाली 38 लाख के आसपास। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे वो, एक शहर में एक पर्यटक स्थल के रूप में। जब पहले सूर्यनगर जाना जाता था, काफी लोग जाते थे और काफी सालों से ये बिल्कुल ही ऐसा खंडर सा पड़ा था, तो इसको एक रेनोवेट करने से आने वाले टाइम में पर्यटकों के लिए एक विकल्प के तौर पर सूर्यनगर को हम डेवलप।
1: प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक और कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं कई क्षेत्रों में तेज गर्मी का दौर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में जहां एक और तेज धूप और गर्म हवाओं से आमजन बेहाल रहा, वहीं घड़साना क्षेत्र में तेज बरसात हुई और 3 GD इलाके में ओले गिरे। बालोतरा में दिनभर लू चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। जैसलमेर में तेज गर्मी के चलते दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया। पाली में भी लू और उमस के चलते लोग हाल रहे। यहां चिकित्सा विभाग ने आमजन को ORS, नींबू पानी और छाछ जैसे पेय पदार्थों का सेवन करने और जरूरी होने पर घर से बाहर निकलते वक्त सिर ढककर निकलने की सलाह दी है। इधर मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कल 7 जिलों में बारिश और 2 जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। पाली में 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। फाइनल मुकाबला अलवर और जयपुर के बीच हुआ। इसमें जयपुर की टीम ने 3-1 से जीत हासिल की। समापन समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत ने विजेता और उप विजेता टीमों सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख। पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से पाली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख विशारद जोशी ने तैयार किया है। पाली जिले की अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुजरात के भुज से सीधे कनेक्टिविटी मिल सकेगी। बीते दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पाली रेलवे स्टेशन से भुज दिल्ली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे विकास कार्य प्रगति पर हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने बताया कि पाली, मारवाड़, सोजत रोड, फालना, सोमेसर और मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशनों का काम भी प्रगति पर है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 25 मई से 5 जून तक पानी बचाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने लाखोटिया उद्यान से इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान दीपदान के कार्यक्रम हुए, जल चौपाल लगाई गई, पानी को बचाने की शपथ ली गई। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, बावड़ियों, जल स्रोतों की साफ सफाई सहित जल संग्रहण संरचनाओं की मरम्मत के काम किए गए। अभियान के दौरान जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस अभियान का समापन विश्व पर्यावरण दिवस पर हुआ और इसी दिन से हरियालो राजस्थान 2026 की शुरुआत हुई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां रखी गईं, वहीं जगह जगह पौधरोपण कार्यक्रम भी हुए। नगर निगम कार्यालय और जिले की सभी नगर पालिकाओं में इन दिनों लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 30 जून तक लगने वाले इन मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स को PM स्वनिधि योजना से जोड़ने, ऋण सुविधा

0: डिजिटल भुगतान और अन्य सरकारी लाभों की जानकारी दी जा रही है। सुगम, सरल और सुरक्षित परिवहन के उद्देश्य से वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन और काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का मौके पर ही चालान काटा जा रहा है। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। जनगणना 2027 के तहत चल रहे मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम जोरों पर है। प्रगणक घर घर जाकर 33 प्रश्नों के जरिए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इसे HLO ऐप में दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले 1 मई से 14 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। लोगों ने स्वयं ऑनलाइन जानकारी पोर्टल पर दर्ज की। इस काम में देसूरी ब्लॉक का तिखी गांव जिले में पहले स्थान पर रहा, जहां सभी ग्रामीणों ने खुद अपनी जानकारियां दर्ज कर मिसाल कायम की। फिट इंडिया मिशन के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इसमें पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली का उद्देश्य नियमित व्यायाम और फिटनेस के प्रति लोगों को प्रेरित करना रहा। इस दौरान साइकिलिंग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों खांडी गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। पाली कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ मनोज कुमार ने किसानों को संतुलित और मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग के महत्व की जानकारी दी। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के बारे में बताकर उनका अधिक से अधिक फायदा उठाने को कहा। अभियान का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की ओर से इन दिनों 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जा रही है। CMHO डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि ये दवा 29 जून तक दी जाएगी। जिले के सभी उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्रों और जिला अस्पतालों में ये दवा उपलब्ध है। इसके साथ ही पाली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोगरी बैठक नई दिल्ली में पूरी हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रिकानी सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा पुनर्मूल्यांकन खातर ऑनलाइन आवेदन जमा करबारी आज आखिरी तारीख। पोर्टल आधी रात तक खुलेला। और मौसम महकमो प्रदेश रा 12 जिला में आंधी और मेह बरस बारो येलो अलर्ट जारी करियो। समाचार आरएस आ गए, मैं रचना पारीक और अब समाचार विगतवार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोगरी बैठक आज नई दिल्ली में पूरी हुई। इन बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और इंडोनेशिया का विदेश मंत्री सुगियोनो करी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर कया के हाल रा बरसा में दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक भागीदारी हुई। वना कया के बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महताऊ खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक समेत द्विपक्षीय इमदाद रा सगड़ा पहलवा माथे गहरी चर्चा हुई। दोनों मंत्री बहुपक्षीय समन्वय ने आगे बढ़ावा और भारत आसियान संबंधा ने मजबूत करबा माथे चर्चा करी। इनसे पहले आपरा उद्घाटन भाषण में डॉ. जयशंकर कया के 4 बरस रा अंतराल रे पछे दोनों देशा रा संयुक्त आयोगरी आ बैठक हुई है। केंद्र सरकार कहो के अंतर्राष्ट्रीय LPG की कीमतों में भारी बढ़ोतरी रे बावजूद भारत में LPG गैस सबू कम कीमत में मुहैया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक बयान में कहो के भारतीय सिलेंडर किनी भी पड़ोसी देश के मुकाबले सस्ते

0: तो है सरकार का योग के पश्चिमी एशिया संकट रह दौरान समुद्री यातायात में देरी रह बावजूद होमोर्ज जल डमरू मध्य सू ऊर्जा मालरी आवाजाही जारी राखबा में सफल रहो मंत्रालय रे मुजब देश में पेट्रोलियम उत्पादारी कोई कमी नहीं है और एलपीजी री बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूपों चाल रही है आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है इन बरसों विषय समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन है ओ दिन खाद्य सुरक्षा ने एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी का रूप में मजबूत बनावारो मौको देवे है इन मौके केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रखानी सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई सोशल मीडिया पोस्ट में वणा नागरिकों स्वस्थ खानपान री आदतां डालबा और स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत बनावा माए योगदान दे बारी अरज करी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी सोशल मीडिया संदेश माए सगलाऊ सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ कानियू जाग जगाबा और स्वस्थ जीवन शैली ने अपनाबारो संकल्प ले बारी अरज करी केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल रहा 77वां कार्यक्रम में भाग लेना इन मौके केंद्रीय मंत्री कहा कि साइकिल चलाबासू पर्यावरण ने साख रखबा में इमदाद मिले है वना साइकिल चलाबासू स्वास्थ्य में होबा वाला फायदारो जिक्र करता थका कहा कि लोगों ने इन पहल में शामिल होर फिट इंडिया रा सपना ने साकार करनो चाहिए
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है उसका भी समाधान है तो क्यों न हम साइकिलिंग करें देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा
0: वठी ने प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम भी राजधानी जयपुर में फिटनेस पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन ने बढ़ावो दीवारा लगासू साइक्लोथॉन रखी गई इनमें बड़ी संख्या में साइकिलिस्ट फिटनेस प्रेमी पढ़निया कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स और नागरिक भाग लेना इन आयोजन में स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक सहभागितारो संदेश दियो गयो इन सागे ही सप्ताह भर चल रियो जागरूकता अभियान भी पूरो भी वठी ने विद्या नगर स्टेडियम में साइकिल रैली काढ़ी गई श्रीगंगानगर बाड़मेर पाली अजमेर सवाईमाधोपुर कोटपुतली समेत कई ठोड़ा माथे लोगा समेत पुलिस अहलकार और कर्मचारी साइकिल चला लोगा ने फिट रहबारो संदेश दिया ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई री 12वीं कक्षारा परीक्षारा नतीजा जारी हो बारे पछे इनसू जुड़िया मुद्दारी जांच और उत्तर पुस्तिकावा ने फेरों जांच मा खातर ऑनलाइन आवेदन जमा कर बारी आज आखिरी तारीख है बोर्ड रा सोशल मीडिया पोस्टर मुजब ये पोर्टल आधी रात तय खुलिया रहेला इन भी सरकारी कानियों नीट यूजी परीक्षा ने साफ कोई तरीकाऊ कराबा खातर सगला सुरक्षा उपाय पक्का करिया जा रिया है ये परीक्षा 21 जून ने वेला एनटीए सोशल मीडिया माथे चाल री पेपर लीक और उनरी बिक्री सू जुड़ी बाता नकार दियो है वना पढ़ानी और उनरा घराला सू इन बेबुनियाद माथा माथे भरोसो नी कर बारी सलाह दी है राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े कया कि चोखी शिक्षा डीणो मां की सबू पहली प्राथमिकता वैनी चाहिए वे कया कि ज्ञान रो पूरा समाजमय प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा सू होवे है इन खातर सगला ने मिलर उन्हें चोखो बनानो चाहिए श्री बागड़े आज लोक भवन सू महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेरा 23वां स्थापना दिवस माथे संबोधित करिया हा इन मौके वणा गंग नहर निर्माण शताब्दी बरस माथे पानी बचाबारो संकल्प ले बारी आरज करी केंद्रीय विधि और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विश्वविद्यालय रा स्थापना दिवस री शुभकामनावा देता थका विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति सु जुड़िया मूल्या माथे काम कर बारी जरूरत जताई प्रदेश में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना ने सर्वोच्च प्राथमिकता देता था कहा जरूरी काम करवाया जा रहा है करीब 2500 करोड़ रुपया की लागत इन परियोजनाओं 320 गांवों की करीब 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि ने लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों पानी मुहैया वेला जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कया के आवता बरसा माए आ परियोजना बांसवाड़ा जिला री खेतीरी माली व्यवस्था ने नई दिशा देबा वाली खास सिंचाई परियोजना

0: યોજનામાં ભેલી વહેલા એન્ડ્રો પૂરો હોવારે પછે કિસાનાને સાલભર ખેતી ખાતર પાણી મિલ શકેલા વણા કયા કે એન્ડસું જમીનમાં પાણીનો સ્તર સુધરેલા પાણીની બચત વહેલા ઓર ગાંવાઈ હલકારા વિકાસને મજબૂતી મિલેલા સાગઈ આ પરિયોજના બાગડ હલકા રા જનજાતિ બહુલ ઇલાકારા સામાજિક ઓર માળી વિકાસમાં મીલરો પથ્થર સાબિત વહેલા जैसलमेर माए पर्यटन ने बढ़ावो देवारी तैयारी शुरू हो चुकी है शहरी हलकारा सोली डूंगर सनसेट पॉइंट नए नगर परिषद मॉल रोटरी तर्ज माए बनावारी खास योजना शुरू की है नगर परिषद आयुक्त लजपत लाल सिंह सोढ़ा बतायो कि इन प्रोजेक्ट नगर परिषद ने हर बरस करीब 38,50,000 रूपया रो राजस्व मिलेला
1: सोली डूंगर में अभी जो विकास कार्य जारी है वो उसका पूरा सनसेट पॉइंट का रिनोवेशन का है जो कि तैयार हो जाएगा उसके बाद इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवाना होगा उसके लिए हमने एक नया पीपीपी मॉडल तैयार किया जिसमें हम 7 साल के लाइसेंस पे एक बिडर को ये जगह देंगे ताकि वो इसमें जो 10 शॉप बनी हुई है वो और पूरा पार्क है जो सनसेट पॉइंट है उसको मेंटेन करेगा और नगर परिषद को इसमें आय भी होगी क्योंकि हमने इसकी बिड प्राइस 20 लाख रखी थी जो इन्वेस्टर आया है उसने बिडर ने रेट डाली 38 लाख के आसपास तो ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे वो एक शहर में एक पर्यटक स्थल के रूप में जब पहले सोली डूंगर जाना जाता था काफी लोग जाते थे और काफी सालों से ये बिल्कुल ही ऐसा खंडर सा पड़ा था तो इसको एक रेनोवेट करने से आने वाले टाइम में पर्यटकों के लिए एक विकल्प के तौर पर सोली डूंगर को हम डेवलप
0: प्रदेश में मौसम रो मिजाज लगातार बदल रही है एक और कई जिला में आंधी चालबा और मेह बरस बसु लोगों ने गर्मी और उमस राहत मिली तो वठी ने कई हल्का में तेज गर्मी आपरो कहर बरसारी है प्रदेश रा श्रीगंगानगर बालूतरा जैसलमेर पाली में तेज धूप और गर्म हवा चालबासु आम जीवन बेहाल है वठी ने घड़सामाना में तेज बरसात रे सागे ओला पड़बारा समाचार है चिकित्सा महकमो तेज गर्मी रे चलता आमजनू ओआरएस नींबू पानी छाछ सेवन करवा और घरासू से ढाकर 12 आबारी सलाह दी है मौसम महकमो आज 12 जिला में आंधी और बारिश रो येलो अलर्ट जारी करियो है इंडरे इतर काल 7 जिला में मे बरसबा और 2 जिला में हीट वेव री चेतावनी दी गई है पाली माए 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी होड़ आज पूरी हुई फाइनल मुकाबलो अलवर और जयपुर के बीच हुयो इनमाए जयपुर की टीम 3-1 सू जीत दर्ज करी समापन जलसा माए मुख्य अतिथि राजस्थान हॉकी संग्रह अध्यक्ष अरुण कुमार सारसत विजेता और उप विजेता टीम समेत चोखो प्रदर्शन करबा वाला खिलाड़िया ने इनाम दीना उपभोक्ता मामलात महकमारा ई जागृति मंच ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिलियो है ओ सम्मान तकनीक रे जरिए सरकारी प्रक्रिया में सुधार और डिजिटल काम खातर दियो गयो है उपभोक्ता मामला खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कयो के ई जागृति उपभोक्ता शिकायतारा तुरंत निपटारा माए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रियो है इन बरस 1 जनवरी ने शुरू कराया गया ई आई आधारित मंच माथे हाल ताई 2,29,000 बत्ता उपभोक्ता मामलारो पंजीकरण करियो गयो जबकि 2,07,000 बत्ता मामलारो निपटारो करियो गयो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित कराया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी वेला ये सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-11-7800 माथे 26 जून तई राय दे सको हो नरेंद्र मोदी एप माए और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए भी आपरा विचार भेजा जा सके है और अब आखिर माए खास खबर एक कर फेरू भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में पूरी हुई दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रिकानी सरकार री प्रतिबद्धता दोहराई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा मूल्यांकन खातर ऑनलाइन आवेदन जमा कराबारी आज आखिरी तारीख पोर्टल आधी रात तक खुलेला और मौसम महकमो प्रदेश रा 12 जिला माए आंधी और मे बरस बारो येलो अलर्ट जारी करियो इस आगे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी वहां को आगलो समाचार बुलेटिन कल सुमार है 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला नमस्कार

0: पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
1: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोता इस समय शाम के 7 बजे हैं। आइए सुने हमारा दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनना सगला हेतालु श्रोताओं ने घने मानसों गुरविंदर बिश्नोई
1: और दिनेश राणे जरा
0: राम राम, राम, राम। साथियां सिंजिया 7 बजे उड़ीक राखो उन कार्यक्रम में जीरो नाम है चौपाल और दिनेश भाई चौपाल तो हमें रेडियो नहीं है
1: हाँ।
0: तो जरिए इन एंड्रॉइड जो को फोन है मोबाइल रे जरिए भी आप माना कार्यक्रम सुनो हो बार त्योहार माने समाचार दे हो और मैं लोग कोशिश करा कि ज्यादा से ज्यादा चौकी बढ़िया जानकारी देवा आप मनोरंजन करावा और दिनेश भाई ला ला दिनांग में आप देखियो कि जिन तरह भारत आपरी अंतरराष्ट्रीय धमक पूरी दुनिया रे मायने जमाई धाक जकी जमाई तो ओ आज रो नयो भारत है नए भारत रा नए व्यूक है नया लोग है जकारी ताकत आज दुनिया रे मायने जानी जे है पहचानी जे है और आर्थिक रूप आपा इता लाडले 10-15 सालों प्रगतिशील बढ़िया के लोग आश्चर्य करे। मैं कटे पढ़ियो के जको अमरीका रो फोन है
1: हाँ।
0: वो चाइना बनाओ तो
1: हाँ।
0: और बाई प्रोडक्ट भाई आप वेड़ो रे वेड़ो अठे भारत में बने चाइना तो खाली 9 लाख एक्सपोर्ट करिया
1: हाँ।
0: और भारत में बे फोन 32 या 33 लाख बन अमेरिका भेजिया
1: 3-4 गुना होगा
0: तो ये रो मतलब है कि किनी तरह रो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वो चाहे भाई विज्ञान संबंधी किनी तरह रो प्रोडक्ट वो उरे बनाउन रे मायने खासतौर माते सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग रे मायने भारतीय युवाओं रो जो परचम है वो दुनिया में लहरा रही है।
1: सही बात है क्यों गुरुंद्र भाई और देखो के खास तौर से लाला दिना जेईरा एडवांस राजी का रिजल्ट भी देखो आया है तो बहुत ही देखो बच्चा पढ़ने वाला देखो नाम रोशन करिया एज बच्चा गुरुंद्र भाई जी आपको आगे जावे साइंस रे क्षेत्र में जावे है विज्ञान रे क्षेत्र में जावे और मोटा मोटा जी का आविष्कार करे पढ़े लिखे करे। हमें एक बात आव की है कि हर युवा चाहे कि मैं जिको मारो योगदान है वो देश रे वास्ते दे मारे राज्य रे वास्ते दे मैं मारो तो नाम रोशन करूं पर साथ साथ मारे देश रो नाम रोशन करता थका मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर माते जा पर और जिको मारो देश रो जिको कोई उत्पाद है उन्हें आगे बढ़ाऊं विन्हें विक्रय करूं विन्हें निर्यात करूं और जिकी देश री विदेशी मुद्रा भंडार है उन रमेने में इज्जत करूं आ दिमाग रे मायने चाले।

0: दिनों में आप देखा तो भारतीय आपरिज की खास तौर माते भारत देश और भारत देश रा युवा अंतरराष्ट्रीय पटल माते आपरो एक जज्बो बनायो है, आपरी एक कैपेसिटी बनाई है, आपरी एक सार्थकता बनाई है कि नहीं आज भारत विश्व गुरु बनन जा रही है।
1: हाँ
0: और उम्मीद करा कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र रूप में दुनिया रहा में आवेला। तो भाई लोग ये रमाइने दो चीजा खास तौर माते है, एक है कि समूल रूप गरीबी खत्म करनी
1: खत्म
0: पड़े
1: करनी।
0: और गरीबी खत्म करने दिनेश भाई एकमात्र साधन है गरीबों गरीब घर परिवार रो लड़को या लड़की
1: हाँ
0: भारत रेण लोकतंत्र में शीर्ष पद तक जा सके, ऊंचो ऊंचो पद प्राप्त कर सके, आप रे किस्मत रो ताड़ो खोल सके। वह किस्मत रो ताड़ो खोलने सिर्फ और सिर्फ एक ही चाबी काम आवे, वह है शिक्षा यानी एजुकेशन।

वाह पढ़े ही है गुरुंद्र भाई, पढ़े हूँ जी का, आपाना जी का युवा है, युतिया है, बहुत आगे बढ़िया है और दुनिया रमाने जी का नाम है रोशन करिया। चाहे विश्व रो छोटो देश हो या मोटा मोटा अमेरिका जड़ा देश है, उठे भी जी का भारतीय युवा है, उठरा सीईओ बनोड़ा है, नासरी एजेंसी में देखो आपाना जी का लोग है, भारतीय मूलरा जी का लोग है, वे काम कर रहा है। तो भारत रो आदमी गुरुंद्र भाई आज उन्नी सदिया सु भी जग चावो हो और आज भी जग चावो रहला और आउनाला भगत में भी भारत रो आदमी जी को प्रसिद्ध रहला, जग चावो रहला। इन लारे आ है के आपाने जी की भावना है, वसुदेव कुटुंबकम भावना है, परोपकारी जी की भावना है, आपा आपने एक दूसरे

0: प्रति अपा मिलनसार व्यक्तित्व राखनी अपा समता राखा।
1: बिल्कुल, देखो कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति रो जो को स्वभाव है वो दुनिया में विलक्षण है, जबकि आपानी भाई सनातनी सोच है, खास तौर माते लाले 10,000 सालों सर्वाइव करे। देखो भाई लोग 77 साल हो गया देश आजाद तो क्यों, और इन 77 साल ले सफर मायने चाहे गांव हो चाहे कस्बो हो चाहे शहर हो, वे घर परिवार ही आगे बढ़िया चकारी लड़कियां पढ़ लिखन कामयाब हुई, इन पगा माते खड़ी हुई। आज भी एडी कई सोच है, कई परंपरा है, कई एडा नियम कायदा झूठा बनायोड़ा है कि छोरिया ने गांव रे मायने नहीं पढ़ा रही है। अरे भला मिनका सरकार ढाणी ढाणी स्कूल बना दी, स्कूल में पढ़न वाली लड़कियां रे वास्ते हर चीज निशुल्क कर दी, कठे कोई पयो नहीं लागे। पहली लेन ग्रेजुएट हुए नी गांव री लड़की जठे तक कोई एक रुपयो भी कठे जमा नहीं करना, उल्टो सरकार वहां लड़कियां ने मदद करे,
0: छात्रवृत्ति देवे
1: वाणे हर तरह रो भाई ध्यान रखे, अलग अलग वाणा छात्रावास जगह है, हॉस्टला बनायोड़ी लड़कियां री, और तो और कोई लड़की मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देवे नीट है जेई है तो उरे वास्ते कोचिंग री व्यवस्था भी सरकार करे। एडे रे मायने थेल थानी लड़कियां ने पढ़ाओ नहीं हो, छोटे थके ब्याह करो, इनू मोटो कई अत्याचार हुए रे मारा भाई, इनू मोटो कई पाप हो। मिनख जमारे रे मायने जन्म लेन थे छोरिया ने नहीं पढ़ान, पाप रा भागीदार बनो हो, कोई रीति हूं कोई रिवाज हूं या कोई कई सुनी बात हूं, थे खुद कल्पना करो कि थारे गांव रे आए पाए जका घर परिवार रे मायने छोरिया ने पढ़ाया वे आज कठे हैं थे कठे हो। हमें टेम बदल गयो है, आपरी सोच ने बदलो, लड़कियां ने पढ़ाओ लिखाओ पगारे माते खड़ी करो, ब्याह करनो ही कोई उरो लास्ट कोनी के नहीं भाई हमें छोरी मोटी उगीन पन्ना दो, कामयाब होने बाद उरो ब्याह करो।

सही बात है कि गुरुन्द्र भाई, बालिका शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है 12 बगत्र महीने, और आउनाला टाइम रे महीने महिला घर परिवार में पढ़ी लिखी वेला तो आपरे परिवार रो विकास करेला, और परिवार रो विकास वेला तो देश रो विकास वेला। और जरूरत इन बात री है कि हमें महिला रो जी की भूमिका है हर क्षेत्र में। पहला देखो खेती बाड़ी में होती तो हमें दूजा जी का भांत भांतरा नहरा उद्यम हो गया है, व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया। गुरुन्द्र भाई, मोटा मोटा शहर में आप

0: नया उद्यम हो गया है, व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया। गुंदर भाई मोटा मोटा शहर में आप बात करें, कई जी की लड़कियां है देखो अच्छी डिग्रियां ले पर वे कई कंपनियां संचालित कर रही
1: बिल्कुल
0: है,
1: बारे साहब पूछे मती, कई कंपनियां
0: हजारों
1: है,
0: लोगों ने रोजगार दे रही है।
1: कई एड़ा स्टार्टअप शुरू करिया लड़कियां जकारी कल्पना भी नहीं कर सका।
0: हाँ
1: तो सिर्फ वही जय के वाणे घर परिवार वाला वाने पढ़न लिखन रो आगे बढ़न रो मौको दियो। और दिनेश भाई आज विश्व खाद्य
0: दिवसे
1: सुरक्षा दिवस है,
0: हाँ
1: खाउन पीउन रे मायने देखो एक टाइम आज 40 साल पहला कहता भारत में भूख मर गया भाई,
0: हाँ
1: और आज भारत आत्मनिर्भर है, दुनिया रो हर देश भारत इन वास्ते ही जरा कह के उए ने चावल की जरूरत है, उए ने शक्कर की जरूरत है, उए ने गऊ की जरूरत है।
0: सही बात है क्यों
1: तो
0: गुरुदेव भाई,
1: आपा हरित क्रांति रे जरिए आत्मनिर्भर हो, यहाँ 140 करोड़ लोगों रो पेट भरन रे बावजूद भी आपा उत्पाद कर रही हाँ, और खाद्य सुरक्षा है आपने, तो ये रो मोटो बड़ा कहीं हो सके।
2: रगड़ रगड़ पग धोवती रे में चले।

0: करोड़ों की तादाद में गुरविंदर भाई जी का लोग है जुड़ रहा है, निःशुल्क जो अपने गेहूं है धीरे जीरियो है लंबे टाइम वो अपन दे रिया कर रहे हैं। और इनके साथ साथ कई ऐडा जिका जरूरतमंद देश है वोटे भी अपन देखो कम दरा महीने जो अपनो गेहूं है वो देखो निर्यात कर रहे हैं काज
1: कम दरा में कई ला आप बिल्कुल निःशुल्क भी देवा।
0: हाँ
1: आज हमें भारत रो जो को गरीब है परिवार उन्हें निःशुल्क खाद्य सुरक्षा गारंटी दियोड़ी है।
0: हाँ
1: तो हमें मारो दिनेश भाई ओ कहो है जका समर्थ परिवार है बे इरो फायदो मत
0: हाँ वे नहीं ले वैसा आपने। हाँ
1: मैं तो देखू के
0: तो
1: गाड़ी चढ़न आवे राशन रा गहू लेन जावे।
0: हाँ
1: तो भाई हमें इन सोच ने बदलो, हमें भगवान था ने मौको दे दियो थे समर्थ बन गया, हमें एडा जका गरीबा रा फायदा है बे थे मत उठाओ।
0: सही बात है क्योंकि जरूरतमंद लोग है वन वास्ते जावे करे है और जिको सरपल्स वेला तो जिका जरूरतमंद देश वे उठे भी आपा भेजन आपा देखो मान उतारे नाते मदद भी कर सका। कई अड़ी विपदा है आपदा भी आवे देखो तो भारत टाइम टाइम माते कई अड़ी नामी देश महीने कटी भूकंप आया है कटी बाढ़ आई है तो भारत देश मोटा मोटा विमान जिका है खाद्य सामग्रियों भरपरार और देश ने महीने मदद वास्ते भी भेजिया कर रहा है आ एक मिसाल है।
1: बिल्कुल खाद्य रूप अगर आप सुरक्षित रहे वहां तो दुनिया री देश री मानवता री जकी है वह सेवा कर सका।
0: सही है सर।
1: और इन मुजब आपने और आगे पूरी दुनिया रो आपने ख्याल करनो है, आपा दुनिया री सब मोटी आबादी वाली सब मोटो लोकतंत्र
0: हाँ।
1: तो पूरी दुनिया आपने देश रहा में देखे भी है। और आउनल टेम में विश्व गुरु पायदान माते आपा उबा हा तो आपने उन जको जितो बड़ो और विकसित देश बने उत्ती उरी जिम्मेदारी भी बढ़ती जावे।
0: सही है
1: सर। जका गरीब देश है खासतौर माते अफ्रीकी देश है उठे भारत लगातार खाद्य सुरक्षा मुजब का निःशुल्क है वह गेहूं है या
0: चावल है
1: चावल है वे भेजे। और हमें दिनेश भाई देखो हतई गणी उगी इन कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरो।
0: हाँ सर।
1: तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न कर सारू आपने साथी गुरविंदर बिश्नोई
0: और दिनेश राणे जाने शेख दिराओ
1: राम राम, राम।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे चौपाल कार्यक्रम। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय शाम के 7:30 मिनट

0: दौड़ दो, होटा ठोकन ढुकी है, फाचक है जी को।
1: आज माँ में बहुत एनर्जी एवरी है।
0: कौन है
1: एनर्जी?
0: कौन है? मैं उन जरूरत को मैं मार मैं नहीं आऊँ।
1: खींच खान आई हूँ मैं, और आपरे भी ले नहीं, हाँ तो एक गाड़ो भी ले नहीं।
0: ओ हो देखे बिल मावे मैंने नहीं, मैंने तो खाई की दे है जी बात करे।
1: आटो खोलो तो बढ़िया गरम गरम खींच गुड़ और घी मिली।
0: अरे वाह वाह वाह, अरे दाल जुड़ो है आवरी भाई, मैं आवरी दिन बदी है कहूँ देखे आज खींच
1: आयो
0: घी खा लियो।
1: हाँ घी गुड़ सब है मायने।
0: वाह भाई वाह, खींच खाए ना मारे कई दिन होगा। हाँ क्यों तुम देखे कौन खींच कूटे भाई पहला उपरी
1: जाने। मैं पूरी मेहनत करी दिन भर और ले नहीं हुआ।
0: अरे वाह भाई, गोना चलो
1: नहीं मनोरमा।
0: ओ मनोरमा गोना
1: आज तो है नहीं कहो मैंने।
0: अरे हाँ भाई गोनारमा वाह बात करे। ए यू है भाई कई दिन हमारे मनोरमा मन में ही मैं कहो भाई हमें खींचड़ा कूटे कौन करे पहला तो उकड़िया में
1: बरसात में तो बढ़िया लगे नहीं।
0: अरे बस कह दियो नहीं हमें उनो ठाडो जोर लागी पर भाई सेठ खींचड़ा खायोड़ा पहला खींच बनावता जो फद फद फद फद है जी को कह नहीं हंडी बारे आओ तो फद बैठा बैठा है जी को उन्हें पहला देखता जीवी जीवी है जी को कह
1: तो पहला बीमारियां कितनी कम बेती। आज ही आप देखो कितना हड्डा कड्डा आराम काम करो सब खेतरो।
0: अरे वो तो है भाई देखे हूँ हमें जल जल के गियो बाढ़ कांटो देख ना आई गो।
1: हाँ
0: तो को कह थोड़ा कोई हिणिया दूजा हाज को हूं कहनी की बाढ़ बुढ़ा बार ने किया आने एकदम खेत देखू जो देखे भाई मार जी
1: हो तो खायड़ो है जन शरीर हाले।
0: हाँ जीवरी भाई देखे खेत माती है खेत है तो है कहनी के जिकी है जिको कह रौनक
1: है रौनक है
0: तो भाई तो अपर खेत में क्या है जिको निपजोड़ी मिठोड़ी बाजरी पीली हड़क और वो मैं कहूँ है का एक क्या वो अंग्रेजी खाद मैं नापू नापू को
1: तो ओइ है। आज यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है
0: ओ,
1: और इनमें भी विश्व स्तर में आई बात वे
0: आपके संसार में
1: बिल्कुल आपके संसार में बात आई वे की भोजन सुरक्षित स्वच्छ और पौष्टिक वेणु जे खेतु लेन थाली तक रो जो भोजन है वो आप सुरक्षित और स्वच्छ वेणु
0: अच्छी बात है भाई देखे के पहला तो खानो दानो बने तो उन्हें कहे देखो भाई कुछ कोई कचरो नहीं पड़नो
1: कोई कचरो पहले
0: बासोड़ो नहीं होनो चाहिए कोई है जो क्या नहीं क्या भाई क्या हाओ खराब
1: या कुछ भी आजकल कोल्ड स्टोरेज आए गए घने चीजो खराब भी भेजा हुए बीच में खेतु लेन थाली तक जो भोजन पहुँचे स्तरों निकल तो वही
0: भाई हूँ तो थोड़ो खाओ पर ताजो
1: हाँ, खाओ,
0: खाओ। पर वो है जो कि बात आ है भाई कई मिनका ने घनो आते हैं उन डूब जा
1: हाँ।
0: तो बे धंधरो ने धंधरो खोगाड़ो कर दे
1: कर दे कर दे
0: कभी ब्याह शादी में
1: मैंने कि नहीं आते ही नहीं आवे बिल्कुल
0: हाँ हाँ भूखा ही
1: बच्चा कुपोषित रह जावे।
0: अरे भाई हूँ कई एक दो है और मैं गियो कोई ब्याह में जो कहा उठे थालियां भर भर छोड़ी
1: ब्याह में आजकल घनो खराब
0: बारे ने की जो भाई दिनों के हूँ रात उठी रियो उठियो जी को भाई ना टाबरिया है जी को ने कह नहीं अटी ने तो कुत्ता उबा अटी ने है जी को ना टाबरिया उबा।
1: पर आजकल कई शहर में गाड़ियों भी करी उड़ी है आप खानो व्याम में जो वचे नहीं तो वो आप दे दो पर थालियों में वेस्ट करे वो कट ली जाओ।
0: अरे भाई बात अच्छी हमने कह के

0: वाह भाई ये वाह
1: आनंददायक
0: आनंददायक आज कह दी उन्हें आनंद री गंगा बैगी
1: हाँ।
0: मैं विगत बार हूँ बताओ कौन जलमियान कौन भूत
1: हाँ जो पहला आज जन्मदिन है जिनो वो बताऊँ मैं महेश भूपति जी ने आपा जन्मदिन री बधाई देवा ए आपा रे भारत रा दिग्गज पूर्व पेशेवर टेनिस खिलाड़ी री ओड़ा है
0: ओ, कोई
1: और टेनिस इतिहास में सब महान खिलाड़ियों में गिनी जी आपा भारत
0: शहनशाह है
1: हाँ शहनशाह है चेन्नई में इन्हों जन्म भी हो तो आज दिन
0: मैं तो भाई देश रे किनी खुने में जलमिया और कोई खेल खेले चाहे बली कबड्डी खेलो कुश्ती खेलो क्रिकेटियो खेलो बाकी चुटिया दड़ी खेलो
1: कोई भी खेलेंगे
0: गोली बॉल खेलो
1: हाँ।
0: आजकल लुगई है जी को क्रिकेटियो
1: सब खेले क्रिकेट
0: तो
1: खेले
0: भाई जिको कह नी देश रे बात चोको काम करे
1: इनार कई तो ग्रैंड स्लैम जीती उड़ा है और वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग में पहुंचने वाला पहला भारतीय भी
0: वाह भाई वाह यानी देश रो नाम ऊंचो करियो तुकमा लाया
1: तो
0: भगवान ने हजा ताजा रखे अरे खूब है क्या नी तरक्की करे देखो देश रो
1: नाम रोशन करे
0: बदई बदई है
1: ख्वाजा अहमद अब्बास जी ऐ आज दिन जन्मिया और 1 जून 1987 में फोत रेगा भारतीय फिल्म निर्देशक हेता पटकथा लेखक उपन्यासकार भी हेता और विन जमाना में पत्रकार भी हेता राज कपूर इन फिल्म और पटकथा है लिखता अमिताभ बच्चन इन पुरानी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आईडी आवारा ने फिल्म है नी आप जमाना रे हाँ विनर है पटकथा लेखक हेता निर्देशक हेता
0: याद आवे क्यों राज कपूर भी बात करी नी तो बा में हूँ दो तीन महज को कह नी फुटिंग होती हूँ तो हूँ हो तो वेला मैं ओढ़ के मार थोड़ी पात्रो पड़ गो है की कोनी
1: हाँ।
0: पर तो बढ़िया जग चावी फिल्म बनाई
1: और फिल्म बनाई जो बनाई सितरू अधिक तो इनर किताबो लिखी उड़ी है और 3000 अधिक पत्रिका में लेख लिखी उड़ा इनर
0: भाई भाई देखो इतना है जो कह नी के
1: गुणी मिनक विद्वान
0: है हाँ भाई देश रे में कह नी के मिनका नी खान री जद जान है जो कह के भाई आज आप बात हूँ कह नी के खाओ गरीब को आन ठीक है नी तो आनी अकीदत रा गुल पेश करा कोटी कोटी नमन, नमन करा मंदड़ेरा फूल चढ़ावा आन भाई मैं आरो कोई आरो कोई
1: बढ़िया गीत हुणा
0: बने उड़ी फिल्म रो हनी कोई कैमरो फेरी उड़ हुणा भाई
1: हाँ हुणा

0: वाह भाई ये बार निहाल कर दिया।
1: मैं जो फोर्थ वे अभिनव बारे में बताई दूं, आज फोर्थ वे आप रे नाम ही हुनियो वेला बीडी जत्ती जी, भारत रे आप पांचवा उपराष्ट्रपति जी रियोड़ा और कार्यवाहक राष्ट्रपति रियोड़ा 1974 उलेन गुणसी तक ए जो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद रो निधन वेगो तो नी जने इना ने कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया था और यूं ये मैसूर रा मुख्यमंत्री भी रियोड़ा है।
0: हां हज बात है अंग्रेज टाइम में हाल पजे कह दी भाई देखो के राज काज हमालिया।
1: हाँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी है रियोड़ा।
0: हाँ हाँ भाई सेवा करी और भारत देश रा राष्ट्रपति कह नहीं ओदे तक पहुंचे है तो आनी कोटी कोटी नमन है मंदड़े रा फूल चढ़ाओ भले।
1: और नटराज रामकृष्ण ए भी आज दिन फोत हुआ, ए भारत रा एक महान नृत्य गुरु संगीतज्ञ और विद्वान था। कुचिपुड़ी और आंध्र नाट्यम जो ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते पहचान दिलाई।
0: हाँ दिखना दे भारत रा है भाई।
1: और पेरिनी शिव तांडवम करन एक नृत्य है तो 700 साल पुराणो जो लगभग लुप्त हो चुको तो
0: बस गम को
1: इन्हें पुनर्जीवित करन वास्ते बहुत ही प्रसिद्ध है।
0: ओहो खोजबीन करी
1: कैडी खोजबीन करी
0: किधर है जो 700 साल
1: और सब लोग हम नृत्य शैली लाई।
0: अरे भाई भाई हो तो बिल्कुल काम हो
1: बिल्कुल। और नृत्य और संगीत कला माते 40 अधिक इन पुस्तक लिखी हुई।
0: अरे वाह भाई वाह देखे कहनी के कुदरत दे जिने
1: कुदरत
0: कहनी छपर फाड़ आने नाच कलारा धनी तो एड़ा कहनी के अदाकार कलाकार कोटि कोटि नमन है मंदिर का फूल चढ़ावा। और हमें भाई देखे के मनोरमा आज हुरजवार है जिको आज गेल मेल लाओ। और भाई हमें पढ़ू तब का हूँ दे दू थे फटोफट है टाइम कम रियो है और फटोफट बाँचो देखा नहीं
1: क्या फटोफट बाँचो। पहले मैं एड्रेस दे दूँ कि किन मत मेल कर सके seemadairy.goonj123@gmail.com इन मत मेल कर सके
0: ठीक। और कागजी लिखो तो सीमा डेरी गूंज द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी जोधपुर पत्र मात्र लिख ले रहा हो देर हो सकती है पर अंधेर नहीं ठीक है। हमें
1: अभी मैं आपने थोड़े कनली धानी तापू बिश्नाराम बालियान विदामी देवी बरवड़ सुनील बालियान पूजा बालियान सुरेश बालियान सुभाष बालियान श्याम सुंदर और इन समस्त परिवार वाला आपने राम राम किया।
0: हाँ हरदान जी जगजी नरू जी जयपुर जी मंगलो जी देव जी नहीं है जी को रामा समा है लगे लगो लग हुई जाओ पर
1: और गांव मेलाना तहसील बावड़ी जिला जोधपुर छलाराम मेघवाल रविंद्र देवेंद्र अनीता और फूली देवी भी आपने

0: बहुत याद करिया।
1: बहुत तो गिन धनी है जी को क्या नहीं याद करे धनी बात है बड़े।
0: खारिया खुर्द आडेल बाड़मेरू कवरा राम सारण सतीश सारण चंद्रिका और सारा देवी जी भी आपने रोज लिखे और आपने घनो धन्यवाद।
1: प्रोग्राम हुए बेड़ू बढ़िया छोको लागे बहुत बहुत धन्यवाद। और वो शाबाशी लिख जो
0: बिल्कुल सारण नगर बाड़मेरू मेहराज सारण हीरो सारण हितेश सारण नवप्रीत सारण ये भी आपने राम राम किया है। गाँव टीकमगढ़ आगोलाई जोधपुर निम्बा राम सारण राम स्वरूप सुरेश गोपाल और समस्त सारण परिवार
1: परिवार याद करिया दिनी बात है आने बड़े।
0: और गांव बुचेती तहसील बावड़ी जिला जोधपुर धापू जीताराम प्रदीप भाटी मनीष पुलकित और नन्नू और इन्होंने सगलो परिवार ने आप प्रोग्राम बहुत दाय आयो
1: दिनी बात है भाई देखो जाओ।
0: और गांव चंपासर जिला फलोदी प्रेम कुमार प्रजापत आदुराम प्रजापत राधा प्रजापति और लाचा प्रजापति भी आपने राम राम किया है। मगराज वर्मा बेबी देवी हनुमान सुथार मदन सुथार गोविंद रमेश सेन ए आपने राम राम किया है। कंटाणियाऊ भिखाराम मौर्य सीता देवी विजय प्रकाश गोमती माणक चंद्र मंजू देवी जयेश मनीष किरण मौर्य आपने राम राम किया है।
1: राम राम है।
0: और हेलो की ढाणी भटिंडाऊ बाबू राम गंगा राम नथा राम श्री राम लूणा राम भला राम विशाल और पवन चौधरी आपने राम राम किया
1: बताओ। और तावड़ो घणो पड़े जी थोड़ी हाल चुकी राख जो खाने जाने में नाने जाने में ठीक है बड़े।
0: और चाडी उत्तम चंद छाजेड़ राणू लाल शांति लाल और कमला देवी आपने घना राम राम
1: घने मानू राम राम है।
0: और गांव जवरू गोविंद भाटी तेजा राम हेमा राम शोभा ऋषिराज और गौतम राज भाटी ये भी आपने राम राम किया है।
1: घने मानू राम राम है भाई देखे मतानी मगराज वर्मा बेबी वर्मा नाना हेंग हतिड़ा और बदासी कृष्ण राम सासी श्रवण प्रेम शंकर गंगा नैन्सी अनन्या राजा सासी दिनेश पांडे पप्पू राम मनोज कौरा राम सासी आऊ भीकम चंद टाटिया मनोज सुरेश सक्षम भूमि धनी सपना नायरा परी टाटिया खलीपरी बावड़ी खुदा बख्श खलीफा खुदा दाद मच्छू खान रोशन खलीफा और चांसल ताज मोहम्मद मोहिद्दीन खान अनवर अली मुंशी खान रेहान अली उमेद अली और मराला रिजवान रोशना मस्ताना मजीद रवीनान अहमद खान तीरमीर और बावली बच्चू खान अमीन मास्टर अल्लाह रखी शाहबुद्दीन जुबी खेरी नारा हाथीड़ा खारड़ा फारसिंह करता राम माचरा भैरा राम रेखा राम उमेद राम चेतन भोम सिंह माचरा और राज्य को देखे भाई के कौ के एयरफोर्स हूँ बिंदु कार्तिक हिमांशु विनोद मेघवाल भंडू कल्ला दिनेश सोडा रुद्राक्ष भवियास रमनदीप कीर्तिका सोडा और भाई शेन हैंगी है जिसको कह नहीं लिखिया है और कह नहीं के चौपड़े पाली मधु राम गोदारा परवीन संजना सुनील संगीता गोदारा गोपालगढ़ घनश्याम सिंह चौधरी धर्मेंद्र छिपा श्याम सोनी भल्ला राम ठाकर जीवन राम तांडी राजेश दिवरिया किशन जय किशन ब्रजेश आरती खुशी जैसे राजा राम ढमर बिश्नोई और भालू अनोपगढ़ जगन्नाथ कालबेलिया सुरेंद्र अर्जुन गीता ममता समता विमला और कुलुम्बो कुलुम्बो और बाकी है भाई चैन है ही
0: खासा पत्र लिखे
1: हाँ मैं देखा वो तो बांसर में पहले ये मंडियोड़ा है वाह भाई ये बात नियाल कर दिया पड़ोसी ब्रिज का और हमें है बात तू थोड़ा ध्यान रखो क्या एक तो क्या चौमासे दिन है आंधी तूफान आवे और क्या नहीं तावड़ो पड़े है बात तो आप टाइम कटी निकल दो नहीं और आप क्या नहीं कोई काम करनो ठाडे ठाडे करनो और गोना है जो ले जा सुबह बेगा चरा लीजो और है कह भाई आओ चुकी हूँ काम करो और भाई देखे के मैं खास हो रहा है कि भाई बात तो मैं बेलू वे को नहीं बेलू तो थन तैयार करनो ही पड़ी ठीक है नहीं तो बेलू कर दो तैयार और हमें है भाई मनी घर जिस
0: घर जैसे उड़ाए।

0: वाह भाई ये वाह हरजी सुन लियो,
1: हरजी सुन लियो माड़ा
0: खेल तो घोड़ो है जिको मंदरो एकदम दबगो है और हमें देखे भाई के तेरे सोड़े में थोड़ा
1: बिल्कुल तैयारी करा माड़ा
0: मुंह फेर माड़ा पे मुंह बैठो हूं जित थे है जिको खपके खाका नी बेलू तैयार कर दो हमें तार यही ऊंचा आएगा नंदारी होगो है और प्रोग्राम टाइम ही पूरा होगो तो भाई सेना लेवा ही राम राम
1: राम राम।

मैडम वेब 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिमाड़ेरी गूंज, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोक इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। सुन रहा हूँ आज सुने कार्यक्रम शख्सियत, जिसे हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: भी काम कर रही है और किसान भी ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक 120 केजी यूरिया को आप लेके आना और खरीदना भारी होता है।
2: जी
1: उसकी बजाय 1 केजी का आपको नैनो लिक्विड में यूरिया मिल जाता है,
2: जी
1: उसका स्प्रे किया जाता है। एक होता है, इसी में ही 19-19-19 नाम से एक फर्टिलाइजर आता है, जिसको सामान्य भाषा में प्रमुख के नाम से बिकता है मार्केट में।
2: जी
1: उसमें एनपीके तीनों ही होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, तीनों चीजें मिल जाती हैं। उसका यूज करते टाइम अपन क्या करते हैं कि 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के उसका या तो जमीन में स्प्रे कर दो या फिर खड़े पौधे पे स्प्रे कर दो।
2: जी
1: तो वो जो जितनी आप डोज, बेसल डोज जितनी डालते हो ना जमीन में, वो डालने की जरूरत नहीं है, फिर वो उसके इक्वल काम करता है।
2: जी
1: अब रही बात सिंचाई की, तो जैसे खेत में नमी होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे सर्दियों में 6 से 7 दिन के अंतराल पे अपन सिंचाई करते हैं गेंदे के फ्लावर में,
2: जी
1: वहीं जैसे गर्मी है बहुत ज्यादा, राजस्थान का टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो तीसरे या चौथे दिन में जमीन सूख जाती है, पौधे को आवश्यकता पड़ती है, मुरझाने लग जाते हैं पौधे, तो 3 या 4 दिन पे गर्मियों में सिंचाई की जाती है। और
2: जी
1: जब बारिश का समय आ जाए तो बारिश के समय इसको थोड़ा फ्रिक्वेंटली करना चाहिए। अगर अच्छी बारिश हो रही है तो पानी रोक देना चाहिए, नहीं तो 15 दिन या 17 दिन के बाद में पानी डालना चाहिए।
2: तो सा तो रही पानी री और खाद और उर्वरका री बात। अब अगर आपा प्रसारण री बात करा, यानी कि गेंदे री खेती ने आपा प्रसार किया कर सका हाँ भी को, तो वो किया करे है वो भी बताओ सर।
1: जी, गेंदे को अपन 2 प्रकार से लगा सकते हैं, गेंदे के बीज से और गेंदे की कटिंग तैयार करके।
2: जी
1: 1 हेक्टेयर अगर खेत में अपने गेंदा लगाना है तो उसके लिए 300 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है, वो चाहे दोनों अफ्रीकन हो या फ्रेंच हो,
2: जी
1: उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, 10-20-50 ग्राम का, वो कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन आइडियल जो है 300 से 400 ग्राम माना जाता है।
2: वासावा फूला की व्यवसायिक खेती ये विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में पधारे आज पवन कुमार जी। आप अपने अमूल्य समय में सुसमय निकाल कर पधारे और इतनी बढ़िया जानकारी हमारे सगले श्रोतावा सागे साझी करी, इके लिए आप रो घने मानसु। धन्यवाद साहब।
3: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इपको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इपको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
4: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक रोड, टॉक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड। पाइए सीमलेस बैंकिंग के साथ और भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और एक्टिवेट करें SBI प्रीमियर बैंकिंग। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: फूलों की व्यावसायिक खेती पवन कुमार जी इतनी चौकी जानकारी दी और जानकारी ली अपनी बहन भावना जी, तो दोनों देवा आपा धन्यवाद। और धन्यवाद स्वरूप सुना एक चोकोसो गीत।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफको राजस्थान।
1: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
2: तो किसान भैया, अब घड़ी री सुई कर रही है इशारो, और अब थाका भाई विशाल गोड़ ने दियो आज्ञा और चाला और करा राम राम सा।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.5 एक मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुन

0: हमारे हैं प्रिंस फिल्म का गीत।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ज पर। श्रोता, इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना फिल्म जहरीले इंसान का किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और आर डी बर्मन का संगीत। जंजीर फिल्म से आइए सुने मनाडे की आवाज़ में ये गीत, गुलशन बावरा की बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जमाने को दिखाना है। इस फिल्म से शैलेंद्र की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और आर डी बर्मन का संगीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। किशोर कुमार की आवाज़ में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म याराना का ये गीत। अनजान के बोल और राजेश रोशन का संगीत।

0: वक्त फिल्म से मनाडे की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। साहिर लुधियानवी के बोल थे और रवि का संगीत था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियो वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। इसी समय रात्रि के 8:45 मिनट होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात 9 बजे सुनेंगे न्यूज़ एट 9, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए

0: दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की

0: जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा

0: का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4वां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रेवा ने माया चालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नम्बर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I'm VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong,

गुलाम अली की गाइस से गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात्रि के 9:30 हुए, आए सुने फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आशा फिल्म के इस गीत के साथ। लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत पेरेलाल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे बॉबी फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। रेशमा की आवाज़ में आइए अब सुने हीरो फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जुली फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवार स्तरीय संगीत सभा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: वायलिन वादन, दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति। श्री एम वी सुब्बा रायडू और श्रीमती एम जलजाक्षी के पुत्र श्री एम एस एन मूर्ति संगीत के परिवेश में ही पले बढ़े हैं। आपकी माता श्रीमती एम जलजाक्षी स्वयं एक संगीत कलाकार रही हैं। आपने संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी

0: संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री MSN मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री MSN मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, गटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री MSN मूर्ति's exposure to music began early. His mother, Srimati M. Jalajakshi, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, Sri MSN Murthy trained under the guidance of Sangeet Sahitya Kalanidhi, Sri N.C.H. Krishnamacharilu. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri MSN Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri MSN Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri MSN Murthy has performed extensively in the country and abroad in various prestigious centers of art and culture and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri MSN Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramana Murthy on the mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.
0: विद्वान श्री MSN मूर्ति आज के कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं अठाणा राग में पुरंदर दास की रचना सकल ग्रह बल नीने से, जो कि खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री MSN मूर्ति बिगिंस दिस इवनिंग्स कॉन्सर्ट विद अ कृति ऑफ पुरंदर दास। इट इज एन अठाणा रागम खंड चापू तालम।

0: एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षणी से जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

परिवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं

शैली में वायलिन वादन आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री एम एस एन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु जो कि आदि ताल में निबद्ध है इन टुनाइट रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमन मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री एम हरिबाबू ऑन द घटम Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

0: था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in

अभी तक आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया। With this we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अभी आप सुन रहे थे रविवार सरिय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉ जयशंकर और श्री सुगी ओनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की

आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केन्द्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।